आज के कलाकार हैं और आपने प्रस्तुत किया है ध्रुपद गायन जो राग भैरव में है। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वर रंजनी।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ध्रुपद गायन। कलाकार थे प्रभाकर नारायण पाठक। आपने प्रस्तुत किया राग भैरव। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहले

0: की द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सभी का हमारी इस सुबह की सभा में हार्दिक स्वागत है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भाई देवेंद्र सिंह रागी की आवाज में ये भक्ति रचना। इसी के साथ हमारा आज का ये वंदना कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन।

सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। बैनर्जी ने स्वाधीनता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1905 में बंगाल प्रांत के विभाजन का विरोध करने वाले सुरेंद्रनाथ सबसे प्रमुख सार्वजनिक नेता थे। पूरे बंगाल व भारत में आंदोलन और संगठित विरोध, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन के क्षेत्र में बैनर्जी के अग्रणी होने के कारण ब्रिटिश को अंत में मजबूर होकर 1912 में विभाजन के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे विदेशी उत्पादों के खिलाफ भारत में निर्मित माल की वकालत करते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें बंगाल के साथ ही पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बंगाल के बेताज राजा के नाम से जाना जाता था। एक दिन सायंकाल कोलकाता में कोई बड़ी राजनीतिक सभा होने वाली थी। उस सभा को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ही संबोधित करना था। दुर्भाग्यवश उसी दिन प्रातः उनके बेटे की असामयिक मृत्यु हो गई। सभा बेहद महत्वपूर्ण थी। जल्दी ही यह दुखद सूचना चारों ओर फैल गई और इसके साथ ही सभा का स्थगन भी लगभग निश्चय सा हो गया। सभी ने सोच लिया था कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पुत्र का निधन हो गया है। इतने बड़े आकस्मिक आघात के साथ उनके द्वारा सभा का संबोधन तो असंभव ही था। फिर भी आयोजकों ने सभा की तैयारियां की हुई थी। सभा में देश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी थी। जैसे ही सभा का समय हुआ, वैसे ही सभा स्थल पर बैठी पूरी जनता अपनी आंखों से यह देखकर दंग रह गई कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी शांत कदमों से मंच की ओर बढ़े चले आ रहे थे। वे चुपचाप मंच पर पहुंचे और पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार उन्होंने बिल्कुल सहज भाव से सभा को संबोधित करना शुरू कर दिया। वे सभा को ऐसे संबोधित कर रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ नेताओं ने जब उनसे अपनी यह जिज्ञासा प्रकट की तो वह सहज भाव से बोले, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपने कार्यों और संघर्ष से अंग्रेजों को यहाँ से अवश्य खदेड़ा जा सकता है। जो हमें छोड़कर जा चुका है वह दोबारा जीवित नहीं हो सकता। यह बोलकर उनकी आंखें नम हो गई। उनकी नम आंखों की नमी को वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने महसूस किया और भीड़ की आंखें भी नम हो गई। पूरी भीड़ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे व्यक्तित्व को देखकर नम थी और उनके आगे अपना सिर झुकाए खड़ी थी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए अब से कुछ ही देर में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामचरितमानस बालकांड का भाग 108।

0: जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्याम वरणी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।
1: छरे छबीले चयन सब

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के बालकांड का भाग 108। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमंत्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमंत्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहः

0: अद्य नवदेहल्याम् आयोजितं सहकारिता मन्त्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु द्वात्रिंशदधिकद्विशत अन्न संग्रह भण्डाराणां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः त्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनं, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेषु एव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्ड चक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन

0: किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालन ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, the Prime Minister will reach Melbourne on the 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th of July. He will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland. The session is being organized by the United Nations Trade and Development from today to Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 7:10 हो रहे हैं और ये हुए पूरे 16 सेकंड। आइए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कलाकार संजय झा के आवाज़ में कुछ भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आज आपने सुना संजय झा की आवाज में भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय वक्त हो रहा है सुबह के 7:30 और ये समय है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। और आज की गुड मॉर्निंग आपकी कैसी हुई है दोस्तों, आप हमें बताइए, क्योंकि मुझे यकीन है आज जब आंखें खुली हैं तो आपने देखा है सब तरफ बादल छाए हैं, एक अंधियारी भरी मॉर्निंग हुई है सभी की, और आप सभी को बारिश बहुत बहुत मुबारक। तो आज हम बात करेंगे हमारी इस कार्यक्रम में बस किस बात की, जी हाँ, बारिश की, क्योंकि बारिश हर एक के लिए अलग होती है। कहीं पर कागज़ की नावें होती हैं, कहीं भीगती गलियाँ, फिर गर्म चाय की प्याली, खिड़की पर गिरती बूंदों की टप टप, बरसात हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आती है।
1: ओ, सजना।

बारिश। जी हाँ, ये मौसम कैलेंडर देखकर नहीं आता। वैसे भी बहुत से मौसम कैलेंडर के हिसाब से नहीं आते, है ना? वो सीधे दिल में उतरते हैं। बूंदें धरती को नहीं भिगोती, यादों को भी सींचती हैं। पहली बूंद गिरते ही जाने कितनी आवाज़ें लौट आती हैं। छत पर भीगते बच्चों की आवाज़, कागज़ की नावों की आवाज़, रसोई से आती पकौड़ों की खुशबू की, और खिड़की के पास बैठकर बारिश निहारते उन खामोश लम्हों की यादें आती हैं। किसके साथ? बारिश के साथ।

बिरखा बाहर आती है, साथ में सच में बाहर लाती है। मन में तो एक बाहर अलग सी ऐसी उमड़ती है कि फिर उसका हम किसी भी तरह से उसका हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो बाहर होती है वो हमारे दिल के साथ ही हमारे पूरी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरती भर देती है। फिर ये भी है ना कि बारिश की बूंदी जब मिट्टी से मिलती हैं तो सिर्फ खुशबू नहीं उठती, लगता है जैसे धरती भी राहत की एक लंबी सांस ले रही है। और रही बात बारिश की, तो बारिश जब आती है बहुत सी यादों को अपने साथ लेकर आती हैं। उन लम्हों को हम दोबारा जीते हैं जो कभी हमसे छूट गए। फिर और इन्हीं बारिश की बूंदों के साथ जब इसकी टिप टिप हम सुनते हैं, जब इसकी आवाज़ के साथ हम आवाज़ मिलाते हैं, तो फिर लौट कर आती हैं वो सारे लम्हे जो कहीं हमसे पीछे छूट गए।

कुछ बरसातें सिर्फ धरती को नहीं भिगोती, वे यादों की धूल में भी इस तरह से आ जाती हैं कि उन यादों की धूल को भी धो देती हैं। तभी तो पहली बारिश होते ही मन बिना किसी वजह के बरसों पीछे लौट जाता है। फिर बहुत बार ऐसी चीज़ें याद आती हैं, ऐसी बातें याद आती हैं जिनको लेकर के मन अलग सा एक उत्साह, एक अलग सा उल्लास महसूस करता है ना? तो आइए सुनते हैं बारिश से जुड़ा एक और बहुत प्यारा सा गाना।

बारिश की खूबसूरत आदत होती है, मानेंगे ना? वो क्या करती है, जब भी आती है अपने साथ सिर्फ बादल नहीं लाती, खूब सारी ऐसी यादें लाती हैं, खूब सारी ऐसी बातें लाती हैं जो हमें भीतर तक भिगो जाता है। आपने कभी याद किया है वो समय जब रिमझिम रिमझिम बारिश पड़ रही हो, आप अपने किसी मन भावन के साथ, अपने किसी मनपसंद साथ के साथ बस चुपचाप एक भीगी सड़क पर चलते चले जा रहे हो, है ना? तो क्यों ना उसी माहौल को एक बार फिर से जिया जाए।

दोस्तों, बारिश हमें एक बात बहुत खामोशी से सिखाती है कि आसमान कितना भी भारी क्यों ना हो, एक दिन उसे बरसकर हल्का होना ही होता है। शायद इसीलिए बारिश के बाद पेड़ भी ज्यादा हरे दिखाई देते हैं, हवा भी ज्यादा साफ लगती है और मन भी कुछ हल्का हल्का सा महसूस करता है।

बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, वह हमारी रफ्तार भी बदल देती है ना? जो लोग रोज भागते हुए निकल जाते हैं वो भी आज खिड़की पर दो पल ठहर जाते हैं। चाय धीरे धीरे पी जाती है और बातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं और जिंदगी कुछ देर के लिए कम हड़बड़ी वाली लगने लगती है ना?

अगर मौसमों का कोई स्वभाव होता ना तो बारिश सबसे ऊपर का मौसम होती, सबसे उदार मौसम होती। वह खेतों को हरियाली देती है, नदियों को बहाव, पंछियों को गीत और इंसानों को थोड़ा सा ठहर कर अपने भीतर झांकने का मौका। इसी खुशनुमा मौसम को हम यही दुआ करेंगे कि ये मौसम हमेशा बना रहे। बारिश का हरियाली, बारिश की खूबसूरती आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। और हमारा यही इल्तिजा है बारिश से कि वो कभी ना जाए। मेघ तो यहीं रुक और यहाँ पे ही बरसता रहे और कहीं ना जा।

बारिश के मौसम की हरियाली आपके जीवन में बनी रहे, ये खुशियाँ हमेशा आपके जीवन को यूं ही हरा भरा और खुशहाल बनाए रखे। आपने ये जो पूरा सफ़र तय किया, आपके रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ, आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया।

0: और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्याकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
1: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
3: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी

0: अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and

0: The Indivisibility of India. The pioneer citing the PM's article writes, Dr. Shyamaprasad Mukherjee stands out for his humanitarian efforts, especially during the famine-struck Bengal in 1943 and how he stood firm during the upheaval of partition to ensure that West Bengal remained an integral part of India. A top front-page headline in the Indian Express states, Armed Forces seek larger retention of Agniveers after end of four-year tenure with Navy, likely to seek 75% retention, Army and AIAF up to 50%. The Hindu reports government issues notice to Meta on child sexual abuse ads. Hindustan Times writes about the International Cricket Council meet discussing proposals for a structural overhauling of the sport, including shortening ODIs, introducing continental championships, a World Cup championship for T20s, and a fixed window for formats. The Times of India mentions about a survey's report which says childcare housework keeps 69% urban women out of labour force in India. And finally, the Pioneer mentions the passing away of the legendary Pandavani exponent Tijan Bhai, whose commanding voice became the global face of Chhattisgarh's folk tradition under the headline, A Voice That Brought Bheem Alive Falls Silent. Her legend lives forever. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's ninth session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host two-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting of its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyamaprasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after five-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में यूएनसीटीडी CTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये 4था दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं, तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
3: उम्मीद है कि जनाब परावो सुबियांतो और वज़ीर आज़म मोदी जामे दिफाई शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे, जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन, तजारत और सरमायाकारी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वज़ीर आज़म मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा, जिसमें मुल्क के बाली मैदान सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हजारों भारतीय शहरी और भारत नजाद लोग यकजा होंगे और अपने मादरे वतन से अपने राबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे। 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परम्बरन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहाँ वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा होगा। सारफिन उमूर खुराक और तकसीम आम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक बैन अल-अक़वामी तंजीमें सारफिन तहफ़ुज़ाती हुक्काम तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीक़ैन यकजा होंगे और सारफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन और मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगे। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज़ शामिल है जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दिसंबर 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत करेगा जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
2: ब्रिक्स मुल्कों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये 2 रोज़ा इजलास वजारत दाखिला के तहत मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के जेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इंसदाद मुनशियात एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे ताकि मुनशियात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
3: गुवाहाटी में होने वाले इस इजलास में सिंथेटिक्स मुनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्मगलिंग इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले ऑपरेशनल राबताकारी सलाहियत साजी और इदारा जाती ताउन को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मंदूबीन में नई नफसियाती असरात रखने वाले मुनशियात जिनमें डार्क नेट के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक माली लेन देन और इसके गलत इस्तेमाल जैसे उभरते हुए चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में भारत मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कोशिशों को भी उजागर करेगा। इजलास के दौरान रुकन ममालिक मुनशियात से मुतालिक बदलते हुए खतरा से निपटने के लिए मुशतरक हिकमत अमली पर गौर करेंगे और बैन अल-अक़वामी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादला ख्याल करेंगे। राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
2: भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की 2 रोज़ा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजारत दाखिला ने कहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबैन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले यह मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब यह मीटिंग राम मंदिर के अहाते में मुनक़द होगी। तफसील हमारे नमानिगार से।
4: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट के अतिया बक्सों के जरिए मौसूल अतियात की

0: गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है, और अखराजात के बारे में बयान, बैलेंस शीट और माली साल 2025-26 से मुतालिक दीगर माली दस्तावेजात की मंजूरी भी शामिल है। नोटिस में चेयरमैन की इजाज़त से दीगर मामलों पर भी बातचीत की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है, जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे, जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामानिकार से।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब शाह सबसे पहले न्यू टाउन के इको पार्क जाएंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनाब शाह भवानीपुर में वाकई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आबाई रिहाइशगाह पर मुनक़िदा तकरीब में उनके मुजस्मे पर गुलाए अकीदत पेश करेंगे। शाम के वक्त मरकजी वजीर दाखिला बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने उन्हें जुरत, हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वजीर अजम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया, और बाद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजू खिराज अकीदत है। मुंबई और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं ने मामूल की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ ज़िले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी ज़िले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाक़े में कई अफराद हलाक हो गए। एक रिपोर्ट।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ज़िलों में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने रायगढ़ ज़िले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली ज़िलों और पुणे के तमाम सरकारी, म्यूनसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: ब्राज़ील के तजर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राज़ील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 34 साला नेमार ने ब्राज़ील की जानिब से सबसे ज़्यादा बैन अल-अक़वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राज़ील की 6वीं मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त ख़त्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग आलान ने मैच के आखिरी लम्हात में 2 गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए 1 गोल ज़रूर किया, लेकिन वो शिकस्त का फ़र्क कम करने के सिवा कुछ ना कर सके। नेमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राज़ील की फ़ुटबॉल के एक शानदार बैन अल-अक़वामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राज़ील के लिए यह मुसलसल 7वां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-23-31-4444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289-094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या हैशटैग #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
0: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में LNG सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, जिनेवा में मसनू जहानत AI से मुतालिक अकवाम मुतहदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क्यादत वजीर ममलकत बराए खारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन, राग है शुद्ध सारंग। तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष मिश्रा, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और ठीक उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रम्बन्नन मंदिर जाएंगे और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हो रहा है। नवगठित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमान 2026-27 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के

आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं आज इस कार्यक्रम में आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको बहुत देर से इंतज़ार रहता है कि कब आपका ये कार्यक्रम शुरू हो। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद रहती है। और दोस्त कहते भी हैं कि ज़िंदगी अगर एक लंबा सफ़र है तो उम्मीद उसका खूबसूरत साथी है। जब रास्ते कठिन हो, जब मंजिल दूर लगे, तब उम्मीद ही हमें एक कदम और आगे बढ़ने की ताकत देती है। कहते हैं उम्मीद वो रोशनी है जो घने से घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है, क्योंकि हम उम्मीद के सहारे जी जाते हैं। कभी कभी हमें कोई कह देता है ये काम होगा, तो वो उम्मीद भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दोस्तों, कभी कभी हमें वो उम्मीद जो लोग देते हैं या उस पल में जो हम उम्मीद बांधते हैं, कभी बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, लगता है कुछ नहीं होगा, तो वो खास होता है। क्या कहते वो उस उम्मीद का जो पल होता है या जो इंसान आपको वो उम्मीद दिखाता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आपके जीवन में भी ऐसे पल ज़रूर आए होंगे, और हमारे सबके जीवन में आते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया जब सिर्फ एक उम्मीद ने आपको हार मानने से रोक लिया, या फिर कौन सा इंसान आपकी उम्मीद की सबसे बड़ी वजह बना, आप हमें बता सकते हैं। बिल्कुल आपके पसंद के गीत भी होंगे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी कभी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, कोई परेशानी होती है, तो ऐसा लगता है कोई हल ही नहीं है। पर कभी कभी आपके फ्रेंड्स या आपको कोई बात उम्मीद बंधवाती है, और फिर आप ज़िंदगी में चलते हैं और आगे कहीं ना कहीं वो कार्य पूरे होता है। तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आपके गीत भी हम अपनी पसंद के सुनवाएंगे, और कुछ बात भी तो हो सकेगी ना श्रोताओं आपके साथ। तो दोस्तों, ये तो हुई बातें, हमारी बहुत सारी और भी हैं, मेल्स भी हमें आपके लेने हैं। पर जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी अपना ईमेल आईडी बता दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। जी हाँ, तो हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो एक बार फिर दोहरा दें, ip.radio.delhi@gmail.com। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का। जी हाँ, मेल करें, आप हमें मैसेजेस भेजें और बताइएगा भी साथ में कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया जब सिर्फ एक उम्मीद ने आपको हार मानने से रोक लिया, या फिर वो कौन सा इंसान था जो आपकी उम्मीद की सबसे बड़ी वजह बना। क्योंकि कई बार इतना टूट जाता है ना इंसान, तो एक उम्मीद ही होती है ना जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और एक गाना आपका जो बहुत प्यारा सा है, उम्मीद पे बना हुआ है, बिल्कुल

दोस्तों, उम्मीद का मतलब ये नहीं है कि हर दिन आसान होगा। उम्मीद का मतलब है कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह ज़रूर आएगी, जिसे रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज अपनी बारी कभी नहीं भूलता। दिन के कहें कि रात के बाद दिन आता, दिन के बाद रात, और इसी तरह से क्रम चलता है। तो कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, बातें तो आपके साथ बहुत सारी हो जाएंगी, पर आपके पसंद में आपके गीत भी चलवाएंगे और साथ में आपके संदेश तो ज़रूरी है। तो दोस्त, संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार का ये संदेश। ये लिखते हैं, नमस्कार और प्यारा सा नगमा सुना दीजिएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे नगमे की फरमाइश की। जी हाँ, ज़रूर पूरी की जाएगी। अगला जो संदेश आया है वो आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। ये है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और इनके साथ कालका से हमारे साथ जुड़े हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी। और अगला जो मौसम, ये जो संदेश आया है, ये आया है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, हैं संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। और अगला जो हमें संदेश आया है, ये आया है हमें, इन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा है, किसान मंजानी का ये संदेश है। और ये तो दोस्त, आप ये भी ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं। तो अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। और दोस्त, जब हमारे संदेशों में मेरे नाम भी होते हैं तो मुझे लग रहा है, जी हाँ, श्रोता सिर्फ मेल नहीं दे रहे, हमारा कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। और अगला जो है संदेश वो ले लेते हैं। ये आया है वाइट फील्ड बेंगलुरु से, हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। और ये संदेश हमें आया है चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा, विमला अनेजा का। ये लिखते हैं कि प्रोग्राम में आपका इस्तेमाल करते हैं, इंद्रप्रस्थ चैनल के लिए बेशुवार मोहब्बतें। जी हाँ दोस्त, आपको भी बहुत प्यार है। और जी हाँ, आप कार्यक्रम के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, आप श्रोताओं की वजह से तो इस कार्यक्रम की जान है ये, आप लोग। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी जी का। और बक्सर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। इनके साथ डुमराव बिहार से हमारे साथ हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी जी। और ये संदेश आया शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, है संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का। और अगला संदेश हमें आया है, जी हाँ, ये संदेश हमें आया है, ये पुराना संदेश है तो हम अगला लेते हैं। ये हमें आया

पोटिया कला दुर्गा से है, दुर्ग से सॉरी, संजय साहू, सुजाता साहू, शंशाक साहू और सीमा साहू का। और अगला संदेश हमें आया है, ये है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पाठ ढींगिया जी। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म अंदाज़ से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या

0: बैंकिंग शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आज हूँ आपके साथ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो एक बार फिर स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो मैसेजेस के बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा है, तो मैसेजेस को ले लेते हैं फटाफट। और बहुत सारी बातें भी हैं मेरे दिल में, वो भी करेंगे। यहाँ आपके भी संदेश आ रहे हैं। तो ये जो अगला संदेश आया, ये आया है बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन का। इनके साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ये लिखते हैं कि आज मेरी पुत्रवधु मेघा मस्कीन का हैप्पी बर्थडे है, प्लीज़ विश करें। तो दोस्त, आपकी पुत्रवधु जो है मेघा मस्कीन को जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं। बहुत खुश रहें, सदैव खुश रहें और जीवन में आगे तरक्की करते रहें। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से, है मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी का, और इनके साथ है बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। और अगला संदेश हमें आया है, ये हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन। ये लिखते हैं, मैं अपनी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बताने जा रहा हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था, उसके साथ मैंने 20-25 साल बिताए और इस दोस्त ने कुछ पैसों के लिए मेरी दोस्ती को सदा के लिए तोड़ दिया। दिल तो मेरा आज भी बहुत दुखता है, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह दोस्ती से ज़्यादा पैसों को महत्व देता था। दोस्त क्या कहें, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अलग ही निकलते हैं, जो हम सोचते हैं वो नहीं होते हैं, पर जो हमारी उम्मीद है कि हमारा काम तो फिर भी होगा, ये चीज़ मायने रखती है। और अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीत राहुल का, और इनके साथ है गुरशबद सिंह राहुल जी। अगला जो संदेश हमें मिला है वो है उत्तम नगर दिल्ली से बुधे बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। और हमारे साथ जुड़े हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। लिख रहे हैं, मैसेज शामिल करने के लिए मेहरबानी। तो दोस्त, आपके संदेशों के बिना हमारा कार्यक्रम अधूरा है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। आया हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा का। और अगला जो संदेश है वो आया है हमें गांव कलमंडी खुर्द जिला झालवाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपूताना परिवार की ओर से। और ये संदेश हमें आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य की ओर से। और अगला संदेश ये ले लेते हैं। ये आया है हमें, ये हमारे साथ है फरूखाब मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से। ये लिखते हैं सुदेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया और इनके साथ सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक कासगंजी। और इनके साथ जुड़े हैं बालकेश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर। और नवाबगंज कानपुर से इनके साथ हैं श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया चौरसिया जी। और इन्होंने लिखा है कि इन्हें ये गीत बहुत अच्छा लगा कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना, और कहते हैं यही हकीकत है। तो दोस्तों, सच में वाकई ये हकीकत है। बहुत सुंदर सुंदर गीत तभी तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे दिल को छू जाते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है गांव लोगर ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह का। तो चलिए आपकी पसंद पर सुनवाते हैं प्यारा सा गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

बहुत ही प्यारा गीत त्रिशूल फिल्म से किशोर कुमार, लता मंगेशकर और जसुदास की आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और उसमें शामिल होते हैं आपकी पसंद के गीत और आपके संदेश। तो चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश आया है हमें चंडीगढ़ से सतीश अनेजा का। ये लिखते हैं, शोभा बहन जी नमस्कार। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जी हाँ, हम उम्मीद की बात कर रहे थे तो उन्होंने हमारी बात को रखा और उन्होंने सुना और संदेश भेजा है। लिखते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मैं कभी भी किसी बात के लिए परेशान या मायूस हो जाऊं तो आंखें बंद कर परमात्मा के समक्ष अपनी बात रखता हूं, क्योंकि ये जीवन उसी ने दिया है और हर रोज़ सांसें भी उसी की सौगात है। यकीनन मुझे तो उसी वक्त अंधेरे में ज्योति नज़र आ जाती है और चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और बात सिर्फ विश्वास की है। यह जी हाँ, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब आप कहीं से उम्मीद नाउम्मीद हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो बस ईश्वर का ध्यान होता है ना, वो करना ही सबसे ज़्यादा सुखमय होता है, क्योंकि वो हमें शांति भी प्रदान करते हैं और हमें रास्ता भी सुझाते हैं। तो बहुत ही प्यारी बात लिखी है आपने। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। कोहका भिलाई से ये हमारे साथ जुड़े हैं उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल और नंदिनी झंगेल। धमधमा ग्राम सुखरी कला से हैं इनके साथ अमित झंगेल, शकुन झंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य झंगेल और अंजलि झंगेल जी। और ये संदेश हमें आया है गांव घिटोरनी नई दिल्ली से है साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, तराना, हिना और सीमा का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और प्रतिभा शर्मा जी। और ये जो संदेश आया है, यह हमें आया है, ये लिखते हैं, शोभा दीदी जी आप गीत बहुत अच्छे सुनवा रही हैं, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। तो दोस्त, आप ही की पसंद के गीत हैं। और लिखते हैं कि हम भी आपके नियमित श्रोता हैं, गुजारिश है आपसे अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जी हाँ दोस्त, संदेश आते हैं तो हम ज़रूर लेते हैं। और ये संदेश हमें भेजने वाले हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी। अगला जो संदेश हमें आया है वो आया है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का। और ये हमें संदेश आया है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासू, अर्नव आनंद, सत्यम आनंद का, पाकुड़ झारखंड से। और इनके साथ जुड़े हैं बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। और अगला जो संदेश है, ये लिख रहे हैं कि इनका संदेश शामिल नहीं हुआ पर हो गया है दोस्त। तो आगे बढ़ते हैं और अगला संदेश देखते हैं। ये हमें आया है महरारा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी का, अनब यसफ अब्बासी का, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी का, किदवाई नगर सिद्धपुरा टाउन से इनके साथ जुड़े हैं जुबैर अली खान। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें बहुत सारे पुराने संदेश आ रहे हैं तो हम नए लेंगे। तो दोस्त, अगला संदेश हमें जो आया है वो आया है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। और भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं दतरंगी से। और ये हमें संदेश आया है, जी हाँ, इन्होंने रिपीटेड संदेश हमें एक ही मेल में भेजा है, तो इनके संदेश को बहुत लंबा चला जाता है और फिर ये हमें जो लिख रहे हैं, तो इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम शानदार चल रहा है, गीत पसंद आ रहे हैं, थोड़ा सा प्यार, इन्होंने बहुत प्यारे गीत की फरमाइश भी की है। और ये हैं रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से किशन बंजानी, स्वाति कीशू जी। और अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है, जी हाँ, ये मॉडल टाउन करनाल से है। ये लिख रहे हैं, ये है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा जी, और लिख रहे हैं कि इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। तो दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर आपकी पसंद के गीत ना हो तो कैसे हो सकता है। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, गुमनाम फिल्म का, और नहीं, धुंध धुंध फिल्म का प्यारा सा गीत है।
महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

बहुत ही प्यारा गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा मुझे लगता है धुन फिल्म का ये गीत है और श्रोताओं की पसंद वाकई लाजवाब है। चलिए अब संदेशों को भी ले लेते हैं। ये जो अगला संदेश हमें आया है ये है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का जी का है। ये लिखते हैं कि प्रोग्राम में एक मेल भेजते हैं मगर मेल शामिल नहीं किया जाता, शामिल करें, उम्मीद है शामिल किया जाएगा। तो दोस्त शामिल हो गया ना आपका संदेश। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है, ये संदेश हमें, ये हमें आया है संदेश मनोहर लाल गांधी, सत्य प्रकाश गोयल, प्रकाश चंद गोगिया का, दिल्ली से। ये लिखते हैं कि इन्हें गीत भी अच्छे लग रहे हैं और इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है और लिख रहे हैं हम हैं पुराने श्रोता। तो दोस्त बहुत खुशी होती है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है हमें छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले का, और इनके साथ है कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंताशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले की ओर से ये संदेश आया हमें। और ये लिखते हैं विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और गॉड के ऊपर विश्वास करना सच्चाई है, वरना हम नास्तिक हो जाएंगे। दुनिया में सब कुछ गॉड ही करता है और करवाता है। जी हाँ, कहते हैं ना कि डोर तो उसी के हाथ में है। और अगला जो है संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का। लिखते हैं कि हम भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, तो शुक्रिया दोस्त, और आपका मेल भी हमने शामिल किया है ना। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है मधु किरण का, दिल्ली से जुड़ी है हमारे साथ। और अगला संदेश इन्होंने हमें शिकायत भेजी है कि जान पहचान वाले सब शामिल हो गए तो गैरों को भी शामिल करें। दीदी जी बाकी आपकी मर्जी है, शामिल करें या नहीं जी। तो दोस्त ऐसी बात क्या है,

हमारे साथ तो जान पहचान कहो तो किसी की नहीं है, नहीं तो आप ही सबके साथ जान पहचान है, क्योंकि हम तो आपके साथ रेडियो से ही जुड़ते हैं ना। तो ये जो संदेश है इनको शामिल भी कर लेते हैं और इनके नाम बता देते हैं। ये है खैल बाजार पानीपत से हमारे साथ नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से इनके साथ है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, टुक्कू भाविक सिक्का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और इनके साथ है कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकट परिवार परवीन। चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत है, फिल्म है गुमनाम।

दोस्तों, सच में इस दुनिया में जीना हो तो हमें अपने दुख दर्द को साइड में रखना पड़ेगा और यूं कहें कि हमेशा खुश रहना पड़ेगा, और जब भी कोई परेशानी हो तो उम्मीद का सहारा बिल्कुल बांधे रखना पड़ेगा। तो चलिए अब आपके मैसेजेस को भी शामिल कर लेते हैं। ये जो संदेश आया है, ये आया है मैं गंज डुंडवारा से है, शमशुल कमर राही, शाहिना, फातिमा, नान खान और अनु खान जी का संदेश। और ये संदेश हमें आया है, ये है, इन्होंने बहुत प्यारी पंक्तियाँ लिखी हैं और क्या कहते हैं, ये संदेश हमें आया सतप्रकाश सनोठिया का, रोहिणी दिल्ली से लिखते हैं। काले बादल, ठंडी हवाएं, रिमझिम फुहारे, संदेशा लाएं, लगातार बरसती बूंदों की धार, धरती पर छाई अमावट की बहार, मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, मन को कर देती बेकाबू, चाय की चुस्की, पकौड़ों का स्वाद, लाता है बचपन की हर याद। वाकई बहुत दिल छूने वाली पंक्तियाँ आपने हमें लिख कर भेजी हैं और इन्होंने बहुत प्यारे गीत की फरमाइश की है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। यह आया है लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाबदास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी, रानी माणिकपुरी का। और ये संदेश हमें आया है, ये लिख रहे हैं डीबी राणा, नेहरू विहार दिल्ली से लिख रहे हैं। इन्हें गाने भी पसंद आ रहे हैं, प्रस्तुति भी अच्छी लग रही है और वाकई में शुक्रिया, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमको सुनते हैं। और ये लिख रहे हैं, थक गए हैं दीदी जी, हमारा मेल शामिल नहीं किया तो दोस्त शामिल हो चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हैं गांव पांडर कबड़ा से, अनिल बुरांडे, अर्षा बुरांडे, अनुषी बुरांडे, धनश्री बुरांडे जी। और दोस्त, अब हमारे पास वक्त की कमी हो रही है और इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की, क्योंकि वक्त कह रहा है कि अब थमना ही पड़ेगा और आने वाला जो पल है वो तो आने वाला है। गीत है बहुत प्यारा सा, वो मुझे याद आ गया और आपकी पसंद पे भी आया था, गोलमाल फिल्म का, किशोर कुमार की। जो आने वाला पल है ना, वो जाने वाला होता है, कभी भी कोई पल रुकता नहीं। और अगर दुख आए तो आप ये ना सोचिए कि कुछ होगा नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो चला ही जाता है। और ज़रूर कहते हैं ना कि रात होती है तो सुबह भी होती है, ऐसी बात नहीं है, तो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। एक उम्मीद जो होती है बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो उम्मीद हमें दूसरों को भी देनी चाहिए। और कोई हमें उम्मीद बंधाता है और तो ज़रूर बांधनी चाहिए, और ईश्वर से तो हर कोई उम्मीद करता है, उनके अलावा तो इस संसार में और कौन है जो सबसे सच्चा लगे हमें। तो चलिए, बहुत सी बातें हो गई और आपसे अब मैं चाहती हूँ इजाज़त, नमस्कार। और दोस्त, जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा गीत आपके इंतज़ार में, चलिए सुनते हैं।

0: तो दोस्त आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरण में सुधार किए जाएंगे। कर्मचारियों को मतदाता विवरण, नई तस्वीर, ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।

0: श्रोताओं, आज के युग में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। लोगों के रहन सहन, खाना पीना और पहनावे में बहुत परिवर्तन आ गया है, परंतु आज भी कुछ लोग पुरानी सोच वाले हैं। श्रोताओं, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारे समय में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, अधिक शिक्षा की आड़ लेकर लड़कियां बिगड़ रही हैं। और ये तो जरूर ही सुना होगा कि ज्यादा पढ़ी लिखी बहू में संस्कार की कमी होती है, परंतु ऐसा नहीं है। आज शिक्षा ने नारी को इतना सशक्त बना दिया है कि वह बड़े से बड़े काम को बहुत ही सहजता से संपन्न करती है, घर की जिम्मेदारियों का पालन बहुत ही सही ढंग से करती है। परंतु कुछ ही पुरानी सोच रखने वाले लोग आज भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं और अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते। उनके अनुसार बहू और बेटी में बहुत बड़ा अंतर है। बहू को तो घर में रहकर सिर्फ घर के ही काम करने चाहिए। अगर घर की बहू बाहर जाकर नौकरी करती है तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाती है, जबकि बेटी को नौकरी करने और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने पर बल दिया जाता है। उनके अनुसार बहू और बेटी दोनों के लिए अलग अलग नियम है, परंतु आज उन पुरानी सोच रखने वाले लोगों को समझना होगा कि बहू और बेटी दोनों को शिक्षा और नौकरी करने का अधिकार है, परंतु पुरानी सोच रखने वालों के कारण ही नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है। रीति रिवाज के नाम पर घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता है, जिससे नारी के गुणों को उजागर नहीं किया जाता, परंतु शिक्षा पाकर महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान होता है। शिक्षा पाकर ही वे घर गृहस्थी में सहयोग दे पाती हैं। इस विषय पर हम आपसे कुछ बात करेंगे और कुछ सुनाएंगे, एक नाटक। पूनम एक पढ़ी लिखी और बहुत ही संस्कारी बहू है। वह सुलोचना जी मतलब अपनी सांस का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखती है। वह अपने घर का काम बहुत ही सलीके से करती है और पूरी कोशिश करती है कि उसकी सास को उसे किसी प्रकार की शिकायत ना हो। परंतु सुलोचना जी, जो पूनम की सास, बहुत ही पुराने विचार की है। वह पूनम के हर काम पर कड़ी नजर रखती है। वह चाहती है जिस प्रकार उन्होंने अपनी सास के समय उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया, उसी तरह पूनम भी उनके हर एक फैसले को माने और हर काम को पूछ कर करे। वहीं समीर, जो पूनम का पति है, वह एक कंपनी में काम करता है। समीर पूनम और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है, परंतु वह कभी भी अपनी माँ और पत्नी के बीच होने वाली बातों में नहीं बोलता। वह पूनम को ही समझाता है कि माँ की किसी बात का बुरा ना मानना। और पूनम भी सुलोचना जी का पूरा सम्मान करती है। सुलोचना जी की बड़ी बेटी श्रद्धा एक विवाहित महिला है। वह अपनी माँ के घर पर कुछ दिन रहने के लिए आई है। उसका एक 2 साल का बेटा है। वह एक ऑफिस में काम करती है। वह बहुत ही समझदार महिला है। वह अपनी माँ को भी समझाती है कि आजकल लड़कियां बहुत काम कर रही हैं, घर के साथ साथ ऑफिस में भी काम करती हैं। परंतु पुराने विचारों होने के कारण वह श्रद्धा की बात को अनसुना कर देती है और अपने विचारों को अहमियत देती है। वही पूनम अपनी सास और ननद का पूरा ध्यान रखती है और अपने काम में व्यस्त रहती है। वहीं सुलोचना जी के पति रामचंद्र जी बहुत ही शांत व्यक्ति हैं। वह सुलोचना जी को समझाते हैं, परंतु सुलोचना जी को समझाने के लिए तथा इस युग में बहू बेटी एक समान है ये बताने के लिए आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: अरे सुनती हो, अभी तक सुबह की चाय नहीं आई।
2: अरे क्या, अब तक चाय नहीं दी आपको? तभी बोलती थी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाओगे तो यही होगा।
1: अरे इसमें पढ़ाई लिखाई कहाँ से आ गई? क्या पता बहू किसी काम में बिजी हो, तुम क्यों नहीं चाय बना लेती?
2: हाँ, घर में बहू के होते हुए अब मैं काम करूँ।
1: तो क्या हुआ, घर के छोटे छोटे काम करने से तुम थोड़ी छोटी हो जाओगी? अरे काम करने से तो शरीर फिट रहता है।
2: हाँ, मुझे तो घर की नौकरानी बना दो। पहले आपकी माँ की जी हजूरी की, अब आपकी बहू की जी हजूरी करूँ। तो सुन लो, ये सब मुझसे नहीं होगा।
1: तुम भी ना छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो।
3: सॉरी पापा जी, वो थोड़ी देर हो गई चाय देने में।
1: कोई बात नहीं बेटा।
3: माँ जी, क्या आपको कुछ चाहिए?
2: नहीं बहू, तुम जाकर समीर को नाश्ता देकर जल्दी से उसके ऑफिस का टिफिन पैक कर दो। और हाँ, सभी काम सफाई से और ध्यान से करना।
3: जी माँ जी, ठीक है।
0: परंतु पूनम को घर के सारे काम साड़ी पहनकर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए वह समीर से बात करना चाहती है, तो वह समीर के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में समीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। पूनम कुछ समय चुपचाप वहीं खड़ी रही और सोचती है कि किस प्रकार वह समीर से बात करे। तभी पूनम समीर से बोलती है,
3: समीर समीर सुनो ना, कुछ बात करनी है मुझे आपसे।
4: हाँ बोलो, क्या बात है?
3: समीर, घर के काम करते समय क्या मैं साड़ी की जगह सूट पहन सकती हूँ?
4: अरे यार पूनम, तुमको तो पता है ना, माँ को तुम्हारा सूट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं।
3: पर समीर, मैं घर के बहुत से काम को साड़ी पहनकर नहीं कर सकती। प्लीज समीर, समझने की कोशिश करो। समीर, एक बार तुम माँ से बात करो ना।
4: देखो पूनम, मैं इस बारे में माँ से कुछ नहीं कहने वाला, और तुम भी जानती हो माँ नहीं मानेगी।
3: तो क्या मैं एक बार माँ से बात कर लूँ?
4: तुमको जो ठीक लगे वो करो, पर मैं तो माँ को कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, पर मुझे तुम्हारे सूट पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं ऑफिस चलता हूँ।
0: इतना कहकर समीर गाड़ी लेकर जॉब पर चला जाता है और पूनम घर के काम में लग जाती है। वो किचन के काम कर ही रही होती है और अपनी सास से बात करने के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से वह अपनी सास से साड़ी की जगह सूट पहनने वाली बात कहे। उसकी काम वाली शांता उसको देखकर पूछ लेती है, बीबी जी क्या सोच रही हो? तो पूनम बोलती है, कुछ नहीं, बस वैसे ही। और तभी पूनम की सास सुलोचना जी वहां आ जाती है। अभी सुलोचना जी रसोई का जायजा ले रही थी, तभी पूनम हिम्मत करके उनसे पूछ लेती है,
2: हाँ क्या बात है बोलो।
3: माँ जी, आप कहें तो मैं भी आपकी तरह घर में सूट पहनना शुरू कर दूं क्या? वो साड़ी में काम नहीं हो पाता है मुझसे।
2: खबरदार बहू, जो मेरे सामने तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो इस घर में तुम मेरी बराबरी करने चली हो।
3: नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस,
2: मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन एक बात याद रखना बहू, जब तक मेरी सास जिंदा थी मैंने हमेशा ही साड़ी पहनी थी और साड़ी का पल्लू हमेशा सर से उतरने नहीं दिया। उनके गुजर जाने के बाद ही मैंने अपनी मर्जी से सूट पहनना शुरू किया था, उससे पहले नहीं। और तुम्हारी सास यानी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी तब तुम अपनी मर्जी से घर में जो मर्जी पहन लेना।
0: ये कहते हुए सुलोचना जी रसोई से बाहर निकलकर वापस जाने के लिए मुड़ी थी कि उनकी नजर अपनी बेटी श्रद्धा से टकरा गई। लेकिन आज अचानक अपनी माँ की ऊंची आवाज सुनकर वह सीढ़ियों से उतरकर रसोई में आ पहुंची थी और अपनी माँ से इस तरह गुस्सा करने की वजह पूछती है,
5: क्या हुआ माँ, आप भाभी पर इतना नाराज क्यों हो रही हो, क्या बात हो गई?
2: अरे क्या बताऊँ बेटा, आजकल की बहुएं ससुराल आते ही अपनी सास की बराबरी करने लगती हैं।
5: लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ।
2: तेरी भाभी को साड़ी पहनने से परहेज हो रहा है, इसका सूट पहनने का मन कर रहा है।
5: माँ, सूट तो मैं भी पहनती हूँ, इसमें क्या दिक्कत?
2: मुझे दिक्कत है।
5: लेकिन क्यों माँ?
2: बेटा, तेरे ससुराल में तेरी सास नहीं है और दामाद जी तुझे खुद बाजार ले जाकर तेरी पसंद के कपड़े दिलवाते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है।
5: माँ, मैं कुछ समझी नहीं।
2: तेरी भाभी का सूट पहनना ना तो मुझे पसंद है और ना ही तेरे भाई समीर को।
5: लेकिन माँ, समीर को भाभी के सूट पहनने से क्या दिक्कत है?
2: बेटा, यह बात उसे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं। मुझे जो पसंद है वही मेरे बेटे को पसंद है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
5: पर माँ,
0: तभी एक चीख सुनाई देती है। ये चीख रोहित यानी श्रद्धा के बेटे की थी, जो अपनी माँ श्रद्धा के पीछे पीछे आने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर गया था और बहुत ही चीख चीख कर रो रहा था। उसके सिर पर चोट आई थी, बहुत खून निकल रहा था। तभी पूनम और काम वाली शांता भी वहाँ आ गई। सुलोचना जी घबरा कर रोने लगी और कहती है,
2: अरे अरे ये क्या हुआ, रोहित कैसे गिर गया? हे भगवान, कितनी चोट आई है इसे। शांता जरा देख तो सही, पड़ोस वाले शर्मा जी घर पर ही हैं ना, जल्दी जा उन्हें बुला कर लेकर आ, रोहित को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्दी जा।
0: पर माँ जी, अभी तो उनको मैंने ऑफिस जाते हुए देखा है, वो तो चले गए अपने ऑफिस।
2: अरे अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं, घर में कोई आदमी भी नहीं है जो रोहित को हॉस्पिटल ले जाए, हे भगवान।
3: माँ जी, समीर भी ऑफिस चले गए, घर पर नहीं है, आप कहो तो मैं उनको फोन करके बुला लूं क्या घर?
0: अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे भाभी आपको तो स्कूटी चलानी आती है ना, आप तो स्कूटी से कॉलेज जाती थी ना। भाभी जल्दी से स्कूटी की चाबी ले आओ और रोहित को हॉस्पिटल ले चलो। भाभी प्लीज जल्दी करो।
2: पर दीदी पर वर क्या, जल्दी कर बहू, ये ले स्कूटी की चाबी और रोहित को हॉस्पिटल ले जाओ।
5: जी माँ जी ठीक है। साड़ी का पल्लू संभालते हुए स्कूटी चलाने के लिए बाहर की ओर चलती है, तभी उसकी सास सलोचना जी आवाज लगाती है।
2: अरे बहू रुक, पहले सूट पहन ले, साड़ी पहनकर स्कूटी कैसे चलाएगी, कहीं गिर गई तो?
5: पर माँ जी।
2: पर वर कुछ नहीं, जल्दी कर जाके सूट पहन और रोहित को जल्दी ले जाओ हॉस्पिटल।
5: ठीक है माँ जी।
6: पूनम बहुत ही हैरान थी सास के ऐसे व्यवहार से। वो सास जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि मेरे मरने तक का इंतजार करो तब करना अपने मन के, और अब वो खुद ही बोल रही है कि सूट पहनकर और घर से बाहर जाने के लिए स्कूटी की चाबी दे रही है। स्कूटी की चाबी मिलते ही मानो पूनम की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अब वह खुद को बहुत खुश और आजाद महसूस कर रही थी। पूनम ने जल्दी से सूट पहना और स्कूटी की चाबी ली और रोहित और श्रद्धा के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई, जिससे रोहित का इलाज समय पर हो सका और सुलोचना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सुलोचना जी अपनी बहू को हर वो काम करने को कहती जो उनकी बेटी करती है, फिर वो पढ़ाई हो या जॉब। अब तो सुलोचना जी खुद पूनम को मार्केट ले जाती और उसकी पसंद की ड्रेस दिलवाती है, और पूनम भी सुलोचना जी की बहुत सेवा करती है, अपनी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती है। सारा दिन उनके घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है।

तो श्रोताओं, आपने इस कहानी के माध्यम से सुना कि किस प्रकार एक छोटी सी घटना ने सुलोचना जी की पुरानी सोच और रूढ़वादी सोच को बदल कर रख दिया और किस तरह उनकी सोच बदल गई। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आए हैं, जरूर हमें बताएं।

नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, और अब सुनते हैं सबरस के अंतर्गत ये गीत हरजीत हरमन की आवाज़ में।

अभी आप ये गीत सुन रहे थे हरजीत हरमन की आवाज़ में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रसेनजीत रॉय से सितार वादन, राग है गॉड सारंग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना प्रसेनजीत रॉय से सितार वादन, राग था गॉड सारंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से 1 दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।

0: घर आंगन। घर आंगन के आज के शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
1: और मैं हूँ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा और मंजुला का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: तो मंजुला, आज जो 6 जुलाई का दिन है, भारतीय इतिहास में दो महत्वपूर्ण हस्तियों की याद दिलाता है।
0: और आज पुण्यतिथि है बाबू जगजीवन राम जी की, एक ऐसे नेता जिन्होंने सामाजिक समानता, अधिकारों और देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
1: और साथ ही आज जयंती भी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जो कि एक प्रखर शिक्षाविद थे, विचारक थे, राजनेता थे, और इन्होंने राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। इन दोनों महान व्यक्तित्व को FM गोल्ड के स्टूडियो से हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।
0: और दोस्तों, अब आज का सवाल, आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है, यानी फेवरेट मेकअप लुक कौन सा है? लिपस्टिक, काजल, बिंदी या फिर कुछ और, कोई ऐसी चीज जो आप मेकअप करते वक्त हमेशा अप्लाई करती हैं या करते हैं, यानी आपका फेवरेट मेकअप लुक कौन सा है? जवाब हमें ईमेल लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले हैं मधुर संगीत, दिलचस्प बातें और ढेर सारी मस्ती।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म दो रास्ते से।
1: और मंजुला, कल भारतीय लोक कला ने अपने सबसे बुलंद आवाजों में से एक को खो दिया। पर्णवानी की महान साधिका, पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई जी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं।
0: और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई पुरस्कार नहीं थी, बल्कि ये थी कि उन्होंने एक लोक कला को आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर बना दिया। उन्होंने साबित किया कि सच्ची कला न सीमाएं देखती है, न परंपराओं की दीवारें, वह बस दिलों तक पहुंचती है।
1: जी, और उनकी आवाज़ भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी गाई हुई महाभारत की कथाएँ, उनका संघर्ष और उनकी विरासत हमेशा हमारी संस्कृति में जीवित रहेगी। FM गोल्ड के स्टूडियो से उनको बहुत श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
2: पद्म विभूषण तीजन भाई
3: ऐसे है, मैं तो पहली पंडवानी

तेला खुदे नहीं जाना रहे हो लड़का जात में लड़का मती खेलना कूदना यही हमारे काम रहा है। ने कहानी कथस ते कहानी सुनता हूँ ऐसे की के कब के द्रौपदी तीर हरण के दिन के सुनत

0: और आज का सवाल हम फिर से दोहराते हैं कि आपको ये बताना है कि आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन है। क्यों रश्मि, आप क्या कहती हैं इस बारे
1: जी,
0: में
1: जी, मेकअप लुक कौन सी है, आपको क्या पसंद है, और एक जवाब भी आ गया है मंजुला। और क्योंकि देखिए ये कार्यक्रम घर आंगन केवल महिलाओं के लिए नहीं है, परिवार के लिए है। तो नवीन भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीनगर से, कह रहे हैं क्या जेंट्स भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल आप बता सकते हैं, और क्योंकि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप हमारे श्रोता है, वो कह रहे हैं कि मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, वैसे मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ शेविंग करता हूँ, अच्छे से तैयार हो जाता हूँ बढ़िया कपड़े पहन के, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सवाल था हमारा मंजुला, और सवाल पे सवाल हम लगातार किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं ना।

0: और एक सवाल मैं तुमसे मंजुला कर रही हूँ,
1: कीजिए कीजिए।
0: क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसे बनाया नहीं गया?

0: बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराश कर निकाला गया हो,
1: और वो भी ऊपर से नीचे। जी, आज की आध्यात्मिक यात्रा पे ले चलते हैं, और मैंने ऐसे एक मंदिर को सुना है, महाराष्ट्र के एलोरा स्थित कैलाश मंदिर की ओर। एक ऐसा स्थापत्य है रश्मि, जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। जरा सोचिए, इस मंदिर में एक भी पत्थर जोड़कर नहीं लगाया गया है। लगभग 2 लाख टन चट्टान

0: लग जाती तो उस पत्थर को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था।
1: जी बिल्कुल, और यही तो वजह है कि जो कैलाश मंदिर है ना, उसको दुनिया की सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। और देखिए ना, कितनी हम आजकल तो कितनी सारी सुविधाएं हैं, क्रेन है, कंप्यूटर है, आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन उस समय अद्भुत कल्पना, गणना, धैर्य और असाधारण शिल्प कला से 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने भगवान शिव को समर्पित करते हुए इसे बनवाया था मंजुला।
0: और मंदिर का नाम कैलाश इसलिए रखा गया क्योंकि इसके भगवान जो शिव हैं उनके दिव्य धाम कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण के जीवंत दृश्य उकेरे गए हैं। हर मूर्ति, हर नक्काशी मानो पत्थरों में सांस लेती हुई महसूस होती है।
1: तो अगली बार मंजुला कभी आप एलोरा जाएं तो कुछ पल शांत बैठिए, उन पत्थरों को देखिए जिन्हें सदियों पहले किसी कलाकार ने अपनी आस्था और तपस्या से जीवंत बना दिया। वहां जाकर एहसास होता है कि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती मंजुला, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं।
0: और कैलाश मंदिर हमें ये भी सिखाता है कि जब दृष्टि स्पष्ट हो, धैर्य अटूट हो और समर्पण पूर्ण हो तो पत्थर भी इतिहास बन जाते हैं। तो अगली बार अगर यात्रा की आपने प्लान की तो यहाँ पे जरूर जाइएगा।
1: और ये जो मंदिर है ये भारत की आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक सोच और अद्भुत शिल्प कला का जीवंत प्रमाण है।

0: अभी हम सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म भैरवी से। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का सवाल क्या है, तो जवाब भी आने लग गए हैं। और अभी अंशु माला जी ने एक बहुत ही खूबसूरत मेल भेजा है। उन्होंने लिखा है कि नमस्ते मंजुला जी, मैं ऐसे तो फुल मेकअप लुक पसंद करती हूँ, हेवी नहीं और सब कुछ आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ऐसा जो मेकअप है वो मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई है कि साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है इन क्लॉथ्ड कॉग्निशन, जिसका मतलब है कि हम जो भी पहनते हैं या खुद को जैसे प्रेजेंट करते हैं वो सच में हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत ही अच्छी बात की। रश्मि जी, आपका क्या सोचना है?
1: भाई,
0: और
1: मुझे
0: आपके पास भी कोई मेल है?
1: बहुत सारी मेल्स हैं मेरे पास। अनन्या की मेल है, वो कह रही है कि मेरा पसंदीदा मेकअप जो लुक है वो बड़ा सादगी भरा है, न्यूड मेकअप लुक है, और कहती है कि हल्का मेकअप पसंद है, पतला आई लाइनर लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, भारी मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे प्राकृतिक और सादा लुक अच्छा लगता है, ऐसा वो कह रही हैं। और साथ में चरणदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चौधरी वास, राजू अग्रवाल, निर्मल देवी, वो कह रहे हैं कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, आप लोगों के प्यार के साथ हैं, वो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाइयां जी, है ना। और देखिए कुछ जो पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि हम काजल लिपस्टिक तो नहीं लगाते, बस नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। भाई ये तो सादगी भरा जो है, जो ये तो स्वच्छता है, ये तो पहली शर्त है। अगर आप खूबसूरत देखना चाहते हैं, स्वच्छता तो जहां होते हैं वहां तो ईश्वर का वास होता है।
0: और रोहिणी से आराधना, वंदना, राधा, मीनाक्षी, ईशा, ये लिखते हैं कि हमें तो सिंपल लुक ही पसंद है, साड़ी का लुक सब जगह काम आता है, चाहे मीटिंग हो या पार्टी या फिर शादी का कोई फंक्शन, बस आप साड़ी पहन लीजिए, हल्का या भारी कोई भी पहन सकते हैं
1: जी।
0: और एक और मेल आया है, कोई क्या दिख रहा है, उग्रसेन यादव जी का, कि आप दोनों को मेरा आदर सहित राम राम, और घर आंगन में जो मैसेज कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, थोड़ा हर किसी को जो मर्यादा में रहें तो अच्छा रहेगा। चलिए आपके मेल सबके लिए बहुत,
1: देखिए हम तो ये कहेंगे कि सबसे जो खूबसूरत मेकअप है ना वो होता है आत्मविश्वास, मुस्कान और सादगी। बाकी देखिए ये तो जो चेहरे पर लगाने वाली चीजें हैं, हमें तो कहा जाता था कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप पोषण से भरपूर खाना खा रहे हैं और साफ धुले हुए कपड़े पहन रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका जो खूबसूरत स्वास्थ्य अपने आप बताएगा कि आप कितनी खूबसूरत हैं या आप कितने हैंडसम हैं, है ना?
0: बिल्कुल ठीक कहा। और एक खास बातचीत हम अब करने जा रहे हैं कि भारत में एक ऐसी 300 साल पुरानी फ्लोरिंग तकनीक है जो बिना बिजली खर्च किए घर को एसी जैसी ठंडक देने में मदद करती है। तो ये है रश्मि जी केरल की 300 साल पुरानी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कावी फ्लोरिंग, सिर्फ एक फर्श नहीं बल्कि भारतीय बुद्धिमत्ता, कारीगरी और सस्टेनेबिलिटी का शानदार उदाहरण है। आज हर घर में एसी, कूलर और बढ़ते हुए बिजली के बिल हमारी चिंता के कारण बन चुके हैं, तब हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ मिलकर एक ऐसा समाधान खोज लिया जो आज भी उतना ही इफेक्टिव है।
1: भाई वाह क्या बात है, कभी तो तुम हमें ले जाती हो मंदिरों की ओर और कभी बताती हो कावी फ्लोरिंग के बारे में, क्योंकि भाई ये तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चूना, आयरन ऑक्साइड और पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों से बनाई जाती है। और तुमने जो बताया उसके मैं और जोड़ दूं कि नारियल के तेल से घंटों पर इन पे पॉलिश किया जाती है, जानते हो, और ये फर्श गर्मियों में पैरों को बड़ा ठंडा महसूस करवाता है और घर के

0: भीतर का तापमान अपेक्षाकृत आरामदायक बनाने में बहुत मदद करता है।
1: बिल्कुल, और सोचिए जहां हम गर्मी से बचने के लिए हजारों यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं, वहीं हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से ही ठंडक उधार ली थी। और इतना ही नहीं, कावी फ्लोरिंग पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें सीमेंट, हानिकारक रसायन का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, यह वर्षों तक टिकती है और समय के साथ इसकी चमक बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात यह पर्यावरण पे भी कम बोझ डालती है।
0: तो हम तो ये कहेंगे, जैसा हमारे अभी श्रोता ने कहा कि आधुनिक बढ़ने की दौड़ में हम कभी कभी बुद्धिमान परंपराओं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबल लिविंग की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी पुरानी तकनीकी की ओर जाएं जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, है ना।
1: तो अगली बार जब गर्मी आपको परेशान करे तो याद रखिए भविष्य की कई समस्याओं का समाधान शायद हमारे अतीत की विरासत में ही छिपा है।
0: और इस ठंडक में क्या पता आपको किसी का झुमका भी मिल जाए।

0: अभी हम सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म परख से।
1: और इसके साथ हमारे पास जो हमने क्वेश्चन पूछा था ना, तो हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं, तो आप जुड़ गए हैं महेश अग्रवाल जी, मीना अग्रवाल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से, कह रहे हैं कि कार्यक्रम पसंद आ रहा है, खूबसूरत बातें चल रही हैं, जानकारी अच्छी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें क्या पसंद है। कभी भी तैयार होकर जाते हैं तो भाई किस प्रकार तैयार होते हैं, तो हमें इंतज़ार रहेगा। और देखो भाई मंजुला, अगर हम तैयारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जब तैयार होते हैं तो वो होती है शादी, है ना,
0: कहीं भी
1: कोई आयोजन या उत्सव है ना, तो शादी में जाने के लिए तो आप अच्छे से तैयार होती होंगी। मैं भी साड़ी वगैरह निकालती हूँ और हमेशा साड़ी में शादी में जाने के लिए तैयार होती हूँ, है ना।
0: बिल्कुल, तो शादी की बात जब हो ही रही है तो चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे समाज में शादी को केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है, लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि शादी का फैसला केवल माता पिता का होना चाहिए या उस व्यक्ति का भी जिसकी पूरी जिंदगी से जुड़ने वाली है। आप क्या सोचती हैं?
1: भाई मुझे लगता है माता पिता तो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं ना, भाई उनका अनुभव है, उनकी समझ है भाई, और वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता भी करते हैं। लेकिन शादी एक ऐसा निर्णय है मुझे लगता है मंजुला, जिसे जीवन भर निभाना होता है, इसलिए भाई बच्चों की इच्छा, उनकी सहमति और उनकी भावनाओं का सम्मान होना उतना ही आवश्यक है जितना भाई माँ बाप की या परिवार की राय।
0: बिल्कुल सही, लेकिन सहमति यानी कंसेंट केवल एक औपचारिक हाँ नहीं है रश्मि जी, यह एक स्वतंत्र, स्पष्ट और बिना किसी दबाव के लिया गया निर्णय है। यदि कोई व्यक्ति डर, भावनात्मक दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक मजबूरी के कारण शादी के लिए तैयार होता है तो उसे वास्तविक सहमति नहीं कहा जा सकता।
1: हम तो ये कहेंगे भाई, जब किसी युवक या युवती को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है तब रिश्ते और अधिक

0: मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और भाई हम तो ये कहेंगे कि सफल जो विवाह होता है उसकी नींव केवल परंपराओं पर नहीं टिकी होती बल्कि आपसी सम्मान, समझ और स्वेच्छा पर टिकी होती है, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। और माता पिता का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है लेकिन अंतिम निर्णय में बेटे या बेटी की इच्छा को भी समान महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि शादी कोई पारिवारिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत निर्णय है।
0: तो हम तो ये कहेंगे भाई मजबूरी से बना रिश्ता कुछ समय तक ही चल सकता है लेकिन सहमति से बना रिश्ता विश्वास और सम्मान के साथ जीवन भर खिल सकता है।

0: चाय पे बुलाने के वक्त आप क्या पहनती हैं, कैसे सजती हैं, कैसे संवरती हैं, यही तो है हमारा आज का सवाल। तो कार्यक्रम है घर आंगन, मैं हूं आपके साथ मंजुला और रश्मि जी, और हमारा सवाल तो आप जानती हैं कि आज आपको कौन सा मेकअप लुक पसंद है वो बताना है। और अभी हम सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म सौतन से।
1: और एक और जवाब हमारे पास आया है, आप हैं डी राजेश्वर राव एडवोकेट, और वो कह रहे हैं कि खूब सारा पानी पीजिए और ऐसे चीज़ें खाइए जिसमें खूब सारा पानी हो, जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड सेलरी, यानी कि खीरा खाइए, है ना, खरबूज खाइए, तरबूज खाइए और खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीने से जो त्वचा है वो वैसे ही खूबसूरत लगती है और आपकी जो रिंकल्स होती हैं वो हट जाती हैं, मतलब कम दिखने लग जाती है।
0: यानी इन्होंने मेकअप की बात अंदर से बताया है, यानी भीतर की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी वो बताया है।
1: जी,
0: तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, असली नारीवाद यानी रियल फेमिनिज्म क्या है। होता ये कि आज फेमिनिज्म यानी नारीवाद शब्द सुनते ही अक्सर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या नारीवाद पुरुषों के खिलाफ है, क्या ये हमारी संस्कृति से नफरत करना सिखाता है, या फिर बराबरी और सम्मान की बात करता है।
1: हमें तो लगता है कि हमें साथ मिलकर चलना है, बराबरी के अधिकारों की बात करनी है और हर व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष उसे समान अवसर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। मंजुला, और मैं तो ये कहूंगी कि हम ये सोचें, ऐसा क्यों ना सोचें कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पहले वो मनुष्य है ना, हमें देवी ना बनाया जाए, सिर्फ मनुष्य का दर्जा ही मिल जाए वही बहुत है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज महिलाएं अगर पढ़ रही हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं, विज्ञान, सेना, खेल, राजनीति और अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बना रही हैं, तो इसके पीछे कई साहसी महिलाओं का योगदान है। तो वास्तव में नारीवाद का अर्थ ये नहीं है रश्मि कि अपनी संस्कृति, परिवार या परंपराओं से अलग हुआ जाए। जो परंपराएं सम्मान, समानता और गरिमा को बढ़ाती हैं वो हमारी ताकत है, और जो भेदभाव पैदा करे उन्हें बदलना ही समाज की प्रगति है।
1: जी बिल्कुल, हमें याद रखना चाहिए कि ताकत केवल कठोर होने में नहीं है बल्कि संवेदनशील होने में है। नेतृत्व पुरुषों का भी गुण है और करुणा जो है महिलाओं में भी आ सकती है, तो दोनों में शक्ति भी हो सकती है और कोमलता भी हो सकती है ना।
0: और एक बेहतर समाज तब बनता है जब महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बनते हैं। तो आइए ऐसा समाज बनाए जहां बेटा और बेटी दोनों के सपनों को एक जैसी उड़ान मिले, क्योंकि जब बराबरी बढ़ती है तब विकास भी बढ़ता है, और यही है रियल फेमिनिज्म।
1: और मुझे एक कविता याद आ रही है जो वरिष्ठ हमारी कवित्री हैं ममता कालिया की, कहो तो मैं सुना दूं मंजुला। वो कहती हैं कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की है समझदार और संवेदनशील, वो दीवार पर लगाती है खूंटियां, कौन सी, पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से उन पर पांव रखती दीवार की दूसरी ओर पहुंच जाती है। तो ये है असली नारीवाद, है ना।
0: बिल्कुल यही है, और असली नारीवाद है साथ रहने में, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबके साथ चलने में।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म सौदागर से। और एक और मेल आया है, एक या अनेक आए हैं, तो इसमें अभी जो भेजा है कामायनी जी ने, वो बहुत ही खूबसूरत बात लिखती हैं कि मुझे मेकअप वैसे तो कम पसंद है, पर चेहरे के दाग धब्बे छिपाने के लिए कंसीलर यूज करना अच्छा लगता है।
1: और एक और मेल आया है सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी जी से, रोहिणी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कैलाश पाषाण में छिपी चेतना को शिल्पियों ने जगाया है, ऊपर से नीचे काट पहाड़ साक्षात शिव को बुलाया है। वो कहते हैं मंदिर नहीं नश्वर जग में अमरता का एक प्रमाण है और क्षणभंगुर मानव के हाथों में छुपा अविनाशी भगवान है। बहुत खूबसूरत, वाह।
0: और गौरी शंकर जी ने लिखा है कि आप दोनों बेटियों को राम राम, अभी झुमके पर गाना चल रहा था, आज तो हमें शादी में जाना भी है, चाहे कितना भी मेकअप कर लो, अगर असली जेवर ना हो नकली भी पहन लो तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं।
1: और पुरुष मेकअप के बारे में वो कह रहे हैं कि चेहरे की झुर्रियां मिटे जल के नया निखार, मैन ग्रूमिंग का चल बड़ा जग में अब व्यापार, लिप बाम और कंसीलर पुरुष करें उपयोग, सुंदरता की रेस में आगे हैं सब लोग। भाई वाह, क्या कविता पे कविता आ रही है।
0: और अनिल मेहता जी के मेल से लगता है उनकी वाइफ ने लिखा है, मीनू मेहता ने, कि मुझे आंखों में काजल लगाना पसंद है, उसके बिना मेरा मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता
1: जी। और मधु किरण दिल्ली से कह रही हैं, ज्यादातर शादी पर हम अच्छी तरह तैयार होकर जाते हैं, पर घूमने जाते हैं तो थोड़ा कम तैयार होकर जाते हैं। तो एक जमाना था जब केवल माता पिता की इच्छा पर शादी होती थी, शादी का भी जो आपने विषय लिया था उसी के बारे में वो कह रही है, परंतु अब तो जिसकी शादी है उसकी पसंद ही पहले पूछनी पड़ती है ना।
0: और इद्रीस सैफी जी कहते हैं कि उनको बाल बनाना और शेविंग करना अच्छा लगता है, चलिए ये तो आपके रोज का काम है ही।
1: और प्रकाश चंद गोगिया दिल्ली से जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं जब कहीं भी जाना होता है तो तकरीबन महिलाएं ही ज्यादा अच्छी तरह तैयार होकर जाती हैं, और कह रहे हैं कि पुरुषों का तो ये है भाई थोड़ा कम तैयार होकर भी चल देते हैं, ऐसा कह रहे हैं।
0: और महेश अग्रवाल जी लिखते हैं कि इंसान की खूबसूरती उसके सजने में नहीं उसके चेहरे की मुस्कुराहट से होती है, मुस्कुराने के बाद सबसे ज्यादा बड़ा श्रृंगार है जो अच्छे गहने और अच्छे कपड़ों को उसकी भी खूबसूरती बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी बात।
1: हम तो ये कहेंगे मंजुला, अगर किसी की आंखों में प्यार हो और चेहरे पर मुस्कान हो तो वो व्यक्ति सबसे खूबसूरत दिखता है, क्या कहती हो?
0: बिल्कुल सही। और आगे बढ़ते हैं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले जो सुबह सुबह हमारे सर पे एक सवाल नाच रहा होता है कि आज क्या बनाऊं, और इसी सोच में आपका काफी समय निकल जाता है। अगर हाँ तो एक स्मार्ट जीवन शैली की आदत डालिए, वीकली मील प्लान।
1: ओ मतलब स्मार्ट दिखना भी जरूरी है और साथ में स्मार्ट जीवन शैली भी अपनानी जरूरी है। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रही हो, यानी कि ऐसा कर सकते हैं मंजुला कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन पूरे सप्ताह की ग्रोसरी की खरीदारी कर लें, और इससे बार बार बाजार जाने का जो समय है वो बचेगा और अनावश्यक खर्च भी कम होगा।
0: बिल्कुल। और थोड़ी सी पहले से तैयारी कीजिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाकर बर्फ की ट्रे में जमा दीजिए, जब भी खाना बनाना हो बस एक टुकड़ा निकालिए और आपका मसाला तैयार।
1: जी ये सब हमारी दादी नानियां करती आई हैं भाई, जो प्याज और टमाटर हैं भाई, जब टमाटर सस्ते होते हैं खरीद लेती हैं, उन्हें उबालकर बना लेती हैं और फ्रिज में उनके क्यूब्स बना के रख लेती हैं, ये सब करते आए हैं। पहले तो सुखा लिए जाते थे टमाटर को, तो ये सब किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेवी बनाकर भी रखी जा सकती है।
0: और इडली डोसे का घोल पहले से तैयार रखिए, सुबह का पौष्टिक नाश्ता बिना किसी भाग दौड़ के।
1: बिल्कुल। और धनिया पुदीने की चटनी को कैसे भूल सकती हो, उबले हुए चने हो, राजमा हो, अंकुरित अनाज हो, सलाद की सब्जियां धोकर सुखाकर डिब्बों में रख दीजिए, इससे हर दिन ताजा और पौष्टिक भोजन बनाना आसान हो जाएगा।
0: बिल्कुल सही। तो याद रखिए स्मार्ट जीवन शैली का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि समझदारी से योजना बनाना है। सप्ताह में कुछ घंटों की तैयारी और आपको पूरे समय का जो ऊर्जा है मेहनत है वो सब बच जाएगा। तो आप क्या कहती हैं, इस सप्ताह साप्ताहिक भोजन की तैयारी अपनाइए और देखिए रसोई का काम कैसे आसान व्यवस्थित और तनाव मुक्त हो जाता है।
1: जी ये मैं करने वाली हूँ मंजुला।

0: और ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, फिल्म है ज्वेल थीफ।
1: और इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं तक। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी।
0: फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए रश्मि और
1: मंजुला को इजाजत।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करो उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ दोस्तों, आज प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ इस फिल्मी सफर में जिसमें हम लेकर आते हैं भारतीय सिनेमा की उन फिल्मों की कहानियों को, फिल्मों से जुड़ी बातों को जिन्होंने समय के साथ अपनी चमक और भी बढ़ा दी। आज बात करेंगे 1990 की उस फिल्म की जिसने ना सिर्फ दो नए चेहरों को रातों रात सुपरस्टार बना दिया बल्कि हिंदी फिल्म संगीत को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जी हाँ, आप मेरी बातों से अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे और जब आपने अंदाज़ा लगा ही लिया है तो फिर देर किस बात की, जवाब मेल के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जब तक आपके जवाब हम तक पहुंचे तब तक हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। और हाँ, अभी भी अगर आप अंदाज़ा लगाने में थोड़ी सी चूक कर रहे हैं तो इसको सुनने के बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आज हम कौन सी फिल्म चुनकर लाए हैं 1990 की।

जी हाँ, और हम भी आपको बता देते हैं कि आज हम लेकर आए हैं 1990 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म आशिकी, जिसने अपने संगीत की वजह से फिल्म जगत में झंडे गाड़ दिए। आज भी इस फिल्म के गीत, इस फिल्म का संगीत कल की तरह ही लोकप्रिय है, कर्णप्रिय है। इस फिल्म से संगीतकार नदीम श्रवण और गायक कुमार सानू अपना करियर बनाने में सफल रहे। इस फिल्म के संगीत एल्बम को प्लेनेट बॉलीवुड के 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड साउंड ट्रैक में 4th स्थान मिला था। बहुत बड़ी बात थी ये उस वक्त। और फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट जी ने, गुलशन कुमार मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था, और फिल्म की कहानी लिखी थी रोबिन भट्ट और आकाश खुराना ने। संगीत, जैसा कि हमने आपको बताया कि नदीम श्रवण जी का था, और फिल्म के सितारे थे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी। सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत। आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं और उनको भी हम शामिल करेंगे कुछ देर बाद।

राहुल राय ने फिल्म में राहुल राय का ही किरदार निभाया, यानी कि इनका फिल्म में भी नाम यही था। दिल्ली की कुड़ी अनु अग्रवाल ने फिल्म में अनु बर्गिस का रोल प्ले किया था। अवतार गिल पुलिस इंस्पेक्टर देशपांडे के किरदार में नजर आए। रीमा लागू बनी मिसेस विक्रम रॉय, यानी कि राहुल की माँ। टॉम अल्टर बने आर्मी कैंपवेल। मुस्ताक खां रफू मास्टर, जावेद खां अंकल पीटर और राहुल के दोस्त का किरदार निभाया था दीपक तिजोरी ने, जो बने थे बल्लू। और आपको बता दें कि फिल्म की जो कहानी है वो राहुल और अनु के बीच एक प्रेम, खूबसूरत जो प्रेम है उसके ऊपर है। दोनों अलग अलग परिस्थितियों में आते हैं, लेकिन संगीत और प्यार उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। परिवार, समाज और परिस्थितियों की कठिनाइयों के बावजूद दोनों अपने रिश्ते और सपनों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, विश्वास और उम्मीद की कहानी भी है। फिल्म के गाने बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कर्णप्रिय और बहुत ही मधुर आज भी उतने ही फेमस हैं जितने कल थे। और इन गानों को अपनी आवाज़ के जादू से संवारा था कुमार सानू, अनुराधा पोचवाल, उदित नारायण, नितिन मुकेश ने। संगीत नदीम श्रवण और गीतकार थे समीर रानी मलिक और मदन पाल।

जी हाँ, ये फिल्म आज भी लोगों के दिल के करीब है। हम और आप ले लीजिए, हमें जब भी हम बात करते हैं अगर उस दौर की 1990 की, तो शायद इस फिल्म का नाम ज़रूर लेते हैं। इस फिल्म के बाद राहुल रॉय का हेयर कट बहुत पॉपुलर हुआ था। युवाओं में उनके जैसे हेयर कट करवाने की एक होड़ जैसी मच गई थी। महेश भट्ट इंदिरा रॉय के घर गए थे उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि उनकी एक मैगज़ीन उस टाइम रिलीज़ हुई थी। और इंदिरा जी जो थी वो एक चैरिटी वर्कर थी यूनिसेफ की, और राहुल राय उनके बेटे थे। महेश भट्ट ने जब राहुल राय को देखा तब उन्होंने मन बना लिया था कि उन्हें अपनी फिल्म आशिकी में उन्हें कास्ट करना है। महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को इस फिल्म में नायिका के रूप में लेना चाहते थे, मगर पूजा ने मना कर दिया था क्योंकि तब वो फिल्मों में आने के लिए तैयार नहीं थी। और जानते हैं आप, इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा महेश भट्ट की असल जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट के साथ।

नए कलाकारों के साथ बनी फिल्म मैंने प्यार किया कि अपार सफलता के बाद उसको देखते हुए महेश भट्ट के दिमाग में भी नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का आइडिया आया और उन्होंने बना दी फिल्म आशिकी। इस फिल्म के गाने इतने ज़्यादा फेमस हुए थे कि टी सीरीज की ऑडियो कैसेट की सेल 1 करोड़ तक पहुँच गई थी। पहले मुख्य भूमिका के लिए दीपक तिजोरी का नाम चयन किया गया था, लेकिन राहुल रॉय से मिलने के बाद महेश भट्ट ने राहुल को ही मुख्य हीरो के रूप में लिया और दीपक तिजोरी को सपोर्टिंग रोल दिया।

ढेर सारे संदेश आपके पहुंच गए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया जी जुड़े हुए हैं। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या हेमलता डिंपल जी हमारे साथ हैं। नितेश कुमार दुर्गा प्रसाद पराग ये पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। अजीत भापसर जी ढेर सारी जानकारी के साथ, प्रमिला भापसर के साथ बीरनगांव गुजरात से हमारे साथ हैं। स्वर्ण सिंह गिल दलजीत जी गाँव लोहागढ़ ठाकुरबाला से जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है ओम प्रकाश राय उषा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे साथ हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे प्रशांत संचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं। और हरजिंदर सिंह भाटिया अंजल भाटिया पप्पू जी हमारे साथ स्टेशन रोड जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। ग्राम पंजोनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार आदर्श सार्थक जी हैं। सुरेश यादव अनिता जी हमारे साथ नेहरू चौक पेठण्ड से जुड़े हुए हैं। और अनारकली बाज़ार से सुनील पाठक कमला पाठक जी हमारे साथ हैं। नागांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरासी गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूंडी जी हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह वीता जी साउथ एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो हांडी खेला जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा जी है हमारे साथ। हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार मनोज जी हमारे साथ हैं।

अनीता जी हमारे साथ नेहरू चौक पेठण से जुड़े हुए हैं, और अनारकली बाजार से सुनील पाठक, कमला पाठक जी हमारे साथ हैं, नागांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फरासी गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी जी हमारे साथ हैं, गुरमीत सिंह मीता जी साउथ एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं, और अगला जो संदेश है वो हांडी खेला जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा जी है हमारे साथ, हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार मनोज जी हमारे साथ हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दौरे लिए रवाना हो गए ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता राही लखां लोकां दे जीवन विच खुशहाली लियाउण लई सहकारिता मंत्रालय की शलाघा की है। ब्रिक्स दीआं नशा विरोधी एजेंसियां ते मुखियां दी मीटिंग अज गुवाहाटी विच शुरू हो गई है। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ तों वध सेहत कार्डां नूं 93 करोड़ तों

अज गुवाहाटी शुरू हो गई है। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ तो वध सेहत कार्डा नूं 93 करोड़ तो वध आयुष्मान भारत हैल्थ अकाउंट्स आबा नाल जोड़िया गया है। फीफा फुटबाल विश्व कप विच इंग्लैंड मैक्सीको नूं 3-2 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल च पहुंच गया है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरां दा बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई नुक्ता नज़र के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी, महासागर नज़रिए नीज आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई मुल्क के नुक्ता नज़र को मजीद तकवीत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे क़िलीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी, जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे क़िलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के भारत के दौरे के बाद बाहमी ताल्लुकात में जो तेज़ी आई थी, उनके इस दौरे में इक्तिसादी, तजारती और कारोबारी राबतों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए भारत से बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वीत मिलेगी। वज़ीर दाखला अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज़्यादा इमदादी बाहमी इदारों से वाबस्ता 3 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकत की निज़ाम बनाने की समत काबले तारीफ काम हुआ है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आइन, 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर, मुमताज माहिर तालीम, बसीरत अफरोज मुफक्किर और कद्दावर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें

0: यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नजरिया साज मुदब्बिर, सरकर्दा स्कॉलर और मुल्क के एक पुरज़्म मैमार थे, जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कौमी यकजहती के तहफ्फुज की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि 93 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों आभा से 104 करोड़ से ज्यादा सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं। एक मरबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिस्सों पर मबनी एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर है, जो लोगों को एक वसीतर सेहत निज़ाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमात तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों और दीगर खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसत देना है, ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमात का इहाता किया जा सके। इंतखाबी कमीशन ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में असेंबली की 3 सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये ज़िमनी इंतखाबात बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके के लिए कराए जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरब बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के अरकान सुखविंदर शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश छी बराइक के मुस्ताफी होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सारिफिन के तहफुजाती कानून और पॉलिसी पर माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि इजलास में रुकन ममालिक, बैन अवी तनजीमें, सारिफिन, तहफुजाती हुकाम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलों पर बातचीत करेंगे। माहरीन का कहना है कि बैन हुकूमती ग्रुप सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर ताउन मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खेरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगे। सारिफिन के तहफ़ की अहम आलमी तरजीहात के सिलसिले में मुल्कों के माबैन तबादला ख्याल की रहनुमाई करेंगी। दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: इम्तिहानात के निकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के इम्तिहान की फीस के रिफंड के लिए बैंक खाते की तफसीलात को अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के आइंदा 3 रोज के दौरान आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। यूक्रेन में आज सुबह राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 दीगर जख्मी हो गए। तुर्की में नेटो की अहम सरबराह मीटिंग से एक दिन कबल यह हमला किया गया है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शिरकत करने का इम्कान था। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि रूस ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मैक्सिको सिटी में इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इस स्टेडियम में अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मेक्सिको को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। विंबलडन टेनिस में कल रात सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रूस के खिलाड़ी को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं खवातीन के सिंगल्स में कैरेलोना मुंकोवा प्री क्वार्टर फाइनल में चेक जमहूरिया की अपनी साथी खिलाड़ी और साबिक चैंपियन बारबोरा को हराकर 3री मरतबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाओमी ओसाका भी 1ली मरतबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आज़ाद और खुले भारत बहर-उल-काहिल खत्ते के तई नुक्ते नज़र के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तक़वियत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने

0: 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
4: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
5: जगन्नाथ तकानेन।
6: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: जगन्नाथ तकानेन।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
7: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त

में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत से रंगों से भरपूर है और बहुत ही धमाकेदार है। पता है क्यों? क्योंकि आज जन्मदिन है बॉलीवुड के उस सुपरस्टार का जिसने बिट्टू शर्मा बनकर सबका दिल जीता, वहीं बाजीराव बनकर एक हिस्ट्री बना डाली और अलाउद्दीन खिलजी बनकर स्क्रीन पर आग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के

सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और वर्सटाइल एक्टर रणवीर सिंह की। उनके लिए ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने धुरंधर बनकर बहुत बड़े बड़े धुरंधरों की छुट्टी कर दी। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं रणवीर सिंह। आज उनका जन्मदिन है तो आज का ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित। तो लीजिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं की फिल्म से, इस खूबसूरत से गीत के साथ।

और अपने जुनून के दम पर यशराज फिल्म्स की बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो लोगों को लगा कि भाई ये तो कोई दिल्ली का लड़का है जो कि बिल्कुल दिल्ली के लड़के की असली एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो एक्टिंग थी इतनी नेचुरल कि हर किसी को लगा कि भाई ये तो दिल्ली का ही लड़का है। लेकिन रणवीर ने बिल्कुल सबको गलत साबित किया। वो जिस रोल को भी उन्होंने किया उस रोल में ऐसे ढले कि जैसे वो किरदार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया है। और उनकी पहली फिल्म के पहले शॉट से ही ये साबित हो गया था कि भाई ये जो है ये लंबी रेस का घोड़ा है। और वाकई में उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया, चाहे वो फिल्म हो गोलियों की रासलीला, रामलीला, जिसमें वो एकदम देसी रोमांस करते हुए नजर आए, वहीं बाजीराव मस्तानी में मराठा योद्धा का किरदार उन्होंने निभाया और काफ़ी ज़्यादा दमदार आवाज़ और मजबूत पर्सनालिटी के साथ उन्होंने उस किरदार को निभाया। या फिर हम बात करें पद्मावत की, जिसमें उन्होंने खूंखार और सन की अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया।

जी दोस्तों, आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह के बारे में। रणवीर सिंह जो कि सिर्फ अपनी सीरियस एक्टिंग के लिए नहीं, या बल्कि अपने मस्ती मजाक वाले किरदारों के लिए नहीं जाने जाते, एक तरफ वो जाने जाते हैं गली बॉय के मुराद के रूप में, जो कि धारावी की गलियों में रैप सॉन्ग करते हुए नजर आया। वहीं दूसरी तरफ सिम्बा वाला पुलिस बनकर पुलिस की वर्दी में फुल ऑन कमर्शियल मसाला वाली फिल्म, पूरी तरह कॉमेडी फिल्म। दूसरी तरफ हम देखें तो 83 में कपिल देव के किरदार में उन्होंने जिस तरीके से उस किरदार को निभाया, तो वाकई में वो कपिल देव क्या पूरी तरह कॉपी उन्होंने की। और ये शायद रणवीर सिंह की वर्सेटलिटी है कि वो सबसे बड़ी मिसाल बन गए कि हर तरह के किरदार में वो इस तरह से ढल जाते हैं, इस तरह से उस किरदार में समा जाते हैं जैसे कि वो किरदार उन्होंने खुद जिया हो, और स्टाइल ऐसा कि जो कोई और कॉपी ही ना कर सके। रणवीर सिंह अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपने अतरंगी बिंदास और बोल्ड फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं। वो जो भी पहनते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहनते हैं, चाहे कुछ भी पहने। लोग बोलते हैं कि भाई वो बड़े ही अतरंगी सतरंगी, बहुत सारे अलग अलग कलर के या कुछ भी डालते हैं, लेकिन जो भी वो डालते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहनते हैं, और उनको जो भी वो पहनना होता है वो सब पहनते हैं, वो जो करना होता है वो करते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, जिसको जो कहना है वो कहे, रणवीर हमेशा वही करते हैं जो उनके दिल में आता है।

लड़के की छवि उन्होंने निकाली। जिस तरह से कोई भी लड़का मस्ती मजाक करता हुआ घूमता है उस तरह का किरदार उन्होंने निभाए, लेकिन नहीं, अब रणवीर सिंह उस पड़ोस वाले लड़के के किरदार से हट चुके हैं, बल्कि अब वो एक ऐसे किरदार में आ चुके हैं जो कि पूरी की पूरी लियारी की सारी बिरयानी को अकेले चट कर जाते हैं। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही धुरंधर, और इसकी जो सफलता है उससे हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, वाकई में बहुत अच्छा काम उन्होंने इस फिल्म में किया है और बखूबी वो फिल्मों में कर रहे हैं। कहेंगे कि हम संजय लीला भंसाली ने जब 2013 में उन्हें पहली बार साइन किया अपने साथ गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म में, तो उस फिल्म के बाद उनके किरदार ने एक अलग तरह से शेप लेना शुरू किया। उससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा हल्के फुल्के किरदार जो थे वो निभाया करते थे, लेकिन उस फिल्म के बाद उन जो और डायरेक्टर्स थे वो भी उनको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगे थे और उनके लिए स्पेशल किरदार निकालना उन्होंने शुरू किया कि हाँ, ये लड़का जो है इसके अंदर वो दम है, वो कुव्वत है कि वो इस तरह के किरदारों को निभा सकता है। और वाकई में रणवीर सिंह सबकी उन सोच पर पूरी तरह से खरे उतरे।

ग्राम लोहागढ़ ठाकुरावाला से एक बार फिर से हमारे पास ये संदेश आया है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत जी हमारे साथ जुड़े हैं भारत कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर से। अगला संदेश हम तक पहुँचाया और उसको पहुँचाने वाले हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया के साथ।

धन्यवाद प्रीति इतने खूबसूरत से गीत हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए। और अब वक्त हो गया है, घड़ी में 3 बज चुके हैं दोपहर के, और आप जानते हैं कि ये वक्त किस प्रोग्राम का है। आपके लिए हम लेकर आते हैं इस वक्त प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, जिसमें पुराने गानों का रस आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, 1950 का दशक हो, 1960 का दशक हो, ये वो दशक था जब जितने भी गीत बने हैं वो आज भी वही ताजगी रखते हैं जब वो उस वक्त रखा करते थे। तो आज भी कुछ ऐसे ही गीत हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं उस स्वर्णिम युग से, उस दौर से, जो ऐसे गीत जो कि किसी खास वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट को केंद्र में रखकर बनाए गए थे। कभी उनमें बांसुरी की मिठास नजर आती है, कभी हारमोनियम की सादगी, कभी ढोलक की थाप और कभी सितार की रुनझुन। ये गीतों ने संगीत को एक नई पहचान दी। इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ आज मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आपको लिए चलूंगी 1950 के उस दशक की उन गीतों की दुनिया में जहाँ जिनकी आत्मा किसी न किसी वाद्य यंत्र में बसती है। तो सबसे पहले इस गीत को सुनिए, उसके बाद इस गीत के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या खासियत है इस गीत की, और यदि आप समझ जाएं तो आपको क्या करना है, मेल भेजना है। मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। फिलहाल सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

खूबसूरत सा गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, और इसमें जो मुख्य वाद्य थे वो थे सितार और तबला। इस गीत का संगीत दिया था नौशाद साहब ने, और इस गीत की विशेषता पता है क्या है? ये राग पर आधारित गीत है और इसमें सितार और जो राग है उसकी एक अद्भुत जुगल बनती है। ये फिल्म कोहिनूर का गीत अभी आप सुन रहे थे, और अगला गीत जो हमने लिया है आपके लिए चुनकर, वो हमने लिया है फिल्म सीआईडी से। रफ़ी साहब और गीता दत्त की आवाज़ है, और इसमें जो वाद्य यूज़ किया गया है वो ट्रम्पेट और सैक्सोफोन है। इस गीत का संगीत ओपी नैयर साहब ने तैयार किया है, और ये पश्चिमी वाद्यों का एक शानदार इसमें इस्तेमाल आपको नज़र आएगा, जो उस समय उस दशक में बिल्कुल नया अंदाज था। सुनिए इस गीत को।

ये है बॉम्बे मेरी जान, लेकिन ये है दिल्ली। यहाँ से आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ से ये प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज। आपके लिए चुनकर लाते हैं हम इसमें वो गीत जो हमेशा दिल को छूते थे, छूते हैं और छूते रहेंगे। आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और अगला जो गीत मैंने चुना है आपके लिए, इसमें शामिल किया गया है हवाइयन गिटार को।

सुना है आपने, सुना होगा आपने ये गीत, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा। इस गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, और इस गीत की खासियत ये है कि इसमें गिटार की मुलायम धुन रात की रोमांटिक फिजा को जीवंत कर देती है। हालांकि रात का समय नहीं है, लेकिन ये गीत इतना प्यारा है कि हमारा मन करा कि आप तक ये गीत हम पहुंचा दें। फिल्म जाल से ये गीत हमने चुना है, सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

रसा गीत कैसा लगा सच बताइएगा। आपके संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आपको उस दौर के गीत दिल से पसंद हैं। अगला जो गीत हमने आपके लिए चुना है नागिन फिल्म से हमने इस गीत को लिया है और लता जी की खूबसूरत सी आवाज़ है और जानते हैं कि इसमें मुख्य वाद्य क्या यूज़ किया गया था। ये क्लेबियोलिन यानी कि जो बीन होती है उससे इस गीत की धुन तैयार की गई थी। संगीत हेमंत कुमार साहब का था और बीन धुन सबसे प्रसिद्ध बीन धुन मानी जाती है। जब भी आपने भी कई बार नकल करी होगी क्योंकि हम बचपन में करते थे गले में यूँ ऐसे हाथ लगा लगा कर और बीन की धुन निकालते थे। बीन की धुन अगर आपने सुनी जब भी तो आपने इसी गीत में सबसे पहली बार सुनी होगी। सुनते हैं इस गीत को।

और अगला जो हमने वाद्य यंत्र चुना है वो है ढोलक। जी हाँ, हर घर में मिलने वाला एक ऐसा वाद्य जिसे हर कोई बजाने की कोशिश करता है। कुछ तो उसे बहुत अच्छे से बजा लेते हैं, लेकिन कुछ कोशिश करते ही रहते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो इस गीत को हमने लिया है फिल्म गंगा जमुना से, और विशेषता इस गीत की ये है कि इसमें ढोलक की था पूरे गीत को लोकगीत जैसा रंग देती है। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत लता दी की आवाज़ में।

फिलहाल तो हम आपके जो मेल हैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जी हैं हमारे साथ, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव जी जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्शर, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना जी हमें सुन रहे हैं। बिरंगा गुजरात से अजीत भापसर जी कह रहे हैं कि आज इस गीत में सितार, घुंघरू और ढोलक, तबला के तोड़ा ताक धिन धिन बहुत अच्छे लग रहे हैं, शुक्रिया आपका। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अवान और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है ये अजीत भापसर जी का ही है, लिख रहे हैं कि आज कुछ नया अंदाज है और हटके हम प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारी कोशिश तो यही रहती है अजीत जी कि हम वो गीत आप तक पहुँचाएँ जो सीधे दिल में उतर जाए। हमारे साथ तहसील वरुण जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर जी जुड़े हुए हैं और आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शुक्रिया आप सभी का। और अगला जो हमने वाद्य यंत्र चुना है वो है पियानो। एसडी बर्मन साहब का संगीत है और पियानो की तो विशेषता आप जानते ही हैं, पियानो की जो जैज शैली है वो आपको इस गीत में सुनाई देगी जो इस गीत को एक आधुनिक रंग भी देती है। फिल्म बाजी से ये गीत हमने चुना है गीता दत्त की आवाज़ में।

तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे गीत जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की झनकार और कभी हारमोनियम की सादगी दिल को छू जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आज का आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगला एक खूबसूरत सा गीत मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ और अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

प्रोग्राम रू बरू के साथ। सामीन, इस बात से आप बखूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम किसी अदबी, समाजी, सियासी या किसी माशी शख्सियात से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसी शख्सियात को आकाशवाणी के स्टूडियो में मदऊ करें और उनके जो तजर्बात व मुशाहदात हैं उनसे इस्तिफादा करें। तो इसी सिलसिले के तहत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक मारूफ सिविल सर्वेंट और अदीब व शायर।

0: हैरत नजर आती है और जिंदगी के नशीबो फराज का गहरा शऊर भी दिखाई देता है। उनके अशआर सादगी के साथ दिल में उतर जाते हैं और देर तक अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं और हमारा जहन उनकी जो शायरी है उसे पढ़ने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो हमें अपनी तरफ खींचती है। और जब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, उनकी तरफ हमें क्यों खींचती है उनकी शायरी, तो आपको बता दें कि वाकई उन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने ऐसी कितनी चुनौतियां हैं जिसको एक्सेप्ट किया और जिंदगी में आगे बढ़े। जी हाँ, उन्होंने पोएट ऑफ द ईयर जश्ने अदब से हासिल किया 2021 में और इसके बाद दुष्यंत कुमार सम्मान से आपको सरफराज किया गया। और साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी बता दें कि सृजन साहित्य अवार्ड 2016 से भी आपको सरफराज किया गया। और इतना ही नहीं, आप प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी हैं भारत सरकार में। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज की जो शख्सियत है जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम जानना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसे राज हैं जिनसे हम पर्दा उठाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम रूबरू की। तो आलोक साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं और साथ ही साथ आपसे हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपने अपने इतने मसरूफ वक्त में हमारे सामयीन के लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और एक बार फिर आपको हम उर्दू मजलिस के खास प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल करते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा जी, आपने मुझे मधु किया यहाँ पे, मेरी खुशनसीबी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आकाशवाणी का, उर्दू मजलिस का और आप सबका।
0: तो आलोक साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में क्लास 1 ऑफिसर हैं
1: जी,
0: और भारत सरकार में हैं
1: जी,
0: तो आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि शायरी और फिर आपका ये ओहदा
1: जी,
0: एक अलग अलग रास्ते लगते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि नदी के दो छोर हैं
1: जी,
0: एक रास्ता अलग एक रास्ता अलग, ऐसे में आप दिल की बात कैसे कर गए, किस तरह से आप शायर बन गए, या ये मान के चलें कि आप अक्सर व बेशतर मोहब्बत को आवाज देना चाहते हैं, मोहब्बत से रूबरू होना चाहते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर ये पूछा भी जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर इंसान के बहुत सारे चेहरे होते हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनके मुख्तलिफ रंग होते हैं। तो कोई अफसर होता है उसके साथ खिलाड़ी होता है, कोई अफसर होता है उसके साथ पेंटर भी हो सकता है, कोई अफसर शायर भी हो सकता है। और मैं पहला नहीं हूँ, मुझसे पहले भी ऐसे शायर हुए हैं जो अफसर रहे हैं और शायर भी रहे हैं। तो ये इत्तफाक कहें या खुदा की रहमत कहें कि मुझे उन्होंने शायरी अता की, ये सलाहियत बख्शी कि मैं कुछ कह सकूं, कुछ अच्छे शेर कह सकूं। और मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूं कि मेरी कलम से कुछ अच्छे शेर निकल जाएं, अच्छी बात निकल जाए जो आपके एहसासात की अक्कासी करे।
0: जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही कहा है। और बाकी मुझे लगता है कि शायरी जो है एक खुदादाद सलाहियत है।
1: बिल्कुल है, बेशक है, ऑफिस दिए।
0: कब आमद होने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलिए, तो आपकी शायरी की बात हो गई आलोक साहब
1: जी,
0: अब बात करते हैं आपके बचपन की
1: जी।
0: बचपन जो बेहद खूबसूरत होता है, बचपन जो हमेशा हमारी यादों में रहता है,
1: बेशक।
0: तो आपकी भी बहुत सारी ऐसी यादें होंगी बचपन की, फरुखाबाद की सरजमी, घर का माहौल, और फिर इब्तदाई जिंदगी ने आपकी शख्सियत और शायरी को किस हद तक मुतासिर किया, ये आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरी बात जो हमें लगती है, कई बार यूं भी लगता है कि घर का जो माहौल था वो शायरी का नहीं था, उसे हम अदब से नहीं जोड़ सकते, खासतौर से उर्दू अदब से
1: जी।
0: और ऐसे में आपका शायरी की तरफ रुझान कैसे?
1: बिल्कुल, आपने दो दो सवाल पूछ लिए, बल्कि बड़े बड़े सवाल हैं, बड़े बड़े जवाब भी होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों सवालों का जवाब दे पाऊँ। मेरी जो पैदाइश है वो फर्रुखाबाद ज़िले में हुई
0: जी।
1: वहाँ कायमगंज तहसील है जहाँ मेरी ननिहाल थी, वहाँ मेरी पैदाइश हुई, उसके बाद परवरिश फर्रुखाबाद में हुई। फर्रुखाबाद जो है वो शायरी के एतबार से बड़ी जरखेज ज़मीन है वहाँ की। गालिब साहब भी वहाँ कुछ दिन कायम किए थे और उनके हम असर एक हुआ करते थे, लाला माधवराम जौहर
0: जी।
1: जैसा कि आपने कहा कि मेरे परिवार में कोई शायर या अदबी माहौल नहीं था, ऐसे ही लाला माधवराम जौहर साहब के यहाँ भी कोई शायर नहीं था
0: जी।
1: वो पूरा का पूरा उनका जो है वो बिजनेस फैमिली थी, लेकिन उनके जो कुछ शेर हैं जो कि आज जरबुल मसल बने हुए हैं, जिनमें एक शेर है कि भांप ही लेंगे

0: इशारा सरे महफिल जो किया, भांपी लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते।
1: वाह क्या बात है, बिल्कुल।
0: ऐसे ही एक शेर है उनका कि नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई।
1: और वाकई आपकी बारी अब आ चुकी है बिल्कुल।
0: हाँ, तो मैं उसी जमीन से हूँ। उस जमाने में बहुत सारे बड़े बड़े शायर हुए और बहुत सारे मीरो गालिब ने वहाँ पे कायम किया बहुत समय तक।

0: भांपी लेंगे, इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं।
1: वाह क्या बात है, बिल्कुल।
0: ऐसे ही एक शेर है उनका कि नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई।
1: और वाकई आपकी बारी अब आ चुकी है, बिल्कुल।
0: हाँ, तो मैं उसी जमीन से हूँ। उस जमाने में बहुत सारे बड़े बड़े शायर हुए और बहुत सारे मीरो गालिब ने वहाँ पे कायम किया बहुत समय तक।

0: समझ डेवलप हुई कि अदब क्या होता है, शायरी क्या होती है, कविता क्या होती है, कहानी क्या होती है, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद जो है वो मुझे उर्दू से और उर्दू शायरी से शगफ हुआ धीरे धीरे जब मैं स्कूल में था उन्हीं दिनों।
1: आलोक साहब, जब अभी आपने जिक्र किया उर्दू जबान का
0: जी,
1: और उर्दू से यकीनन आपको बहुत मोहब्बत रही है,
0: बेशक,
1: तो जानना चाहेंगे कि आपने उर्दू जबान किस तरह से

0: हैं, तो वो आपने किस तरह से सीखा? क्योंकि जब भी हमने आपकी शायरी सुनी है तो हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि प्रोनाउंसिएशन की कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है।
1: जी, हो सकता है कभी होती भी हो, लेकिन वो सबके साथ होती है। मैंने ये कोशिश की और मेहनत की है इस पे भी कि मैं तलफ़ुज़ को सीखूं और सही तलफ़ुज़ रखूं अपना।
0: नहीं, वाकई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सीखा, और कहना चाहिए कि आपने मुसलसल मेहनत जो
1: मेहनत
0: की है,
1: की।
0: ये जो पॉलिश किया है आपने,
1: बेशक
0: कोई कह नहीं सकता कि आपने उर्दू सीखी है। लगता है कि वो भी खुदादा सलाहियत है आपकी।
1: जी जी, उसके बाद मैं कुछ हिंदी कविताएं मैं लिखता रहा, स्कूल डेज में लिखना शुरू किया मैंने। वहाँ पे हमारे फतेहगढ़ में एक दोस्त के घर में रहते थे, वहाँ कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव साहब थे
0: जी।
1: शुरुआत में उनसे मैंने अपनी कविताएं दिखाई, उन्होंने कुछ समझाया, कुछ इशारे किए। फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में BSc करने गया
0: जी।
1: मैंने BSc वहाँ से किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। साहित्य से मेरा कोई तालीम मेरी नहीं रही। श्रीवास्तव सर ने मुझे एक चिट्ठी दी थी, वहाँ एक बड़े कवि थे, मुझे अभी एकदम से उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो मुझे हाथ पकड़ के ले गए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे उन्होंने पहुंचा दिया आकाशवाणी तक। और वो सिलसिला जो शुरू हुआ आकाशवाणी से, वो आज तक जारी है,
0: जारी सारी है।
1: और बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार मैं जुड़ा हूँ आकाशवाणी से। आपको जान के हैरत होगी शायद कि मेरी जो पहली नौकरी थी मुझे मिली थी मुझे पढ़ते हुए,
0: जी जी,
1: BSc करते ही मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें एक ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का भी
0: जी
1: नौकरी थी।
0: ये जानना चाहेंगे, आपने अभी जिक्र किया लखनऊ यूनिवर्सिटी का,
1: जी,
0: तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एक अदबी माहौल था,
1: जी,
0: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ एक बहुत अदब शनास लोग रहा करते हैं, पढ़ा करते हैं, पढ़ाया करते हैं, तो आपकी जो तख्लीकी जिंदगी है
1: जी,
0: उस पर लखनऊ यूनिवर्सिटी का कितना अहम हम रोल मान सकते हैं?
1: हाँ, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारे समय में ऐसा कोई बहुत अदबी माहौल तो मुझे दिखा नहीं और ना ही मेरा कोई ऐसा कहीं आना जाना था, लेकिन जो पत्र पत्रिकाएं थी वहाँ पे और ख़ास तौर से आकाशवाणी, उसने ज़रूर मुझे मेरे अदब के शौक़ को, मेरे जो है शौक़ को बरकरार रखा और उसमें इजाफा किया, मेरी मालूमात में इजाफा किया, और मैंने कुछ अच्छा सीखा और अच्छा किया।
0: अब तक की आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत शख्सियात रही होंगी
1: जी
0: जिन्होंने आपके ऊपर एक गहरा असर भी डाला होगा, और हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है कि उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और उनकी कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जो अक्सर दिल पर असर भी हो जाती है। और यकीन मानिए, जिस तरह से आज हमें आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और यकीनन हमारे सामईन को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, वो भी आपको जानना चाहते होंगे, सुनना चाहते होंगे, तो यकीनन एक लंबा सफ़र रहा है आपका अदब की दुनिया में, कई सारे मुशायरों में आप सुने जाते रहे हैं और लोग सुनना चाहते हैं, तो कोई और ऐसी शख्सियत रही जिसने आप पर गहरा असर डाला हो?
1: जी, मुझे लगता है कि हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत बड़े लोग

0: पकड़ के मुझे सिखाया। इसके अलावा एक सरदार जिया साहब थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने भी बहुत मुझे प्यार किया, मेरी तरबियत की और मुझे शायरी का फन सिखाया। वसीम बरेलवी साहब से मेरी मुलाकात कई बार हुई
1: जी।
0: तो उनसे जो बातें करते हुए बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, वो मतलब बिल्कुल अल्टीमेट है।
1: बिल्कुल, आप कलम के बादशाह कहलाते हैं और जैसे अक्सर हम देखते भी हैं कि आप नज़में भी लिख रहे हैं, आप गज़लें भी कहते हैं, तो आपकी नज़र में उर्दू अदब में वो कौन सी सिन्फ है जिसमें एक शायर अपनी बात खूबसूरती से कह सकता है और दावे से कह सकता है?
0: ये शायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिन्फ में बात अच्छी तरह कह पाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर छोटी सी बात है और शायरों में कहना है तो गज़ल से बेहतर कोई सिन्फ नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ी बात को और बहुत सारे शब्दों में कहना

0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब।
1: शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे।
0: बहुत खूब।
1: कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में ना हमसे सांप पाले जाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे।
0: वाह।
1: प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे,
0: ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। बहुत खूब, क्या बात है। यानी ये कहा जा सकता है, ये जो आपके अशआर हैं, ये आपके दिल के बेहद करीब हैं।
1: बेहद करीब है,
0: क्या बात है। यहीं पर एक और सवाल निकलता है
1: जी।
0: आप माशाल्लाह बहुत ही खूब कहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं
1: जी,
0: लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक शायर जो है वो किसी और की शायरी को भी बेहद पसंद करता है, तो ऐसा कौन सा शायर है जिसका कोई शेर आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप ये कह दें कि जो अभी आपने मुझे सुनाया है, जो आपके दिल के बहुत करीब है, कि मैं ये सब उसको दे दूंगा अगर वो शेर वो मेरे नाम कर दे, ऐसा कौन सा शायर है?
1: अभी तो गालिब की आपने बात कर दी वैसे तो, लेकिन मुझे दौरे हाजिर में जो है मुझे बशीर बद्र साहब बहुत पसंद हैं
0: जी।
1: मैं हर बार ये बात कहता हूँ, अगर एक का नाम लेना पड़े, वैसे तो वसीम बरेलवी साहब भी हैं, बशीर बद्र साहब भी हैं, रात इंदौरी साहब भी हैं, बहुत सारे शायर अच्छे हैं आज के भी और पुराने तो खैर ही अच्छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपसे एक और सवाल ये जानना चाहेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे, क्लास वन ऑफिसर हैं आप, तो आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे शायरी करनी है, या कोई ऐसा आपका खास कोई ऐसा पहलू रहा जिंदगी का कि आपको लगा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, या कोई ऐसा खास

0: हैं, कोई शॉर्टकट भी नहीं,
1: कोई शॉर्टकट नहीं है, और वही आपके हाथ में है। कभी कभी लोग कहते हैं ना किस्मत किस्मत किस्मत किस्मत की बात करते हैं, मैं कहता हूँ किस्मत कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको फल मिलेगा, उस फल का आपके लिए आपको मेहनत करनी जो भी आप चाहते हैं। किस्मत आपके हाथ में नहीं, अगर होती भी है तो आपके हाथ में तो है नहीं, अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है,
0: बिल्कुल,
1: अगर है तो आपको मिल जाएगा किस्मत का सहारा, लेकिन आपको मेहनत का सहारा तो लेना ही पड़ेगा।

0: ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम जानकर अपनी जिंदगी में अगर शामिल करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लिए एक बेहतर और अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। तो आज के रूबरू में इतना ही, हमें यही इजाजत दें, आदाब।
1: शुक्रिया।
2: सामीन, अभी आप रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ सिविल सर्वेंट और अदीब व शायर जनाब आलोक यादव साहब से उनकी ये गुफ्तगू सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी मोहतरमा रेशमा फारूकी। प्रोग्राम की तरतीब पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। यह हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नेटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्र

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है शाम के 4:10 और ये वक्त है गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचना देने का। थाना भोजपुर कमिश्नर रेट गाजियाबाद से जो पहली सूचना हमें मिली है, गुमशुदा का नाम है प्रिया सैनी। प्रिया सैनी पुत्री पप्पू सैनी, गांव के शनिदेव मंदिर पर ये अंतिम बार इनको देखा गया है। प्रिया जो कि एक 28 वर्षीय महिला है, शरीर की बनावट सामान्य है, कद 5 फुट 2 इंच है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आपके पास हो तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना भोजपुर कमीशन रेट गाजियाबाद। थाना मसूरी गाजियाबाद से अगली जानकारी नेहा के बारे में है। नेहा जो 11 जून 2026 से अपने कस्बा मसूरी से लापता है, 18 वर्ष 1 माह उम्र की नेहा, जिनका शरीर की बनावट सामान्य, कद 5 फुट है। ये करीब 10 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनको ढूंढने के काफ़ी इंतजाम प्रयास किए गए लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। आपने नेहा को कहीं देखा है या इनसे संबंधित कोई भी सूचना आपके पास है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना मसूरी गाजियाबाद। अगली सूचना हमें मिली है थाना निवाड़ी पुलिस कमीशन रेड गाजियाबाद से। गुमशुदा का नाम है अनुष्का पुत्री खिलेंद्र। ये 7 मई 2026 को अपने ग्राम खिदोड़ा से लापता है। 14 वर्षीय अनुष्का, जिनके शरीर की बनावट सामान्य और कद 5 फुट है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना देने वाले को 10,000 रुपये नगद राशि प्रदान की जाएगी। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप रखते हैं, आपने कहीं अनुष्का को देखा है तो आप संपर्क करें थाना अध्यक्ष थाना निवाड़ी पुलिस कमीशन रेट गाजियाबाद।

थाना इंदिरापुरम से अगली जानकारी खुशी के बारे में है। खुशी जो कि पुत्री राजू हैं, ये 19 मई 2026 को अपने घर से लापता है। 20 वर्षीय महिला खुशी, जिनका एकहरा बदन, कद 5 फुट 2 इंच है, ये 19 मई को घर से चली गई, उसके बाद ये वापस नहीं आई हैं। खुशी से संबंधित जानकारी आप थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद में दे सकते हैं। थाना साहिबाबाद से अगली जानकारी हमें मिली है। गुमशुदा का नाम श्रीमती रेखा यादव, पत्नी उपेंद्र यादव, ये E54 जनकपुरी अपने घर पर अंतिम बार देखी गई थी। 34 वर्षीय महिला रेखा यादव, दोहरा मजबूत गोरा बदन, चेहरा लंबा अंडाकार और काले लंबे बाल हैं, कद 5 फुट 5 इंच, इनकी बाईं आंख के भौं पर पुरानी चोट की निशान है। ये बाजार ये कहकर गई थी कि कैंची पर धार लगवाने जा रही हैं और कपड़े लेने जा रही हैं, इसके बाद ये वापस नहीं आई हैं। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आपके पास है तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद। पवन सिंह रावत, पुत्र स्वर्गीय श्री महाराज सिंह रावत, ये अपने घर से लापता हैं। 30 वर्षीय पवन सिंह, जिनका एकहरा बदन और कद 5 फुट है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप रखते हैं या आपने इन्हें कहीं देखा है तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद। अगली जानकारी जो हमें मिली है वो थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद से मिली है। गुमशुदा का नाम है प्रभा देवी, ये पत्नी है कल्लू, ये 21 वर्षीय महिला है, कद 4 फुट 1.5 इंच है और ये बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास है तो आप संपर्क करें थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद। थाना विजयनगर से अगली जानकारी राकेश के बारे में है, जो कि 55 वर्ष के पुरुष है, कद 5 फुट 5 इंच है। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: सर जो तेरा चकराए, जब सफर पे है तू जाए, आजा प्यारे पास हमारे, युवाणी तुझे सुनाए, युवाणी तुझे सुनाए।
1: दीपांशा, ये लिरिक्स थोड़े मॉडिफाइड नहीं है?
0: यश, हमारे सफर पे चलते राहगीरों को भी तो पता चलना चाहिए कि वो सुन रहे हैं अपना फेवरेट यूथ प्रोग्राम युववाणी। नमस्कार, मैं दीपांशा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने को होस्ट।
1: आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है यश।
0: दिमाग घूम रहा है, सर झूम रहा है और थक कर चूर चूर हो रहा है।
1: ओफो, तुम्हारी ओवर एक्टिंग भी ना। कोई बात नहीं, हमारे लिसनर्स के लिए हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं। दरअसल हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है मेंटल हेल्थ।
0: मेंटल हेल्थ, वर्ड सुनते ही चेहरा कैसे डाउन सा हो जाता है ना। बट नो वरीज, हम हैं साथ तो फिक्र की क्या है बात। वेल, मेंटल हेल्थ के बारे में हर किसी को बात करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अपने को होस्ट यश से जानना चाहूंगी, वॉट इज योर डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ?
1: दीपांशा, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने तो अपनी मेंटल हेल्थ का जिम्मा अपने दोस्तों को दे रखा है। जब भी मुझे लगता है कि मेरे लिए दुनिया रुक नहीं रही, मेरे पे दुनिया मानो टूट सी पड़ी है, या मुझे दुनिया में कोई समझ नहीं रहा, तो मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूं और उनसे अपने मन की बात कहता हूं। बतौर उनका दोस्त, वो भी मेरे साथ, मैं भी उनके साथ यही करता हूं।

0: वो मुझसे अपने मन की बात कहते हैं और मैं उनकी सुनता हूँ। तो जैसे दरिया को साहिल और या नदी का किनारा, कुछ इस तरीके से हम आपस में तालमेल बिठाते हैं।
1: क्या बात है यश, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड।
0: बाय द वे दीपांशा, जो कि आज रणवीर सिंह का हैप्पी बर्थडे है, तो हम क्यों ना हम एक अच्छा सा एक रामलीला का गाना सुनते हैं।
1: फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला से दैट्स
0: तत्तर तत्तर।
1: तत्तर।

0: क्या बात है, इतनी एनर्जी वाला गाना। इसी एनर्जी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज की बात के टॉपिक पर। दिमाग ने बोला बहुत लोड है, दिल ने बोला उजी चाय पी लेते हैं, की लोड है, बाकी बात कल करेंगे।
1: और यश कबीर दास जी भी कहते हैं, काल करे सो आज करे सो अब। अभी आप सभी सुन रहे हैं युववाणी, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट सेगमेंट आज की बात। चाय चाय चाय, अब इस लड़के को कौन बताया कि हर प्रॉब्लम का सलूशन चाय नहीं होता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा एक सर्वे ने बताया है। नॉट जस्ट यूथ बल्कि भारत की 70-80% जनता ज़्यादा स्ट्रेस होने पर चाय को एक आदत के तौर पर कंज्यूम करती है। खैर स्ट्रेस का जिक्र उठा है तो अगेन आई हैव अ क्वेश्चन टू यू यश।
0: सवाल जवाब तो होते रहेंगे। टू ऑल द टी लवर्स, चाय किसी शौक से कम है क्या?
1: इसी बात पर आने वाला गाना सभी चाय प्रेमियों के लिए है।

0: रहे हैं मुझे यानी दीपांशु और मेरे को होस्ट यश को. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, मेंटल हेल्थ. यश, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस?
1: दीपांशा, ये सवाल जितना गंभीर है उतना ज़रूरी भी है. मेंटल हेल्थ आपके दिमाग और इमोशन की ओवरऑल वेलबींग है. कैसा आप सोचते हैं, फील करते हैं, अपनी डेली लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं. मेंटल इलनेस एक डायग्नोस कंडीशन है, जैसे एन्जाइटी या डिप्रेशन, जो थॉट्स, इमोशन को और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. और मेंटल इलनेस मेंटल हेल्थ का ही एक पार्ट है.
0: इसी बात को रजिस्टर करते हुए आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट वन ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, दैट्स द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करना
1: और खुद के इमोशन को रिस्पेक्ट करना. एंड रिसेंटली 2 जुलाई फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ स्पीकिंग डे गया है. तो देखिए, कई लोगों के अंदर एंजाइटी होती है, जिसे हम ग्लासोफोबिया कहते हैं, और जिन लोगों को ये एंजाइटी होती है उन्हें हम ग्लासोफोबिक कहते हैं. पब्लिक स्पीकिंग कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है. सबको लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा कि लोग क्या कहेंगे या हम क्या गलत बोल देंगे. मुझे लगता है कि दीपांशा, तुम इसके को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप बताइए.
0: थैंक यू सो मच फॉर अ मच नीडेड क्वेश्चन यश. तो सबसे पहले तो आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग से डर लगने का मेजर कारण है ओवरथिंकिंग, और आज के यूथ में ये बहुत कॉमन है. आवाज़ के साथ साथ आपकी धड़कनों का भी फास्ट फॉरवर्ड हो जाना. बट आई थिंक यही ओवरथिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा डाउन करती है. बट द गुड न्यूज़, द गुड पार्ट इज़ कि इस फियर को, इवन हर फियर को आप हरा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, क्लास 12th में मैंने कहानी पढ़ी थी बाय एन अमेरिकन ऑथर विलियम ओ डोगलास की, द डीप वाटर. उसमें ये बताया गया कि आप हर फियर को किस तरह से ओवरकम कर सकते हो. और जहां तक बात रही लोगों की, तो
1: कुछ तो

0: मन से माइक्रोफोन तक के सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएमएल हॉस्पिटल की बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर श्वेता शर्मा से, जिनसे बातचीत की है पार्वती पिल्लई ने।
1: नमस्कार साथियों, मैं हूँ पार्वती। आज की युवा पीढ़ी पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। लोग कैलोरीज गिनते हैं, फिटनेस एप्स इस्तेमाल करते हैं, जिम जाते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल की बातें भी करते हैं। लेकिन एक चिंताजनक सच्चाई ये भी है कि कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्मोनल डिसऑर्डर, तनाव और नींद से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर युवतियों में जहां पढ़ाई, करियर, परिवार और सोशल मीडिया से जुड़ा दबाव एक साथ मौजूद है, वहां जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम स्वस्थ दिखने की कोशिश में वास्तव में स्वस्थ रहना भूल रहे हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्वेता शर्मा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एट आरएमएल हॉस्पिटल। वेलकम मैम। हम अक्सर सुनते हैं कि युवा उम्र बीमारियों के लिए नहीं, ऊर्जा की उम्र होती है। फिर ऐसा क्या बदल गया है कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां अब युवाओं, खासकर महिलाओं के बीच इतनी आम होती जा रही है?
2: पार्वती जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली वर्ड है, ये एक तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। क्यों हो रही है कि इसका कारण ये है कि सबसे पहले जो हमारी डाइट है वो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। जो खान पान है, इम्प्रॉपर डाइट, इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हमारी बॉडी की एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो शारीरिक गतिविधि है, हमारी शरीर का बैठना उठना, लाइफस्टाइल हमारा सेडेंट्री हो गया है बहुत ज़्यादा, जो यंग फीमेल्स का है। और साथ साथ देखा जाए तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का प्रेशर है, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर उनके ऊपर है, तो उसकी वजह से जो तनाव है, मानसिक तनाव की अगर हम बात करें, वो भी बढ़ गया है। और साथ साथ देखें तो जो आप नींद की अगर हम बात करें तो उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा कुछ चेंजेस जो आदतें बिहेवियर में आई हैं समय के साथ साथ, वो है कि जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल का कंजप्शन, ये भी अब देखा गया है कि युवाओं में थोड़ा बढ़ गया है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो कि एक तरह की साइलेंट किलर है, बीमारी है, वो आने लग गई है महिलाओं के अंदर।
1: तो डॉक्टर, अभी जैसे आपने हमें बताया कि ये क्यों होती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्टिकुलरली विमेन में देखी गई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या क्या होती है, तो आप जरा हमें उसके बारे में बताएंगे?
2: जी देखिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारा ओबेसिटी यानी मोटापा, अगेन जो हमने कारण बात करी है उसकी वजह से है। और सेकंड हमारा इसके अंदर बहुत ज्यादा जो एसोसिएटेड है फीमेल्स में, वो है PCOS, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टेरिक ओवेरियन सिस्ट। तो ये एक तरीके का सिंड्रोम है जिसके अंदर महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करती हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या मिस आउट हो जाते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब उनके पीरियड्स चल रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पेन या ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस देखी गई हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें अदर कंडीशंस जो इसमें एसोसिएटेड है, वो है जैसे अर्ली डायबिटीज़ का होना, हाइपरटेंशन आ जाना, और थायरॉयड से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं

0: हमारे वो इम्बैलेंस हो जाता है जिसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की परेशानी आने लगती है, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस तो डेफिनेटली इसमें एसोसिएटेड एक सिंड्रोम है ही।
1: लगातार तनाव, स्क्रीन टाइम जैसे आपने मेंशन किया, और इरेगुलर हैबिट्स का महिलाओं के स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है?
0: अगर हम महिलाओं की बात करें तो जो लगातार तनाव महिलाओं के अंदर एक प्रेशर बना हुआ है, वो काम का है चाहे पढ़ाई का है, चाहे आपने देखा कि सोशल मीडिया की वजह से भी एक अलग से प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है, टास्क हैं, जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से आप ये देखें कि आपके जो बॉडी के हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं में ये जब इंक्रीज़ करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो जो ये एक तरह के बैड हार्मोन्स हैं, जब ये होते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो जितने भी कंडीशंस अभी हमने बात करी, PCOS, ओबेसिटी, ये सब इससे जल्दी होने की संभावना आती है। साथ साथ मेंटल स्ट्रेस प्रेशर की वजह से आप ये देखेंगे कई बार महिलाओं में थकान बहुत जल्दी होने लगती है, स्लीप जो है डिस्टर्बेंसेस भी आने लग जाती हैं, आपको काम का अगर लोड है, आपको असाइनमेंट्स है, टास्क हैं आप कर रही हैं, है ना, तो उसकी वजह से आपका जो स्लीप पैटर्न है वो पूरा डिस्टर्ब होगा। तो जो हेल्दी बॉडी है वो ऑलवेज तभी हेल्दी रहती है जब आपकी लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे। अगर आपका एक भी चीज़, अगर जैसे अगर हम डाइट की बात करें, डाइट आपने इम्प्रॉपरली या आपने स्लीप समय पे नहीं ली, प्रॉपर फिटनेस आपने बॉडी के लिए नहीं करी, एक्सरसाइजेस नहीं करी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, उनके हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हैं उनको ज़्यादा क्रिएट करने लग जाती है।
1: तो अभी जैसे आपने मेंशन किया अबाउट दिस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कॉल्ड ओबेसिटी, तो अगर एक यंग वुमन है जो ये एक्सपीरियंस कर रही है तो वो इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगी?
0: सबसे पहले तो ओबेसिटी, एक चीज मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका ओबेसिटी का फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि हर किसी के बॉडी का जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि वेदर वो ओवरवेट कैटेगरी में आती है फीमेल या वो ओबेसिटी में आती है। सो जब हमें कंफर्म ये हो जाता है विद द टेस्ट कि आप ओबेसिटी में हैं, सो कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए सर्टन प्रोटोकॉल्स हैं। सो सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एज स्पेसिफिक या कंडीशन स्पेसिफिक हम उनका एक कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वी बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट वी ऑलवेज मेक अ कस्टमाइज प्रोटोकॉल फॉर द पेशेंट्स जो प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं। सो जब हमें पता है कि उनका ये कंडीशन है तो हम उनके लिए कस्टमाइज प्रोटोकॉल बताएंगे जिसके अंदर हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं कि 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजेस आपको करना है पर वीक, ठीक है, जिसके अंदर अगर हम डेली के बेसिस पे अगर हम देखें तो आपका 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज डेली बेसिस पे आपको करनी है, जिसके अंदर वेरी माइल्ड टू मॉडरेट काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिसमें आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत ही लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसके अंदर हम वेट्स उठाकर बॉडी वेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक्स्ट्रा कोई रेजिस्टेड बैंड या डंबल्स का इस्तेमाल करके, या फिर गैजेट्स अगर आप जिम में जाके एक्सरसाइजेस करती हैं, या फिर कस्टमाइज एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो हम एक रेजिस्टेड ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उनको एडवाइस करते हैं, ताकि उनका बॉडी का जो मैकेनिज्म है कैलोरी बर्न के ऊपर जाए, फैट बर्न हो, तो डिपॉजिटेड फैट जब बर्न करेगा तो डेफिनेटली उनकी बॉडी पहले से वेट को रिड्यूस यानी वेट रिडक्शन की तरफ जाएगी। और साथ साथ डाइट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपको क्या खाना है, कितना हेल्दी आपको खाना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डाइट के अंदर आपका टाइमिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मील्स, कोई भी मील स्किप ना करें, है ना, उसमें ये है कि जो 3 मील्स इन अ डे आप लेते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते हैं, देन लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं, उसके बीच में मिनी मील्स भी आप एड ऑन कर सकते हैं, और ईटिंग हैबिट्स तो डेफिनेटली चेंज करना बहुत ज़रूरी है ओबेसिटी जो फेस कर रही है फीमेल्स, कि आप जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, प्रोसेस्ड फूड ना लें, जो शुगर वाली बेवरेजेस हैं आजकल देखें जितनी भी ड्रिंक्स मार्केट में आ रही हैं उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कैफीन है वो भी हमें कम से कम यूज़ करना है, कंजप्शन उसका ज़्यादा नहीं करना है, और खाने में हेल्दी डाइट आप लें, फाइबर रिच डाइट लें, वेजिटेबल्स हैं जो हैं मोर ऑफ वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, सैलड इंक्लूड करें अपने डाइट में, और साथ साथ आप जो कंट्रोल करें इस चीज़ को कि आप ओवर ईटिंग ना करें, जितना आपका मील प्रोपोर्शनेट होगा उतना ही आपका हेल्थ बेटर रहेगा और आपका वेट मेंटेन रहेगा।
1: दैट्स ग्रेट. तो अभी जैसे मैम आपने मेंशन किया दैट यू स्ट्रक्चर कस्टमाइज्ड पर्सनल प्रोटोकॉल्स, तो उसी से जुड़ता हुआ मेरा अगला सवाल है कि युवतियों को कौन कौन से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर करवाने चाहिए ताकि समस्याओं को शुरुआती स्तर पर पता चल सके.
0: जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स किस प्रकार के आ रहे हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है कि महिलाओं को थकान

0: महसूस होती है, बालों का झड़ना थोड़ा देखेंगे फ्रीक्वेंट होने लगता है, इसके अलावा वेट सडनली बढ़ जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, बिकॉज अगर हम थायरॉयड से इसको एसोसिएट करें तो उसमें वेट का ओवर वेट होना या फिर कम वेट होना दोनों चीज़ें देखी गई हैं, और आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी है। सो जब आपके इस तरह के सिम्टम्स महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा आप युवतियों में देख रही हैं, महसूस कर रही हैं, तो उनको सबसे पहले ये एडवाइस किया जाता है कि आप एक स्क्रीनिंग करें जो एनुअल स्क्रीनिंग होता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट होते हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी रेशो, जो एक नॉर्मल रेशो होना चाहिए पर्टिकुलर हार्मोन्स का या फिर आपके बाकी लेवल्स का, ब्लड के जो लेवल्स हैं। सो कॉमनली जो टेस्ट हम कराते हैं वो है आपका कंप्लीट हीमोग्राम, CBC, जिसमें आपका आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन कितना है बॉडी के अंदर वो पता चल जाता है। देन आपका लिपिड प्रोफाइल, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन कर देता है कि बॉडी में फैट रेशो कितना है। हाँ, गुड मतलब गुड HDL और LDL इसमें रेशोज होती है लिपिड प्रोफाइल के अंदर। इसके बाद हम थायरॉयड प्रोफाइल चेक कराते हैं, और PCOS वाली कंडीशन अगर है किसी को, पॉलीसिस्टेरिक ओवेरियन सिंड्रोम से अगर महिला जूझ रही है, तो उसके लिए गायनेक जो है वो आपको एक अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस करती है, जिसमें आपका सिस्ट का साइज कितना है, वेदर मेडिकेशन is required या फिर lifestyle modification से वो ठीक हो सकता है या exercise से ठीक हो सकता है।
1: Thank you so much, Dr. Shweta. It was wonderful talking to you.
0: Thank you so much, Parvati.
2: आइए, आपका इंतजार था। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं युववाणी। उम्मीद करते हैं मेंटल हेल्थ के साथ साथ डॉक्टर श्वेता शर्मा द्वारा दी गई जानकारी आपने अच्छे से सुनी और समझी होगी।
3: हम दोनों के दिमाग में बहुत देर से एक गाना टिंग करके बज रहा है, और जैसा कि आप अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम दोनों को गुनगुनाने का कितना शौक है।
2: सो प्रेजेंटिंग बिफोर यू जाने क्यों सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म दोस्ताना।
3: जाने क्यों दिल जाता है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट, आई विल बी ऑल राइट।

0: वेलकम बैक। देर इज अ स्लोगन बाय WHO, देर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। मतलब अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं तो ओवरऑल हेल्थ भी कंप्लीट नहीं होती। और याद रहे, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के शो के अगले सेगमेंट पे, टुडे इज इन हिस्ट्री।
1: As we all know that it's 6th of July, this day is known for the birth anniversary of Shyama Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Janasangh, later on became Bharatiya Janata Party.
0: और आज ही के दिन भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके जगजीवन राम रेड्डी, जगजीवन राम का उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है।
1: इसी के साथ बस इतना कहूंगी, proud to be an Indian. That's why this country is known as unity in diversity, where every tradition tells a story, every culture adds color, and every citizen is a part of one incredible nation.
0: इस बात से अटल जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है,
1: ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है,
0: हम जिएंगे इस भारत के लिए
1: और मरेंगे इस भारत के लिए,
0: इसलिए तो हमें कहते हैं इंडिया वाले।

0: दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, क्या बात है। और इसी के साथ दोस्तों आज की ये खूबसूरत सी जर्नी यहीं तक।
1: मेंटल हेल्थ और वेलनेस की बातें हुई, बॉलीवुड के बैक टू बैक अपबीट ट्रैक ने मूड को फुल ऑन रिफ्रेश किया और हमारी थोड़ी सी जुगलबंदी और नोकझोंक ने भी आपको जरूर ही मजबूर कर दिया होगा हंसने पे। याद रखिए, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, पर अकेले रहना जरूरी नहीं। बात कीजिए, सपोर्ट लीजिए और अपने मन का ख्याल रखिए। और साथ ही आज हमने श्वेता जी से भी जाना, अपने फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। उम्मीद है आज के शो ने आपके दिन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ऐड करी होगी, हमने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ऐड करा होगा और ढेर सारी गुड वाइब्स लेके आज हम आपसे यहीं पे विदा लेते हैं।
0: मैं हूं दीपांशा, मेरे साथ मेरे को होस्ट यश। अब आपसे लेते हैं इजाजत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा जरूरी अपना भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नए दिन, नए जज्बे और नए गानों के साथ। तब तक बस इतना कहूंगी कि हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीन देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन

पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्वकप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। देखिए प्रियंका बहन, हम अपने लोक रंजनी कार्यक्रम में लेकर आते हैं नए नए लोकगीत, और आज हम कुछ ऐसे ही मिले जुले लोकगीत लेकर आए हैं। सबसे पहले सुनते हैं ऋषि पाल खदाना और साथियों की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।
1: बिल्कुल।

0: से
1: अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत और कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और साथी।
2: जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं प्रियंका बहन और अगला लोकगीत सुनवाते हैं अपने भाइयों को तू ही राम और साथियों की आवाज में।

0: तो ही राम और साथियों की आवाज में अभी सुन रहे थे आप ये लोकगीत। और सचमुच भाई मानसून आ चुका है और गरज वरज के साथ बारिश भी हो रही है, और जरूरी भी है इस समय बारिश होना ताकि गर्मी से कुछ राहत मिल सके।
1: बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, अपने भाइयों का मनोरंजन करवा रहे हैं हम लोकगीतों के साथ, और अब सुनते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत। आगे बढ़ते हैं और पुष्पा गोसाई और साथियों की आवाज़ में सुनते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे पुष्पा गोसाई और उन साथियों की आवाज़ में ही प्यारा सा लोकगीत, और इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी है संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पालासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। 5:30 होने को हैं, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी
3: संचित जैन।
2: मैं और संचित आपको इस आधे घंटे में खेलों के सफर पर लेके चलेंगे। तो जिनके खेल गतिविधियों को हम शामिल करेंगे उसमें शामिल होगा क्रिकेट,
3: फुटबॉल वर्ल्ड कप,
2: साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर टेनिस की खबरों की भी।
3: बिल्कुल, विंबलडन 2026 जोरों शोरों से चल रहा है, उसकी बात करेंगे और बात करेंगे ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन जो कि इटली में चल रहा है।
2: बात होगी रेसलिंग की भी
3: और फीबा एशिया क्वालिफायर्स यानी बास्केटबॉल की भी।
2: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम सबके पसंदीदा खेल T20 वर्ल्ड कप की और साथ साथ क्रिकेट की, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का खेला जा रहा था उसमें हमें मिल चुका है विजेता और विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया की टीम।
4: It's going to be brought up in not the greatest of ways for England, but Australia will take it. And in the backyard of their oldest foe, at the home of cricket, Australia have not just claimed their seventh World T20 title.
2: करीब 24 दिनों तक चले रोमांच, रिकॉर्ड उलटफेर और शानदार मुकाबलों के बाद आखिरकार महिला क्रिकेट को अपना नया विश्व विजेता मिल गया। क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस विश्व कप की शुरुआत से लेकर फाइनल तक क्रिकेट प्रेमियों को हर दिन नए रोमांच देखने को मिले। कहीं युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीता तो कहीं अनुभवी खिलाड़ियों ने बड़े मंच पर अपनी क्लास दिखाई। पूरे टूर्नामेंट में कई करीबी मुकाबले हुए, कई रिकॉर्ड बने और कुछ दिग्गज टीमों को अप्रत्याशित हार का सामना भी करना पड़ा। टूर्नामेंट के दौरान मेजबान इंग्लैंड ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने पूरे अभियान में अपना दबदबा बनाए रखा और एक भी मुकाबला गवाए बिना फाइनल में जगह बनाई। ये लगातार शानदार प्रदर्शन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। कप्तान नेट सीवर ब्रंट ने नाबाद 58 रन और प्रिया कैंप ने नाबाद 44 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए 5वें विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की प्रभावी गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड को इससे बड़े स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया। 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने

0: ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भले ही लड़खड़ा गई हो, लेकिन इसके बाद भी फीबी लिचफील्ड और बेथ मूनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हुई। लिचफील्ड ने 48 रन बनाए जबकि बेथ ने 49 गेंदों पर 64 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। अंत में एलिस पेरी और एशले गार्डनर ने टीम को 17.1 ओवर में जीत दिलवाकर ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बना दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने एक और इतिहास रच दिया। टीम ने 2009 से अब तक खेले गए संस्करणों में 7वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में भी चैंपियन रह चुकी है। वहीं इंग्लैंड ने 2009, वेस्टइंडीज ने 2016 और न्यूजीलैंड ने 2024 में एक-एक बार ये खिताब जीता है। इस विश्व कप की सबसे बड़ी उपलब्धियों में ऑस्ट्रेलिया का पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहना भी शामिल रहा। कप्तान सोफी मोलिनियो की अगुवाई में टीम ने हर विभाग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में शानदार संतुलन दिखाया।
1: It's been the most amazing day. I don't know, to have walked away with, you know, World Cup under our arms, in front of nearly 30,000 here at Lord's. It was an incredibly special day. And yeah, I'm just so proud of the group. I think the way that we've played all tournament, and then being able to do it on the biggest stage today, it's just, you know, a true testament to the character of the group.
0: वहीं इंग्लैंड के लिए भी नेट सीवर ब्रंट ने कप्तान के रूप में बेहतरीन नेतृत्व किया और पूरे टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से टीम की रीढ़ बना के रखी।
2: Was a tough one today. I think obviously, you know, the best two sides were in the final and Australia bowled really well to really restrict us and not let us play too freely. So yeah, I suppose, well, we didn't have enough runs in the end. And yeah, I suppose when they have such long batting lineup, you'd always ask the openers to go and take on the game, which they did brilliantly. We were outplayed today.
0: ये विश्व कप सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की कहानी नहीं रहा, बल्कि महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता प्रतिस्पर्धा का भी प्रतीक बना। दर्शकों की शानदार मौजूदगी, रोमांचक मुकाबले और खिलाड़ियों का जज्बा इस बात का संकेत है कि महिला क्रिकेट अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आकर्षक हो चुका है। इस पूरी जीत पर पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर और कोच वैशाली माथुर कहती हैं,
3: ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आउटस्टैंडिंग करी है उन्होंने और वो लाजवाब रही भी है। मूनी है, सोफी है, पेरी है, कोई ना कोई प्लेयर उनका रहता है और वो एक टीम के साथ एक जुट होके एक दूसरे को कवर करके चलते हैं और वो एक टीम वर्क दिखाते हैं। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करूं कल के मैच की, तो कल के मैच में अगर हमने देखा पावर प्ले के अंदर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है, वो उस पावर प्ले का उतना उपयोग उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि वहां पर एट ओवर्स में उनके 64 रन्स थे एंड वहां पर एट ओवर के अंदर उनके अगर हम हर ओवर के हिसाब से देखें तो 100 रन्स के ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि आप फाइनल मैच खेल रहे हैं, आप क्वार्टर फाइनल मैच नहीं खेल रहे और वो भी एक उस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो 6 बार रह चुकी है और इस बार 7वीं बार बनी है। लेकिन उसके साथ उनकी स्ट्रेंथ भी देखी गई और क्या आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करी है फर्स्ट 10 ओवर्स में, जो उन्होंने रोके हैं ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड के, वो अमेजिंग थे। एंड उसके बाद लग रहा था कि जब सेकंड इनिंग में इंग्लैंड ने जैसे बॉलिंग करने के लिए वो आए, पहली बॉल पे जो उन्होंने आउट मांगा था बट वो दिया नहीं गया, वो निराशाजनक रहा। लेकिन उसके बाद एक मोमेंट भी इंग्लैंड की साइड से या स्पिनर की साइड से इंग्लैंड के ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि उन्होंने कहीं से मैच को फंसाया हो या रोकने की कोशिश करी हो, कहीं भी एक वो मोमेंट आया नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैटर ने वो हाथ खोलने का, उनको टिकने का, बॉलर्स को टिकने का वो मौका ही नहीं दिया।
0: अब बात करें अगर भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम टूर्नामेंट के लीग मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से हार कर बाहर हो गई थी, लेकिन भारतीय महिला टीम की गेंदबाज श्री चरणी ने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 14 विकेट चटकाए और टीम ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का आधिकारिक कोटा हासिल कर लिया।
3: यंग प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेल रही है और ऐसे ही उनका एक्सपीरियंस अब गेन करती रहे तो वो उनके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। और यहाँ पे हमारी इंडियन टीम के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये जरूर कहूंगी कि दीप्ति शर्मा भी एक फर्स्ट नंबर पे, जिन्होंने फर्स्ट 5 विकेट्स लिए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर, एंड वो भी अभी टॉप स्कोरर पे है इस

0: इस वक्त विकेट टेकर हैं।
1: 24 दिनों तक चले इस क्रिकेट महाकुंभ का समापन ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ और एक बार फिर दुनिया ने देखा कि महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा अब भी कायम है। 7वीं बार विश्व चैंपियन बनकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इतिहास के पन्नों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। व्हाट अ स्टोरी, वाकई एक स्टोरी ही है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को यहाँ पर मजबूत स्थिति में शुरू से बनाए रखा। और कहते हैं कि जब किसी चीज की शुरुआत अच्छी होती है तो अंत अपने आप ही अच्छा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, और ऐसा ही अंत जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है फुटबॉल के ग्राउंड में भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फीफा वर्ल्ड कप की, जहां पर अब जो टीमें हैं वो लड़ रही हैं आगे के चरण के लिए। क्या है पूरी अपडेट, चलते हैं संचित के पास।

फुटबॉल के महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप जो कि यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में खेला जा रहा है में कल दो शानदार मैच खेले गए। पहला मैच 5 बार विश्व विजेता ब्राजील और नॉर्वे के बीच खेला गया। नॉर्वे ने शानदार फुटबॉल खेलते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। अर्लिंग हालैंड ने 79 और 90th मिनट में गोल मारकर नॉर्वे को 2-0 की बढ़त दिलाई थी। ब्राजील को 100th मिनट में पेनल्टी मिली जिसको नेमार ने खूबसूरती से गोल मारकर मैच 2-1 पर ले आए, परंतु समय नहीं बचा और नॉर्वे ने ये मैच अपने नाम कर लिया। फर्स्ट हाफ में ब्राजील को एक और पेनल्टी मिली थी लेकिन ब्रूनो गिमराइस गोल नहीं कर पाए। इस जीत के साथ नॉर्वे अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है और नॉर्वे के लिए ये बहुत गर्व की बात है। जहां तक ब्राजील की बात करें तो काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा और 1990 के बाद ये पहली बार है जब ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। इस हार के साथ ब्राजील का नॉर्वे के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड और खराब हुआ। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि नॉर्वे ऐसा अकेला देश है जिसके साथ ब्राजील कई बार खेला है लेकिन हरा नहीं पाया है। ब्राजील नॉर्वे से आज तक 5 मैच खेला है जिसमें से उन्होंने 2 मैच हार गए हैं और 3 बार मैच ड्रॉ रहा है।

चलिए अब बात करते हैं कल रात के दूसरे रोमांचक मैच की, जो कि मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच मेक्सिको सिटी में खेला गया। ये मैच शुरुआत से ही काफी तेजी और रोमांच भरा रहा। इंग्लैंड के जूट बेलिंगम ने 90 सेकंड में दो गोल मारकर इंग्लैंड को 2-0 की बढ़त दिलाई। जैसे ही इंग्लैंड को लगने लगा कि उनकी क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की होती दिख रही है, मेक्सिको के किनोनेस ने 42nd मिनट में हाफ टाइम से पहले गोल मारकर मैच 2-1 पर ले आए। सेकेंड हाफ में बस 9 ही मिनट बीते थे जब इस मैच में एक और दिलचस्प मोड़ लिया। 54th मिनट में इंग्लैंड के क्वांसा को एक हैवी टैकल के चलते रेड कार्ड दिखाया गया। इंग्लैंड के अब बस 10 प्लेयर फील्ड पर बचे थे और मेक्सिको को लगा कि यही मैच को बराबरी पर लाने का अच्छा मौका है, परंतु 60th मिनट में मेक्सिको के गोलकीपर ने इंग्लैंड के एंथनी गॉर्डन को पेनल्टी बॉक्स में गिरा दिया और इंग्लैंड को पेनल्टी मिल गई। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन आगे आए और एक शानदार पेनल्टी के साथ गोल मारकर इंग्लैंड को मैच में 3-1 की बढ़त दिलाई। जैसे ही ये लगने लगा कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, मेक्सिको के राउल हिमेनेज ने 69th मिनट में पेनल्टी मारकर मैच को 3-2 पर ले आए। अगले 20 मिनट तक मेक्सिको कोशिश करता रहा लेकिन गोल नहीं कर सका। इस जीत के चलते इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और उसका अगला मुकाबला नॉर्वे के साथ 11 जुलाई को होगा।

वहीं आज खेले जाने वाले मैचेस पर नजर डालें तो राउंड ऑफ 16 का सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला आज डैलस स्टेडियम में पोर्चुगल और स्पेन के बीच खेला जाएगा। स्पेन की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले फ्रांस और अर्जेंटीना के साथ स्पेन भी प्री टूर्नामेंट फेवरेट थे ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। स्पेन की टीम में फुटबॉल जगत के सुपरस्टार्स भरे हुए हैं और स्पेन ये जरूर चाहेगा कि इन बड़े मैचों में उनकी टीम के बड़े खिलाड़ी आगे आए और शानदार प्रदर्शन दिखाए। सारी नजरें स्पेन और बार्सिलोना के खेलने वाले चाइल्ड सेंसेशन लामिन यमाल पर होगी। सुपरस्टार्स की बात कर हो ही रही है तो पोर्चुगल कैसे पीछे रह सकता है। लोकप्रिय खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी CR7 पोर्चुगल की तरफ से खेलते नजर आएंगे। CR7 अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वर्ल्ड कप रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। पोर्चुगल में मैन यूनाइटेड के कप्तान और सुपरस्टार ब्रूनो फर्नांडेस और PSG के विटिनिया और जाओ नेवेस रोनाल्डो और पोर्चुगल को क्वार्टर फाइनल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्पेन और पोर्चुगल आपस में 4 बार खेल चुके हैं जिसमें दोनों टीमें एक एक मैच जीते हैं और बाकी 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर आज रात इस मैच पर होगी तो देखते हैं क्वार्टर फाइनल में कौन अपनी जगह बनाता है।

0: आज खेले जाने वाले दूसरे मैच होस्ट नेशन यूएसए और बेल्जियम के बीच सिएटल में खेला जाएगा। यूएसए अच्छी फॉर्म में चल रहा है और ये मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्का करना चाहेगा। आज सुबह ही खबर आई है कि फीफा ने यूएसए के स्टार प्लेयर फोलोरिन बोलोगुन के रेड कार्ड का सस्पेंशन पोस्टपोन कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो आज इस मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे और ये मैच खेल सकते हैं। बेल्जियम की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और वो अपने सुपरस्टार्स केविन डी ब्रुइने, लियोनार्डो ट्रोसार्ड, लुकाकू जैसे प्लेयर से अच्छा प्रदर्शन की कामना करेंगे। इस मैच के विजेता स्पेन और पोर्चुगल के मैच के विजेता के साथ क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे।
1: तो यही है रोमांच खबरों का। सिर्फ ऐसा मैं मानती थी कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है संचित, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल भी अनिश्चितताओं का खेल बनता जा रहा है।
0: जी बिल्कुल कविता, फुटबॉल वर्ल्ड कप बहुत ही रोमांचक होते जा रहा है और जैसे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स की बात करेंगे तो और भी अच्छी अच्छी मैच देखने को मिलेंगे।
1: जी बिल्कुल, तो हम बात करेंगे अब यहाँ पे इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए के बीच खेले गए अनौपचारिक टेस्ट मैच की सीरीज का जो दूसरा मुकाबला और आखिरी मुकाबला गोल में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया 10 विकेट से जीत कर यहाँ पर कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली और इसके साथ ही सीरीज भी उन्होंने अपने नाम कर ली है 1-0 से। मैच में 543 रनों पर अपनी पहली पारी घोषित करके टीम इंडिया ने मेजबान पर 177 रन की लीड हासिल की। सारांश जैन 70 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी पारी में श्रीलंका ने 209 रन बनाकर टीम इंडिया के सामने 33 रन का टारगेट रखा, जिसे टीम इंडिया ने बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया। और दूसरी पारी में साई सुदर्शन ने 25 रन बनाकर अपने आप को नाबाद रहने का मौका दिया। तो फिलहाल तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने श्रीलंका ए पर 175 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी और सारांश जैन ने जैसा मैंने बताया कि 70 रन बनाकर वो आउट हुए। और इन जो ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं, जिसमें कि हमारे देवदत्त पड्डीकल हैं और इसके साथ साथ हमारे साई सुदर्शन हैं, इन सभी ने जिस तरह का खेल दिखाया, इसके साथ साथ गुरनूर बरार ने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर ये कारनामा करने में और सफलता अर्जित कर ली। और जिस तरह ये मुकाबला खेला गया, पूरी ही टीम ने 10 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। वहीं पहली पारी में श्रीलंका ने 366 रन बनाए थे, लेकिन भारतीय टीम के सामने श्रीलंका की टीम जो श्रीलंका ए है घुटने टेकती हुई नजर आई। तो जिस तरीके से ये मैच खेला गया, ये काबिले तारीफ रहा इंडिया ए की टीम से। अब बात करते हैं हम अगली खबर की। तो अगली खबर क्या है, उसके लिए हम चलेंगे संचित के पास।
0: आइए चलते हैं विंबलडन की बात करते हैं, जहां राउंड ऑफ 16 के मैचेस खेले गए। नोवाक जोकोविच जो कि 7 सीड रहे इस टूर्नामेंट में, उन्होंने रशिया के आर सैफुलिन को 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से हरा दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने मैच के बाद क्या कहा।
2: I think that the amount of time I spend recovering nowadays is more than I have ever done. It's just the demands of the body nowadays, more wear and tear. Can't say I always enjoy it, you know, it takes away a lot of the time, but it's a part of the process and adjustment to the body changes, I guess, in the late years, last several years. But throughout my career, you know, I always try to look what can give me an edge, you know, what's the best recovery wellness technology out there, you know, from hyperbaric chambers to cryo chambers to, you know, cold immersions to red light therapy to pulse electromagnetic therapies to, you know, there's a lot of things that I have used and I've been using and still using. So yeah, I mean, I like that, you know. I think sometimes less is more as well, so you just kind of have to feel what really works for you. To be honest, I haven't felt really great on the court, so I was just relieved to get out of it and get a win. So satisfaction and enjoyment was not part of today's win, to be honest. Of course, I'm relieved and happy to win it, but I haven't enjoyed. So hopefully next match will be better in that sense.
0: और नोवाक जोकोविच को टक्कर देते हुए वर्ल्ड नंबर वन यानिक सिनर ने जापान के एस मोचिजुकी को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। आइए सुनते हैं सिनर ने क्या कहा।
3: Tough match, never played against him. But amazing tournament for him from his side. Very high level player and very happy about today's performance. Think most important is to stay with a good mentality and right attitude on court. And of course, the stages are getting bigger, more important, as we know, and there is more attention on every detail. So we try to prepare each match as the most important, you know, and then we see, you know, I'm trying to control whatever we can control, and then the rest, you know, trying to solve the problem. Yeah, I mean, all back in the days, there were some players like this, but it's very tricky, you know, especially on this surface. He beat incredible players, you know, to come to this stage, and I knew it mentally, you know, trying to understand in the beginning of the match how to play. Had chances in the second set, couldn't use them. Third set felt like both we started to play better. And yeah, so I'm very happy how I handled these situations, you know.
0: वही महिलाओं की बात करें तो राउंड ऑफ 16 में वर्ल्ड नंबर वन साबालेंका और जापान की नाओमी ओसाका के बीच बहुत ही घमासान मुकाबला रहा. नाओमी ओसाका ने साबालेंका को 6-2 7-6 से हरा दिया. आइए सुनते हैं ओसाका ने मैच के बाद क्या कहा.
4: Yeah, I mean it was a really difficult match, but I've played her a couple times this year, so I just tried to focus on the things that I'm good at and the positives that I could keep, I guess, thinking about moving forward in the match. I mean, tactically, there's only so much you could do against her. I think, you know, obviously we're big ball strikers. And I think from my end, like, it's not like I'm going to start running around the court trying to draw an error from her. I can only focus on my strengths. So I just tried to serve really well because it's grass. And I also tried to get the upper hand in the rallies first. And that just happened to work really well today.
0: ये थी नाओमी ओसाका. और अब सुनते हैं वर्ल्ड नंबर वन साबालेंका जो कि विंबलडन में हार गई हैं, उन्होंने मैच के बाद क्या कहा.
4: Obviously I'm not happy with the way I played, but she overpowered me. It was incredible level from her. I tried my best and unfortunately not this year. I think a combination of both. I didn't play my best and she played probably her best, and sometimes that happens. Sometimes you can go out there and do everything you can and still lose the match. So obviously I'm not really happy, and well done for Naomi and wishing her the best.
1: तो खेल का मैदान है जहां हार और जीत तो चलती ही रहती है. कोई हारता है तो कोई जीतता भी है. और कहते तो ये हैं कि जिस दिन खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं उस दिन ही बनते हैं रिकॉर्ड और उस दिन ही वो खिलाड़ी बनता है चैंपियन. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रेसलिंग के अंदर कौन चैंपियन बना है, क्योंकि अभी थाईलैंड में 27 जून से 5 जुलाई तक आयोजित हुई अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसमें भारत के युवा पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन कर

0: करते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय कुश्ती का भविष्य कितना मजबूत है। लगभग 9 दिनों तक चली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में एशिया के कई देशों के उभरते पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार खेल से सबसे अधिक प्रभावित किया। टूर्नामेंट के अंतिम चरण में पुरुष फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत के सुमित कुमार ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के शुनकर सेदाखमेत को 13-17 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस पूरे ही मुकाबले में सुमित ने आक्रामक खेल दिखाया और निर्णायक बढ़त बनाकर भारत को एक महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक दिलवा दिया। सुमित के अलावा 57 किलोग्राम में रोहित ने ब्रॉन्ज, 61 किलोग्राम में पुष्प ने सिल्वर, 74 किलोग्राम में युवराज पाटिल ने ब्रॉन्ज, 89 किलोग्राम में सौरभ ने सिल्वर, 97 किलोग्राम में लक्की ने ब्रॉन्ज और 125 किलोग्राम भार वर्ग में रौनक ने सिल्वर लेकर तीसरा पायदान हासिल किया। जब लड़के इतना अच्छा कर रहे हैं तो लड़कियां कहां पीछे रहने वाली हैं। विमेन्स की बात करें तो महिला वर्ग में ही भारत की प्रवीण ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड, 53 किलोग्राम में मुस्कान ने गोल्ड, 55 किलोग्राम में काजल ने ब्रॉन्ज, 57 किलोग्राम में मानिया ने सिल्वर, 59 किलो में कोमल ने ब्रॉन्ज, 62 में सविता ने सिल्वर, 68 किलोग्राम में मानसी ने ब्रॉन्ज, 72 किलो में मनीषा ने सिल्वर और 76 किलोग्राम में काजल ने जापान की माहिर को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। और यहाँ भारतीय महिलाओं ने लिया है दूसरा पायदान। वही बात करें अगर ग्रीको रोमन की बॉयज की, तो वहां पर मिला है भारत को 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। महिलाओं में ग्रीको रोमन में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भारतीय दल के खेमे में आए। इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने विभिन्न भार वर्गों में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। पिछले कुछ वर्षों में जूनियर और आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में भारतीय पहलवान लगातार पदक जीत रहे हैं, जिसका असर सकारात्मक दिख रहा है और प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम साफ देख सकते हैं। अगली खबर के लिए चलते हैं अपने सहयोगी संचित के पास।
1: आइए अब बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन 2026 की। ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन 2026 3 जुलाई से 13 जुलाई तक लोनाटो डेलगाडा इटली में खेला जा रहा है। इस इवेंट में पुरुष और महिला इंडिविजुअल और मिक्स टीम ट्रैप एंड स्कीट इवेंट्स हैं। ट्रैप इवेंट बुधवार 8 जुलाई से शुरू होगा। जहां मेन स्कीट की बात करें तो 125 में से 75 शॉट के बाद भारत के अहमद खान अभी 10वें स्थान पर हैं। वहीं महिलाओं की बात करें तो राउंड 3 के बाद भारत की कोई भी खिलाड़ी क्वालिफाई होती नहीं दिख रही हैं। आइए अब चलते हैं कविता के पास अगली खबर के लिए।
0: जी हाँ, अगली खबर है बास्केटबॉल के कोर्ट से। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2027 के एशियाई क्वालिफायर में भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का अभियान जीत के बिना समाप्त हो गया। अहमदाबाद के वीर सावरकर इंडोर स्टेडियम में खेले गए ग्रुप डी के अपने अंतिम मुकाबले में भारत को लेबनान के हाथों 72-98 से हार का सामना करना पड़ा। विश्व रैंकिंग में 76वें स्थान पर काबिज भारत के लिए क्वालिफाइंग अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। भारतीय टीम ग्रुप चरण के अपने सभी 6 मुकाबले हार गई और अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर रही। इससे पहले भी भारत विश्व रैंकिंग में 33वें स्थान पर मौजूद लेबनान से उसके घरेलू मैदान पर खेले गए मुकाबले में हार चुकी थी। इस हार के साथ भारत का फीबा विश्व कप 2027 में जगह बनाने का सपना भी समाप्त हो गया। अंतिम 2 मुकाबलों से पहले ही भारतीय जो टीम है क्वालिफिकेशन की दौड़ से बाहर हो चुकी थी। अगर मुकाबलों की बात करें तो लेबनान ने शुरुआत से ही मैच पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। पहले क्वार्टर में सर्जियो एल डार्विच ने शानदार खेल दिखाते हुए 9 अंक बनाए और उनकी टीम ने पहले 10 मिनट के बाद 28-15 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने वापसी की कोशिश की। अरविंद मथुकृष्णन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस क्वार्टर में 10 अंक जो है वो जुटा लिए, लेकिन भारत दूसरे क्वार्टर में लेबनान को 23-20 से पछाड़ा और हाफ टाइम तक स्कोर 48-38 कर दिया। और ये जितनी भी कोशिशें यहां पर टीम इंडिया ने की उसका कोई फायदा नहीं हुआ और अंतिम जो राउंड था उसमें जो लेबनान की टीम है वो ज्यादा भारी जो है टीम इंडिया पर नजर आई और उसके साथ ही यहां हार कर टीम इंडिया इस इवेंट से बाहर हो गई। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2027 के क्वालिफिकेशन में दुनिया भर के 4 क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया, यूरोप और अमेरिका की कुल 80 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एशिया क्वालिफायर में 16 टीमों को 4 समूह में बांटा गया था। भारत को ग्रुप डी में लेबनान, कतर और सऊदी अरब जैसी मजबूत टीमों के साथ रखा गया था, लेकिन फिलहाल भारत जो है बिना किसी जीत के साथ ही अपना अभियान समाप्त करने पर मजबूर रहा।
1: आइए अब चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी की तरफ, जहां पे बहुत ही खुश खबरी आई है। भारतीय राइडर अनुष अग्रवाला ने जर्मनी में चल रही CDI 1 प्री घुड़सवारी में रजत पदक हासिल किया।

0: अनुज ने कुल 70.1% का स्कोर बनाया। और अब बात करते हैं जकार्ता इंडोनेशिया में 3 जुलाई से 16 जुलाई तक अंडर 19 और अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जहाँ चल रही है। भारत के कुल 40 बॉक्सर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
1: जी हाँ, और अब क्योंकि जो समय है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाते जाते कुछ और खेल खबरों की तरफ आपका रुख कराना चाहेंगे। बात करेंगे यहाँ पर चेस की। क्रोएशिया में आयोजित प्रतिष्ठित सुपर रैपिड और ब्रिट्स 2026 के शतरंज टूर्नामेंट के रोमांचक समापन फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा के खिताबी जीत के साथ हुआ। फाइनल का फैसला बेहद तनावपूर्ण रहा और जहाँ फिरोजा ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर नोदिर बेक को मात देकर खिताब अपने नाम किया, वहीं भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उन्होंने फ्रांस के मैक्सिम वॉशिए लाग्रेव के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने मजबूत और लगातार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाई। तो अब क्योंकि जो समय है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो क्या तुम्हारे पास कोई और खेल खबर है संचित?
0: जी बिल्कुल, जाते जाते एक बड़ी खबर अभी भी आई है। बेल्जियम को फीफा के आज सुबह के डिसीजन अराउंड फ्लोरेन बैलोगुन के अराउंड जो आया था रेड कार्ड के लिए, उसके लिए परमिशन ग्रांट की गई है कि वो ये डिसीजन अपील कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है और देखने वाली बात है कि आगे बेल्जियम क्या करेगा।
1: जी हाँ, तो चलते चलते आज की इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में इतना ही, और अब मैं अपने सहयोगी संचित जैन के साथ, अपने प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।
0: नमस्कार सभी को।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी

प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एम आकाशवाणी देहली अस्ति। संस्कृत सौरभम कार्यक्रम अंतर्गतम वार्तायाः विषय अस्ति उपनिषदों में शिक्षा व्यवस्था। वार्ताकर्ता अस्ति डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। प्राचीन काले भारतवर्षे गुरुकुलेषु आश्रमेषु आर्षविद्यायाः अध्ययनं भवति स्म। तत्र गुरु शिष्य परंपरायाः अध्यात्म सामाजिक खगोल शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदिनाम अध्ययनं भवति स्म। तस्यैव हि दिग्दर्शनम उपनिषत्सु प्राप्यते। उपनि उपसर्ग पूर्वगात विसरण गत्ते वसार्दनार्थ कात सदली सद्धातो कोऽपि उपनिषद शब्दो निष्पद्यते। उप समीपे निश्चयेन सत् स्थानम् इति तत्त्वज्ञानार्थ गुरो समीपे सविनयम् स्थितिः उपनिषद इत्युच्यते। तत्त्वज्ञान प्रतिपादनात् एतद् विषयका ग्रन्था अपि उपनिषद इत्युच्यन्ते। उपनिषद शब्दार्थो ब्रह्म विद्यापि गृह्यते। सद्धातो अर्थत्रयम् आश्रित्य उपनिषद शब्दार्थो निरूप्यते। यद् सा संसार बीजभूताम् अविद्या नाशयति यथा ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म जानम वा भवति यथा च मानव दुख अवसादो भवति सा उपनिषद इति। अतः एव श्री शंकराचार्य अविद्या नाशनम दुख निरोधम ब्रह्म प्राप्ति च इत्यर्थम त्रयम् आश्रित उपनिषद शब्दम ब्रह्म विद्या द्योतकत्वेन स्वीकरोति। यद्यपि उपनिषदाम संख्या सद्वयम् वर्ष पर्यंत मन्यते तथापि तत्र एकादश उपनिषद एव मुख्यत्वेन मन्यते। तदेथा इस केन कठ प्रसन्न मुंडक मांडुक्य तैतीर्य ऐतरे छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेतास्वरः। श्री शंकराचार्यो अपि एतासमेव भाष्यम अकरोत्। प्रत्येकः उपनिषद केनापि वेदेन संबंधः वर्तते। उपनिषदां महत्वम एवं उपनिषत्सु शिक्षा व्यवस्था न केवलं भारतीयै अपितु पाश्चात्यै अपि मनीषिभिः निर्विवादं उररीक्रियते। उपनिषदो हि भवा अवधि संतारिका आधि व्याधि संतप्त मांस संतर्पिका माया मोह निबद्ध जीवाधि विनाशेन हेतवः तात्विक ज्ञान प्रभा संतानेन मानवतः कर्ण प्रदीपिका सुख शांति साधिका अभ्युदय निश्रेयस अवाप्ति हेतवस्स सन्ति। अध्यात्म मीमांसायाः दधिप्यमानः रत्नभूता इमा सर्वेष्वपि भारतीयसु दर्शनेषु आसाम प्रभावः स्फुटम् अवलोक्यते। सर्वैरपि मनीषिभिः धर्मप्रवर्तकैः तत्त्वजैः आचार्य शिक्षकैः धर्मशास्त्र प्रकारैश्च उपनिषदां महत्वं स्वीयदृष्ट्या स्वीक्रियते। भारत सर्वस्वभूता इमा उपनिषदौ न केवलं स्वप्रभया भारतमेव विद्योतयन्ति अपि तु सकलमपि भुवनं तरणीवद

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अवदत् यत् सहकार आंदोलनम् परिष्कार अंकीकरण व्यावसायिक प्रबंधनानां माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300+ विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते इति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देशः स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य राजधान्यां जकार्तायां सम्प्राप्तवान्। जकार्ता विमानपत्तने इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यमुना स्वयं उपस्थाय प्रधानमंत्रिणः भव्यं स्वागतं विहितम्। तत्र स्थानीय समुदायेन प्रवासी भारतीयैश्च पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिभिः सह तस्य उत्साहपूर्णं अभिनन्दनं कृतम्। 2018-तमवर्षात् द्विपक्षीय संबंधानां व्यापक रणनीतिक सहयोगस्तरस्य प्राप्तेः परं प्रधानमंत्रिणः इयं प्रथमा द्विपक्षीय यात्रा अस्ति। श्रीमोदी प्रवासे राष्ट्रपतिना प्रवोवो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां विधाय संबंधानां समीक्षां विधास्यति। सहैव सांस्कृतिक नगरे योग्याकार्ता स्थितं ऐतिहासिकं प्रम्बानन मंदिर परिसरमपि द्रक्ष्यति, यत्र भारत इंडोनेशिया देशौ मिलित्वा संरक्षण कार्यं करिष्यतः। अत्रावसरे प्रधानमंत्री जकार्ता नगरे प्रवासी भारतीयानां समूहमपि संबोधयेत्। प्रस्थानात् पूर्वं प्रदत्ते स्वकीय वक्तव्ये तेन निगदितं यत् प्रवासोऽयं भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः महासागरीय दृष्टिकोणस्य सहैव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य च लक्ष्यं सुदृढीकरिष्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे 8-दिनांकात् 10-दिनांकं यावत् प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्रिणः

0: प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्या सह केषुचित् स्थानेषु अत्यधिक अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। उत्तरी अरब सागरस्य केषुचित् भागेषु गुजरात राज्ये हरियाणा पंजाब राज्ययोः शेष भागेषु राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रिमेषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृढ़चक्रस्य अग्रे गन्तुं परिस्थितिः अनुकूलास्ति इति विभागेनोक्तम्। गतरात्रौ विम्बल्डन टेनिस क्रीडायां सर्बिया देशस्य नोवाक जोकोविच इत्यसौ रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिन इत्येतं पराजित्य पुरुष एकल स्पर्धायाः प्रागुपान्त्य चक्रीय क्रीडायां प्रविष्टवान्। अग्रिमायां प्रागुपान्त्य चक्रीय क्रीडायां जोकोविच इत्येषः फेलिक्स ऑगर अलियासिमे इत्यनेन एलेजांद्रे डेविडोविच फोकिना इत्यनेन सह सम्मुखी भूयात्। फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देश स्पेन देश राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अद्य मेक्सिको नगरस्य एजटेका क्रीडांगणे मेक्सिको देशस्य विरुद्धं नाटकीयतया 3-2 इत्यंकैः विजयं प्राप्य इंग्लैंड देश फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: वंदना बहन, आज बहुत ही खास दिवस है और इसके साथ साथ जानकारियां भी बहुत है हमारे पास और मनोरंजन तो हम अपने कार्यक्रम में करवाते ही हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: दिवस की बात करें तो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती हम मना रहे हैं और इनका जन्म कलकत्ता के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ये शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे।
0: जी बिल्कुल। और इन्होंने 370 के विरुद्ध आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के समय भी 1953 में इनका निधन भी हुआ था जब इन्होंने गिरफ्तारी दी थी अपनी। तो इनकी जयंती है आज। और आगे एक और हमारे बाबू जगजीवन राम स्मृति दिवस जो हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन भी भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और समता के प्रतीक बाबू जगजीवन राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित है।
1: बिल्कुल। और एक खास जानकारी भी हम अपने साथियों के लिए लेकर आए हैं।
0: जी बिल्कुल। और वो वन महोत्सव जो हमारा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी देवा रहे हैं आपके अपने साथियों को एसडी सिंह से। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: वन महोत्सव जो हम लोग मनाते हैं वो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हम लोग इसको मनाते हैं और उसमें मुख्य एक तो इसका उद्देश्य था कि हरियाली को बढ़ाना, दूसरा क्लाइमेट चेंज यदि बदल रहा उसको रोकना और तीसरा कि पब्लिक एंथुजियाज्म जो है उसको बढ़ाना था। और चाहे वो उसको रैली के रूप में बढ़ाएं, होस्टिंग के रूप में बढ़ाएं या ऐसे पोस्टर के रूप में बढ़ाएं, इको क्लब इवेंट्स के रूप में बढ़ाएं, तो इन सब के बीच में हम लोग यदि ये इसको करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा एक पर्यावरण संरक्षण भी होता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज जो है वो की जा सकती है और हम लोगों को जो किस प्रकार से करना चाहिए, प्लांटेशन ड्राइव के रूप में करना चाहिए। जो इस हफ्ते में हमें वृक्षों का रोपण करना है एट होम या जहां भी कहीं हमें जगह मिले वहां पर करना है और लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर एजेंसी से पौधे लेकर यदि हम लोग लगाते हैं तो इसमें सभी लोग जो हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोग वृक्षारोपण का कार्य करें और इसमें चाहे हम इंडिविजुअल के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप

0: में करें, कम्युनिटी के रूप में करें, एनजीओ के रूप में करें, इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेशंस हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सारे मिलकर यदि इस वन महोत्सव को रूप मनाते हैं, जो जनता की भागीदारी है वो भी इसमें पूरी होती है। और दूसरा, जो हमारी धरती है उसका जो हमें बोलते हैं कि ग्रीन कवर, उसका बढ़ाना है ताकि ये जो हमारा हैबिटेट है, ये जो क्लाइमेट चेंज है या ये जो हमारा परिस्थिति है, इसको कंजर्व करना है, इसका सतत विकास होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए जब हम लोग ये मानते हैं कि किस प्रकार से सरकारें जो हैं वो, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कैंपा के रूप में बहुत सी जगह में प्लांटेशन होता है, ग्रीन इंडिया मिशन के रूप में प्लांटेशन होता है, आजकल बहुत अच्छा सिस्टम चला है, शहरों में पेड़ों की बहुत ही कमी हो रही है जिससे कि सांस लेने की मुश्किल हो रही है, बहुत सा पॉल्यूशन या जो इसमें प्रदूषण जो है हवा में कण के रूप में है या गैस के रूप में है, तो वहां पर बहुत सी स्कीम्स चल गई हैं अब, और वृक्षारोपण अपनी भागीदारी कर सकते हैं। और बहुत सी आजकल ऐप भी चल पड़ी हैं इसमें, जैसे कि माई भारत या ग्रो ट्रीज या संकल्प तरु, उनके साथ में हम लोग जुड़ सकते हैं और हम अपना इसमें बहुत सा योगदान वन महोत्सव के रूप में दे सकते हैं। तो जब ये 1950 में शुरू हुआ था और अभी तक ये चल रहा है, और हम ये मानते हैं कि जो प्लांटेड फॉरेस्ट है उससे लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है उसमें हमें क्रिएटेड फॉरेस्ट बना चुके हैं, जो कि टोटल फॉरेस्ट का लगभग 14% है जो भारत वर्ष में है। और यदि हम पूरे संसार में देखें, 2020 तक हम लोगों का क्रिएटेड फॉरेस्ट या प्लांटेड फॉरेस्ट जो था वो 7% था, जो कि आज 2026 में जो क्रिएटेड या प्लांटेड फॉरेस्ट है जिसमें वृक्षारोपण जो किया गया है, चाहे वो वन महोत्सव के रूप में किया है चाहे उसके बाद में किया गया है, और उसको उन पौधों को फिर मेंटेन भी किया गया है, तो वो लगभग 8% है। इसमें हमें ज्यादातर जो पेड़ हम लोग लगाते हैं वो टिम्बर के रूप में, जिसके कि पेड़ जो तैयार होता है उसे घर बनाते हैं। दूसरा, हम लोग जो है फॉडर के रूप में, जिससे चारा मिलता है जिन पत्तियों से, तो उन पेड़ों को लगाते हैं। या हम लोग मैन्योर के लिए, जो जैसे हमने देखा होगा नीम की पत्ती जो है बहुत सी जगह में यूज होती है, तो इस प्रकार के पौधे लगाते हैं जिससे कि मैन्योर तैयार हो। या ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग NTFP जो कि हमारे लघु वन उपज जो तैयार होती है उस प्रकार के पेड़ लगाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि फूड एंड फ्रूट, जो खाद्य एवं फल के पेड़ जो हम लोग लगाते हैं वो भी हम लोग वृक्षारोपण के रूप में लगाते हैं या लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा जो खाद्य पदार्थ, चाहे वो मनुष्य को मिले या जंगली जानवरों को या पालतू जानवरों को मिले या बहुत से पक्षी हैं वो उनको खाते हैं, तो इनको हमें लगाना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और इसमें बताना चाहूंगा कि हम लोग पहले वन विभाग या जो भी वृक्षारोपण के कार्य होते थे, वन महोत्सव के रूप में होते थे या उसके बाद में भी जो भी वनीकरण होता था, उसमें हम लोग सीधे पेड़ लगाते थे, फल के रूप में भी लगा देते थे, परंतु सरकार ने यह तय किया कि कुछ हम पौधे जो हैं एक निश्चित संख्या में तय कर दें, तो यह तय किया गया है पौध हम रोपण करेंगे उसमें 20% जो है फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि वो लोगों के भी काम आएंगे और वहां पर जानवरों के भी काम आएंगे, वहां पर वर्ड्स के या पक्षियों के काम भी आएंगे। तो हमें वन महोत्सव के रूप में बहुत अच्छे जो वृक्ष हैं वो लगाए जाने चाहिए, और वो जो लगाए जाते हैं, अर्जुन, जामुन, बरगद, पीपल, महुआ, नीम, पिलखन आदि जो पौधे हैं, ये जो कि स्थानीय बहुत लंबा चलते हैं और स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से इनको चूज किया जा सकता है, इनको सेलेक्ट किया जा सकता है और फिर इनको लगाया जा सकता है। फ्रूट के रूप में हम लोग घर के आसपास के पेड़ जरूर हमें लगाने के लिए आवश्यकता है। आज इस बार का जो मोटो है वो है डेट का, तो जितने भी हमारे सूखा क्षेत्र है उसमें डेट का पौधा जो है वो लगाया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से हम लोग जो ये वन महोत्सव के रूप में जो 1 से 7 जुलाई तक का जो मोटो है उसको हम मनाएं, आपस में लगाएं और एक इकट्ठा होकर हम संकल्प लें कि हमारी जो धरती है जिसकी की उर्वरकता जो है वो कम होती जा रही है, बहुत सी जगह में इरोजन या भू कटाव होता है, उसके लिए हम रोकें और उसकी उर्वरकता जो है या उसकी फर्टिलिटी जो है उसको बढ़ाएं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं इस वर्ष का जो मोटो है इसको जरूर हम आगे लेके चलें, ताकि हम लोग पर्यावरण संरक्षण भी करें और प्रदूषण का नियंत्रण भी करें, और साथ में हमें चाहे वो चारा पत्ती के रूप में है, चाहे फल के रूप में, चाहे फूड के रूप में है, चाहे NTFP या जो कि हम लघु वन उपज के रूप में है, जो कि दवाइयों के रूप में हम लोग अपने आप को जो नेचुरल मेडिसिनल सिस्टम है, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको हम बढ़ावा दें।
1: अभी आप सुन रहे थे मन महोत्सव सप्ताह पर जानकारी, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर SD सिंह, और बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही कि अगर हमें पृथ्वी को बचाना है और प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो बहुत ही ज़रूरी है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, और पेड़ हमें फल देते हैं, छांव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, औषधियाँ देते हैं, सब कुछ हमें पेड़ों से मिलता है, तो हमें भी हर मेड़ पर पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जहाँ एक तरफ

होगी, हरियाली होगी, वहीं अतिरिक्त आय भी हमारे किसान भाइयों की हो सकती है। तो अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाने चाहिए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाना चाहिए। और अब कार्यक्रम में करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं रागनी, और कलाकार होंगे कोमल चौधरी और सुरेश चंद गोला।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे कोमल चौधरी और सुरेश चंद गोला की आवाज़ में ये महाभारत का किस्सा। और अब आगे बढ़ते हैं प्रियंका बहन और सुनवाते हैं एक जानकारी अपने भाइयों को कि बदलते मौसम, संतुलित पोषक आहार और स्वच्छता। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
1: हमारे बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और कहते भी सही है कि जो हम पौष्टिक आहार खाएंगे उसी से तो हमारा तन अच्छा होगा। और जब मौसम बदलता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं, बदलता मौसम, संतुलित और पौष्टिक आहार। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रितु सिंह, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र ऊजवा, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: सभी को मेरा नमस्कार।
1: आज जब हम बात करते हैं बदलते मौसम में, तो देखिए रितु जी, जब भी हम घर गृहस्थी के काम करते हैं तो हर माँ ये चाहती है कि उसका परिवार स्वस्थ रहे और पूरे स्वच्छता का भी वो ध्यान रखती है। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम का आरंभ यहीं से करूंगी कि जब हम खाना बनाएं तो स्वच्छता का हमारी बहनें कैसे ध्यान रखें।
2: हमारा जैसे शरीर स्वस्थ तभी होगा अगर हमारे पास स्वच्छता होगी
1: जी।
2: तो चाहे वो घर के, क्योंकि और ये शुरुआत हम अपने घर की रसोई से ही कर सकते हैं
1: जी।
2: कि अगर आपने स्वस्थ हाथों को साबुन से धो के फिर आप खाना पकाएंगे तो हमारी जो बीमारियां हैं बच्चों में या बड़ों में फैल जाती हैं खाने के बाद भी, तो यही कारण होते हैं। हमने अगर हमारे बर्तन अगर साफ नहीं है, अच्छे से धुलाई नहीं हुई है, तो हमने अपना स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा है। हमने अपने बाल अगर बांध के नहीं किचन में काम कर रहे तो वो भी चला जाता, वो भी स्वच्छता की ही निशानी है
1: जी।
2: तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता के साथ स्वस्थता तभी होगा जब दोनों एक साथ चलेंगे, मतलब बराबर एक साथ चलने वाली है स्वच्छता भी और हमारा स्वास्थ्य भी
1: जी। आज से कई सालों पहले तक तो यही होता था कि पहले चूल्हे को लीपा जाता था और उसके बाद में जो है उसमें खाना बनाया जाता है
2: जी।
1: और जब से नित नए साधन आ गए हैं तो हमारी बहनें भी थोड़ी सी हो सकता है लापरवाह हो गई हैं
2: जी।
1: हम यही चाहेंगे कि हमारी बहनें जो है वो इस बारे में लापरवाही ना बरते और जो स्वच्छता है उसका अधिक से अधिक ध्यान रखे। जब मौसम बदलता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, तो ऐसे में जो आहार है वो कैसे हमें स्वस्थ रखने का काम करेगा।
2: हम अभी गर्मी में थे, फिर मॉनसून आया, मॉनसून भी अब हमारा जा रहा है और अब इसके बाद हम थोड़ा सा सर्दी की तरफ जाएंगे
1: जी।
2: तो इस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसी समय पे आपके, क्योंकि जो तापमान होता है कीटाणुओं के लिए बड़ा परिपक्व होता है जिसमें खूब पनपते हैं वो, तो इसी समय जैसे मच्छर हैं, मक्खियां बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि उनके पनपने का यही समय होता है। तो इस समय पे हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, कि ये सब हमें बीमारियां ना हो, तो हमें अपने खाने का बहुत जरूरी ध्यान रखना है
1: जी।
2: तो आपका जो भी, आपका सबसे पहले कि आपने ताजा खाना ही, उतना ही खाना बनाए जितना आपका इस्तेमाल हो जाए एक बार में, उसको रखे ना बहुत देर तक क्योंकि इन कीटाणु बहुत जल्दी पनपने लग जाते हैं अगर आपने वो खाना रख दिया कि आप सोचे कि रात को खा लें या सुबह खा लें, ऐसा ना करें। तो ये क्योंकि मौसम बदलता मौसम है, इस समय का जो तापमान है, मैंने बताया कि जीवाणुओं के लिए, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते, मक्खी मच्छर हमें दिखाई दे जाते पर सूक्ष्म कीट जो हमें दिखाई नहीं देते, तो वो इस समय बहुत जल्दी से आ जाते हैं। मान लीजिए आपने रोटी रख दी, आपने घी लगी रोटी रख दी, तो आप अगले दिन तक देखेंगे उसमें हरा हरा आपको धब्बे दिखाई देंगे, तो वो फफूंद है, फंगी जैसे बोलते हैं, तो वो पैदा हो जाती है। तो इसीलिए जितना आप खाएं, जितना आप खाना हो उतना ही बनाएं और फिर आपने ध्यान रखना है कि क्या आप खाएं, क्योंकि आपका मौसम बदल रहा है। तो हम अभी तक ठंडा पानी पीते थे, तो आपको पानी, आपका जो तापमान है तो वो आपको जो नॉर्मल तापमान पे पानी होता है उसका सेवन करना शुरू कर दें, क्योंकि गला बुखार इस समय काफी चढ़ता है और बुखार जो हमारा ज्यादातर गले से ही होता है
1: जी।
2: तो इस समय ये ध्यान रखने के ठंडा चीजों का सेवन ना करें
1: जी। आहार
2: जी,
1: और एक होता है पौष्टिक आहार
2: जी।
1: तो मैं यही बात करना चाहूंगी आपसे कि पौष्टिक आहार क्या है
2: जी। पौष्टिक आहार एक ऐसा आहार जो हमारे पास होता है, बस हमें ये पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या पौष्टिक तत्व है। तो पौष्टिक आहार ऐसा आहार है जिसमें सभी प्रकार के जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं, जो हमारे पांच प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं, आपका ऊर्जा है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज है, आपका विटामिन है और पानी, ये हमारे पौष्टिक तत्व हैं। तो एक ऐसा आहार जिसमें ये सब चीजें शामिल हों वो एक पौष्टिक आहार कहलाता है। तो हमें ये मिलता कहाँ से, जैसे ऊर्जा की बात करें तो ये हमें अनाज से, मोटे अनाज से आपका इनसे मिलता है, या जड़ वाली कंदमूल जैसे आपका आलू है, शकरकंदी है, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमें दालों से, दूध से। अगर हम मांस मछली खाते हैं तो मांस से, मछली से, अंडे से, इनसे प्रोटीन हमें मिलता है। साबुत दालों से, इनसे मिलता है। फिर आपका तीसरा आता है कि खनिज और विटामिन। ये हमें सारे सभी प्रकार के, जो हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, उन सब में पाया जाता है। तो इनका सेवन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इन हमारी ऊर्जा और प्रोटीन के साथ, क्योंकि ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देती है
1: जी।
2: तो इनका हमारे भोजन होना बहुत जरूरी। फिर वसा, जो है चिकनाई जिसे हम कहते हैं, जो कि हम घी तेल जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इनमें पाया जाता है, जो कि हमें होता है कि नियंत्रित मात्रा में इनका इस्तेमाल करना, पर लेना जरूर है
1: जी।
2: और उसके बाद आपका पानी। तो ये हमारे सब भोजन में शामिल होने चाहिए, जो कि एक पौष्टिक आहार और संतुलित आहार जो हम बात करते हैं वो पूरा करता है
1: जी। बात जब चलती है आहार की, जब घी की हम बात करते हैं, तो आजकल हर कोई जो है कहता है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ और घी का जो है वो सेवन मुझे नहीं करना है, या वो जो रोटी पर जैसे हम पहले घी रखकर खाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिया।

0: तो क्या ऐसा करना ठीक है?
1: नहीं, बस ये है कि कोई भी चीज का हम जो सेवन करें बहुत जरूरत से ज्यादा ना करें
2: जी,
1: एक लिमिट में यानी कि नियंत्रण में करें। अगर आप एक एडल्ट आदमी कहूंगी या एडल्ट महिला कहूंगी, एक दिन में अगर वो 2 चम्मच देसी घी भी खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है
2: जी।
1: तो 2 चम्मच का मतलब है 2 चम्मच, यानी कि आधी कटोरी नहीं, आधी कटोरी लेंगे तो नुकसान है
2: जी।
1: तो एक नियंत्रित मात्रा में लिया जाएगा तो बहुत अच्छा। और यही नहीं, सिर्फ वसा में हम कहते हैं कि आपको एक ही प्रकार के घी पे निर्भर नहीं रहना, हमारे भोजन में सभी प्रकार के जो तेल हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। आपका सरसों का तेल भी इस्तेमाल होना चाहिए, तिल का तेल इस्तेमाल होना चाहिए, या आपका सोयाबीन का तेल है वो इस्तेमाल होना चाहिए, और साथ में घी भी इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा सभी, आपने सब्जी आपने तेल में बना ली, घी आपने रोटी पे लगा ली
2: जी,
1: दाल आपने तेल में छौंक दी, इससे होगा कि आपको तीनों प्रकार के तेल, आपको जो वसा है वो मिल गई।
0: ये एक ही दिन में करें या महीने का?
1: ये रोज, ये रोज के खाने में आपको ऐसे करना है
2: जी।
1: हम संतुलित की जब बात करेंगे तो हमें सभी चीजों को शामिल करना होगा, पर थोड़ा थोड़ा।
0: रिफाइंड तेल की हम बात करते हैं, उसमें भी मैंने कई जगह पढ़ा है कि हमें रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है, तो यहाँ हम क्या कहना चाहेंगे?
1: रिफाइंड तेल आपका क्या है, आपका नाम इसको रिफाइंड दे दिया गया है, ये हमें सब्जियों या हमें उनसे सब्जियों से ही मिलता है, मतलब जैसे आप या तिलहन जो हमारी फसलें होती हैं उनसे मिलता है या दलहनी फसलें उनसे मिलता है
2: जी।
1: तो आपका जैसे सोयाबीन का तेल है इसको भी रिफाइंड बोलते हैं, जब तो सोयाबीन हमारा एक मतलब कह लीजिए दाल है और तिलहन भी है, दोनों है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपका अगर मैं बताना चाहूंगी तो 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो मतलब वैसे भी किया जाए खाने के रूप में, दाल के रूप में भी, पर तेल में भी इसका किया जाता है। ऐसे फिर आपका सूरजमुखी का तेल है, इसको भी रिफाइंड तेल कहा जाता है। आपका जो नारियल तेल है वो भी आपके नियंत्रित मात्रा में, उसमें थोड़ी वसा चिकनाई ज्यादा होती है, पर उसको कहा जाता है कि थोड़ा सा लिमिट में करके खाएं, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है रिफाइंड तेल का भी अपने भोजन में इस्तेमाल करने से
0: जी। खेत खलियानों में जब हम काम करने जाते हैं, चाहे हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं चाहे हमारे महिलाएं हैं, तो उस समय उनको लगता है कि आहार कुछ अधिक सेवन करना चाहिए, या उनके जो आहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो संतुलित भी रहे, पौष्टिक भी मिले, और साथ साथ जो स्वच्छता रखे तो बीमारियों से भी दूर रहे।
1: क्योंकि हमारे काम के आधार पे हमारे खाने की पूर्ति हमें करनी चाहिए
2: जी।
1: जो बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उनमें आपकी ऊर्जा और प्रोटीन और वसा इनकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाती है
2: जी।
1: जो मतलब रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, कोई गृहिणी है कि खाना पकाया, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब तो ये रोजमर्रा के काम होते हैं, तो इसमें हमारा जो जरूरत है वो थोड़ी कम हो जाती है ऊर्जा और प्रोटीन की। ऐसे ही फिर और जो कम काम करते हैं उनका और कम हो जाता है। तो खेत खलिहान में काम करने वाले की बात करें, क्योंकि उनको वो आपका कहेंगे कि शारीरिक काम उनका ज्यादा है
2: जी,
1: तो शारीरिक काम अब जब ज्यादा होगा तो हमें ऊर्जा और प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होगी
2: जी।
1: तो हमें अपने भोजन में अनाज का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, प्रोटीन रिच जो भी चीजें हमारी दाल हो, चाहे हमारा आपका दूध हो, दही हो, लस्सी हो, छाछ हो, इनका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना होगा, ताकि वो जो उनकी जरूरत है एक शारीरिक काम करने की वो पूरी हो सके, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। और ये सब चीजें जो हम लेके जाते हैं या बनाते हैं तो उसमें स्वच्छता भी साथ में ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस बर्तन में बना रही हूँ। तो जब भी हम रसोई घर में जाएं तो सबसे पहले अपना हाथ साबुन से अच्छे से धोकर जाएं
2: जी।
1: खूब दिखाया जाता है प्रचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी काफी बताया जाता है कि हाथ कैसे धोना है, तो वो सब भी वो जरूर बहुत कहेंगे बेसिक सी चीज है, पर अगर वो नहीं हुई कि 30 सेकंड तक अगर आपने हाथ नहीं अच्छे से साबुन से धोया तो आपके हाथ में कीटाणु रह जाते हैं
2: जी।
1: तो बहुत छोटी सी चीज है पर बहुत एक गहरा कहेंगे कि वो छोड़ के जाती है छाप,
0: अहम भूमिका
1: निभाती है बिल्कुल। तो इसीलिए इसके साथ में स्वस्थ भी आपने रखना, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से खाना बनाया और फिर भी आप बीमार पड़ गए तो सारी मेहनत हमारी केकर में पानी फेर दी, कि हमने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा
0: जी। और अब बात आती है उम्र पर, क्योंकि जो भी खाना है वो उम्र के अनुसार ही खाया जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: जो बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसके बाद जो बढ़ते हुए बच्चे हैं वो अलग है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, क्योंकि इसमें ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसकी आप देखते हैं कि बढ़वार बहुत तेजी से होती है बच्चे का। जैसे पैदा होने पे वजन मान लीजिए 3 किलो है तो 6 महीने पे उसका 6 किलो हो जाना चाहिए, 9 महीने पे उसका 9 किलो, यानी कि इतनी जल्दी उसका वजन बढ़ रहा है
2: जी।
1: तो फिर ऐसे में उनकी यानी कि जरूरत ज्यादा है भोजन की, तो वो तो माँ के दूध से या ऊपर का खाना 6 महीने के बाद हम शुरू करते हैं उससे पूरी करते हैं। उनके भोजन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें उसमें ऊर्जा, प्रोटीन और वसा, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के भोजन में। उसके बाद जब 5 साल के बाद बच्चा होता है, वो भी बढ़ने वाला बच्चा होता है, तो उनके भोजन में हमें अब ऊर्जा, प्रोटीन और वसा के अलावा हमें खनिज और विटामिन भी शामिल करने हैं उनके भोजन में
2: जी,
1: ताकि उनकी बढ़वार में कोई रोक ना आ सके। किशोरावस्था में जब जाता है
2: जी,
1: तो उस समय क्योंकि इनको ये

0: पढ़ाई में भी होते हैं और आपके खेलकूद में भी
1: खेलकूद
0: होते
1: में
0: हैं, तो इस समय इनकी जरूरत और बढ़ जाती है। लड़कियों में बात करेंगे अगर, तो किशोरियों में तो इनमें आपके आपके लोहा की यानी कि आयरन की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: जी
0: और लड़कों की बात करें तो आयरन और कैल्शियम दोनों की। आयरन जो है आपका सिर्फ खून बनाने का काम नहीं करता, बल्कि आपके जो हम पढ़ाई कर रहे हैं जो उसको याद करने में भी मदद करता है।
1: जी
0: तो ये बहुत से लोगों को नहीं पता, सबको लगता है कि आयरन की कमी है, आयरन सिर्फ हमें खून बनाने के काम करता है। नहीं, आपका आयरन जो है हमारा दिमाग के लिए भी काफी अच्छा रहता है। जैसे जिनमें आयरन कमी होगी तो उनपे याद करने की क्षमता भी कम होती है।
1: जी
0: तीसरा, आपकी कोई भी स्पोर्ट्स की जो कार्य है वो पूरा नहीं कर पाते अगर आप में आयरन की कमी है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका आयरन और कैल्शियम, और ये जिसका भोजन में होना बहुत जरूरी है, तो ये जरूरी चाहिए ही चाहिए। तो इस समय इनके भोजन में ये ध्यान रखना है। फिर वयस्क हो जाता है तो उनका आपका ऊर्जा, प्रोटीन और वसा और आपका खनिज और आपका विटामिन,
1: जी
0: ये हमारी सामान्य जरूरत पड़ता है। जब उम्र हमारी ढलती है तो हमारी थोड़ी जो मात्रा है ऊर्जा प्रोटीन की, ये धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब लेना है पर नियंत्रित मात्रा में ही लेना है, क्योंकि इस समय आपको कई बीमारियां होने की भी
1: ना रहती
0: संभावनाएं
1: है।
0: रहती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें धीरे धीरे कम हो जाता है।
1: जब आपने बात की आयरन की, तो
0: जी
1: अब जो भी हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके मन में भी एक प्रश्न उठा होगा कि आयरन जो है वो किन किन चीजों में होता है, हम कौन कौन सी चीजें खाएं
0: जी
1: जिससे कि हमें रोज
0: जी
1: आयरन मिलता चला जाए।
0: हरी सब्जियां, या आप कहेंगी सब्जियों के पत्ते, फूल गोभी अब हमारा शुरू हो जाएगा तो उसके पत्ते हम फेंक देते हैं, उसमें
1: जी
0: आयरन बहुत अच्छा होता है। हम
1: अच्छा
0: सिर्फ फूल इस्तेमाल करते हैं।
1: जी
0: मूली है, मूली के पत्ते अगर हम फेंक देते हैं, मूली इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमने जो फेंक दिया वो आयरन हमने फेंक दिया। अब हम सिर्फ रेशा खा रहे हैं जो मूली हम सफेद खा रहे हैं। तो ऐसी आपकी जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं इन सब आयरन से भरपूर होती हैं। और इसके अलावा आप
1: जी
0: छिलका हटा नहीं, छिलके वाला चना, उसमें भी आपका आयरन काफी अच्छा होता है। तो इनका पर इसमें आयरन के साथ मांस में भी पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, पर जो लोग हम लोग क्योंकि शाकाहारी हैं जिसकी वजह से हमारे देश में आयरन की कमी अभी भी महिलाओं में बहुत ज्यादा है।
1: जी
0: लगभग 59% महिलाएं जो हमारी 15 से 45 वर्ष की अभी भी अनीमिया से ग्रसित हैं। तो इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि एक तो हम लोग शाकाहारी हैं, तो अब उसको हम नहीं बदल सकते, पर हम ये बदल सकते हैं कि हमने हरी सब्जियां खाई पर हरी सब्जियां पचती नहीं है पूरी तरीके से,
1: जी
0: तो आयरन हमें उतना नहीं मिल पाता। तो उसकी पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी
0: विटामिन सी कैसे? आप अमरूद, नींबू, अब मौसम बदल
1: आंवला
0: रहा है, अब आंवला शुरू
1: आंवला
0: हो रहा है।
1: जी
0: विटामिन सी का सबसे घनिष्ठ कहूंगी स्रोत है आंवला।
1: जी
0: किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल करें, चटनी के रूप में, अचार के रूप में, सुखा के, आप चूर्ण बना के, किसी भी रूप में, इस मुरब्बा, कैंडी, किसी भी रूप में कर सकते हैं। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसको हम भोजन में शामिल करें। जब भी हम हरा साग खा रहे हैं या दाल में पालक डाल के खा रहे हैं तो उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ लें। तो विटामिन सी आपको क्या करता है कि आयरन को, पाचन को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे 20% अगर मेरा पचता था तो
1: जी
0: मेरा अब 40% बढ़ेगा,
1: जी
0: तो इससे फर्क पड़ जाता है।
1: डॉक्टर साहब, एक और बात, जब
0: जी
1: हमारे बच्चे हमें बोलते हैं कि ये प्रोबायोटिक फूड खाना है,
0: जी जी
1: तो कई
0: जी
1: बार माएं कहती कि भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम अंग्रेजी के शब्द लेकर आ
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हो,
0: जी जी
1: तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये प्रोबायोटिक फूड अगर की बात की जाती है
0: जी
1: तो ये क्या है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों लाभदायक है?
0: प्रोबायोटिक कुछ नहीं, आप जैसे हम जो दही जमे, जैसे कुछ हमारे बैक्टीरिया हमारे दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं,
1: जी
0: तो प्रोबायोटिक हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, हमारे पेट को। तो ये हमारा जो हम दही जमा रहे हैं, जो हम लस्सी पी रहे हैं, इन सब में आपका प्रोबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक ही है
1: जी
0: और कुछ नहीं है। और कुछ आपको बाजार से लेने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही, आप रोज दही जमाते ही हैं, लस्सी बनाते ही हैं, चाहे छाछ बनाते ही हैं,
1: जी
0: तो इन्हीं का इस्तेमाल करें भोजन में और बच्चों को भी दें तो प्रोबायोटिक ही है वो। तो
1: जी
0: इसलिए कोई वो नहीं है कि आपने बाजार से खरीद के लाना तो वही प्रोबायोटिक है, आप घर में बना रही इतने सालों से तो वही आपका प्रोबायोटिक
1: जी
0: ड्रिंक।
1: कोई भी बच्चा है या बड़ा है, वो अगर बार बार खाना मांगने की बात करे तो उस समय पर हमें क्या खाना चाहिए?
0: उस समय पे आपको जो भी हमारे पास, देखिए खाने की काफी ऐसी चीजें हैं, मतलब जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखी जाए तो आजकल आपका मोटे अनाज भी हम देख रहे हैं काफी अच्छा, मतलब लोगों को पता लग रहा है क्योंकि काफी पौष्टिक है।
1: जी
0: तो भून के आप इनका नमकीन बना सकते हैं, आप इनको पीस के चकली जैसे आता होता है आपका नमकीन नाश्ता के रूप में, या हल्के चलता फिरता स्नैक के रूप में ले सकते हैं। इसके बिस्किट बनने लग गए हैं,
1: जी
0: इनके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपका पास, हमारे पास चावल का मुरमुरा होता है, आपका चावल का चिड़वा होता है, इसको
1: जी
0: पोहे के रूप में या रोस्टेड, मतलब भुना हुआ नमकीन के रूप में, इसमें आपने प्याज टमाटर डाल लिया तो एक आपकी भेलपुरी बन जाती है। तो भुना

0: चना है, इनको इस्तेमाल करेंगे तो एक पेट भी भरेगा और साथ में हमारी सेहत को भी अच्छा करेगा। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग शामिल कर सकते हैं।
1: खाने को हमें संतुलित भी बनाना है, पौष्टिक भी रखना है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम ये कि हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आई और हमें इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी बदलते मौसम में संतुलित पौष्टिक आहार और स्वच्छता। जानकारी दे रही थी डॉक्टर रितु सिंह और बातचीत कर रही थी कमलेश मुतकल। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ 3रे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य

0: प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। देखिए प्रियंका बहन, आज हम अपने भाइयों को जानकारी तो देंगे ही, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी कराएंगे और एक जानकारी भी उनको दिलवाएंगे। जो हम आज चर्चा करेंगे उसका विषय है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कमज़ोर वर्ग और गरीब वर्ग के जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो हमारे भाई हैं, वो इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, इस योजना के तहत एक बड़ी आबादी को अत्यधिक रिवायती दरों पर गुणवत्ता पूर्वक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, जिससे कि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिसमें सस्ता अनाज है। इसके तहत ही अंत्योदय अन्न योजना भी शामिल है, जिसमें कि 35 किलो अनाज मुफ्त गरीब परिवारों को दिया जाता है। और पोषण सहायता के लिए गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी अलग से इसमें भत्ता दिया जाता है। साथ ही बच्चों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी है। और इसमें राशन कार्ड के जरिए भी परिवार को, जिसमें 18 वर्ष और इससे अधिक के लोग हैं, उसका राशन कार्ड बनता है और उसके जरिए भी अन्न उनको प्रदान किया जाता है।
0: बिल्कुल, राशन कार्ड की अगर आपने बात कही तो जो हमारे भाई हैं उनको 2 किलो गेहूँ प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाता है, और जो हमारे कम गरीबी रेखा से नीचे वाले भाई हैं उनको 18 किलो अनाज मुहैया कराया जाता है। और इसके लिए आपको जो हमारे भाई हैं उनको EKYC योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार लिंक और EKYC प्रक्रिया के अनिवार्य जो दस्तावेज हैं उनको से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उससे नहीं जुड़ेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल, योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजीकरण कराते वक्त आप अपने सारे दस्तावेज साथ रखें।
0: जी हाँ।
1: और देखिए, अगर हम बात करें खाद्यान्न की, तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसलें भी अच्छी हों, और उनकी फसलें अच्छी हों, कम लागत में उन्हें अच्छा मुनाफा मिल पाए, इसके लिए हम एक खास जानकारी उनके लिए लेकर आए हैं।
0: जी हाँ, और जानकारी का विषय है खरीफ फसलों में कम लागत और अच्छा उत्पादन। डॉक्टर VK तिवारी से बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, आप फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसमें अच्छा बीज खरीदते हैं और खेत में अच्छी से कृषि क्रियाएं करते हैं। उसके साथ साथ आप उर्वरक हैं, आप उसमें दवाएं हैं, सभी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादन तो आपको मिलता है लेकिन आपकी लागत बढ़ जाती है। ये लागत

0: कैसे कम की जाए और आपका उत्पादन भी अच्छा मिले, इस पर आज हम बात करेंगे। और विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीके तिवारी जी, जो कि संयुक्त महाप्रबंधक रह चुके हैं क्रिभको में। तिवारी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अब खरीफ में बिजाई की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बात सही है कि किसानों की लागत बढ़ती है जब भी कोई भी फसल लगाते हैं, तो वो कैसे कम की जाए और उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिले।
1: कि कैसे हमारे किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करें। अब आप देख ही रहे हैं, इस समय महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद बीज का दाम बढ़ता जा, जो बीज है उनका प्राइस बढ़ता जा रहा है, और जैसा इस समय वैश्विक संकट चल रहा है, खाद की भी उपलब्धता भी तो वैसे प्रचुर मात्रा में है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने सभी किसान भाइयों से, सभी लोगों से अनुरोध किया है कि इस समय की स्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाई फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें, खाद का उपयोग कम करें, और जैविक खेती या परंपरागत खेती भी कुछ करें। तो हम इसमें सलाह देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जैसे आपको कुछ भी बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये ब्लड का टेस्ट करा लो। ऐसे ही हमारे किसान भाई हैं, इस जो धरती माता है इनसे फसलें उगाते जा रहे हैं, लेकिन धरती माता की स्थिति क्या है, कितना खुराक को पौधे को उपलब्ध करा पाएंगी, कितना नहीं करा पाएंगी, क्या क्या स्थिति है हमारे जमीन में पोषक तत्वों की, उसका जरूर किसान भाई मिट्टी की जांच कराएं, और उससे उनको पता चल जाएगा कि हमारे मिट्टी में कितना इस समय पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता है, कितना नाइट्रोजन उपलब्ध है, कितना फास्फोरस उपलब्ध है, कितना पोटास उपलब्ध है, और जो मुख्य गौण तत्व तो है, जिंक है, आयरन है, उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर मिट्टी की जांच कराए बिना ही अंदाजे से जब हमारे किसान भाई डालते हैं उर्वरक, तो उससे क्या होता है कि एक तो मिट्टी में जा करके ये जो उर्वरक होते हैं मिट्टी की संरचना को प्रभावित करते हैं, उसके जैविक जो मिट्टी का कीटाणु है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ ही हमारे किसान भाइयों की लागत भी बढ़ जाती है। तो हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, अभी मई जून 2 महीना है, और इस समय हमारे किसान भाई लोगों का खेत खाली है, और किसान भाई अपनी मिट्टी का जरूर से जांच कराएं, और मिट्टी का नमूना लेकर के उनके जिले में मृदा परीक्षण केंद्र होता है कृषि विभाग का, वहां भेज दें, या जो हमारी क्रिप्को संस्था है नोएडा में ऑफिस है वहां भी वो किसान भाई अपना कोरियर से किसान सेवा केंद्र पर भेज सकते हैं, और वहाँ निःशुल्क उनकी जांच हो करके उनको मेल के माध्यम से मृदा की रिपोर्ट मिल जाएगी।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, आपने जिस तरीके से मृदा परीक्षण की बात की, तो मृदा परीक्षण कराने के लिए किसान भाई जो सैंपल लेते हैं,
1: जी,
0: सैंपल लेते समय क्या सावधानी रखें?
1: किसान भाई हमारे मिट्टी का नमूना लेने के लिए क्या सावधानी रखें, ये सही बात है कि हमारे किसान भाई ऐसा ना करें कि जो होता है ना खेत की चौहद्दी मेढ़ मेढ़ के पास से ही एक जगह से मिट्टी निकाल करके दे दिए, तो उससे पूरा खेत का, अब जितना बड़ा खेत है उसकी सही एनालिसिस नहीं हो पाएगी, सही जांच नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ये है कि किसान भाई हमारे जैसा खेत हो उस खेत के हिसाब से जो मेड़ होती है उनकी, उस मेड़ से लगभग अपना 3-4 फुट छोड़ करके, और खेत में लगभग ऐसा करें कि अगर छोटा खेत है तो 5-6 जगह, और बड़ा खेत है तो 8-10 जगह से, अगर गन्ने की खेती करना है तो 9 इंच तक का, और जनरल खेती करना है धान गेहूं का तो 6 इंच तक की मिट्टी को ऐसे करेंगे कि खुरपी लेकर के एक गड्ढा खोद लें, और ऊपर से खुरपी को लगाएंगे और नीचे तक ले जा करके उस मिट्टी को उस गड्ढे में घर लें।
0: गड्ढा भी आकार का
1: हाँ,
0: बनाए।
1: गड्ढा भी आकार का गड्ढा बनाएं, और उस गड्ढे में ऊपर से खुरपी लगा करके नीचे तक का मिट्टी पूरा इकट्ठा कर लें, और वो जो 9-10 जगह जहाँ से उन्होंने सब मिट्टी लिया है उन 9-10 जगह की मिट्टी एक साथ मिला लें, और आपस में खूब अच्छी तरह से मिला करके उस मिट्टी को ऐसा करें कि कई भाग करते जाएं, और जब लगभग आधा किलो तक हो जाए तो उस आधा किलो की मिट्टी की थैली को अपना मिट्टी की थैली में भर लें, और भर करके अपना मृदा परीक्षण केंद्र पर लेते जाएं, या जैसे हम आपको बताएं कि या अपने जिले में मृदा परीक्षण केंद्र पर लेते जाएं, तो वहां पे जांच होने के बाद इनको किसान भाई को नमूने से ये मिल जाएगा कि हमारे खेत में कितना पोषक तत्व है और फसल के लिए उनको कितना खाद डालना है।

0: अब हमारे जब किसान भाई करेंगे तो उस मिट्टी के नमूने के जांच में सबसे बड़ी बात ये रहती है, हमारे किसान भाई अपनी सुविधा के लिए केवल यूरिया डाई पोटास तो देख लेते हैं, लेकिन उसमें जो गोबर की खाद की संस्तुति की जाती है उसको नहीं डालते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि जो फार्म यार्ड मैन्योर का जो रिकमेंडेशन किया जाता है सॉइल लैब द्वारा, उसको जरूर प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि अभी जो हमारे खेत में कार्बन की स्थिति दिन पर दिन कम होती जा रही है, और कार्बन कंटेंट कम होने से क्या होता है, कार्बन जो है ये हमारे खेत के जीवाणुओं को एक तरह से पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हमको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये जो कार्बन है उन जीवाणुओं का, उनके लिए ये पोषक तत्व का काम करता है कार्बन। और कार्बन सही मात्रा में उपलब्ध होने से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में हवा की उपलब्धता सही रहती है, हवा की उपलब्धता सही होने से हमारे जो खेती होती है उसमें मृदा जनित रोग नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें हवा का संचार प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है। और किसान भाई सिंचाई करते हैं तो उसमें मिट्टी में जल रुका रहता है, जिससे पौधों को काफी समय तक नमी प्राप्त होती है। जो हम पोषक तत्व डालते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं, तो घुल करके लीचिंग मतलब बह करके जमीन के सतह से नीचे नहीं जाता है, वो मृदा में उपलब्ध होता है, जिससे पौधों को सही मात्रा में उर्वरक मिल पाता है। तो जो हम इतना महंगा उर्वरक डालते हैं वो हमारी जमीन में नुकसान न होकर के पौधों को उपलब्ध होता है, तो इससे हमारी उत्पादन लागत कम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्पादन लागत कम होती है, तो हमारे किसान भाई जो रासायनिक उर्वरक हैं, जिनके वैज्ञानिक कभी कभी सुझाव देते हैं, और जो लागत को कम कराने के लिए दूसरे भी माध्यम हैं, जैसे जैविक खाद हो गई, आपके बायोफर्टिलाइजर हो गए, आपकी हरी खाद हो गई, इनका भी तो प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे हम बताए आपको कि मृदा परीक्षण में जो ये खाद की संस्तुत की जाती है, उसके अलावा भी धान में बहुत अच्छा रिस्पांस देखा गया हरी खाद का, के लिए सनई ढांचा जो होता है अभी इसको छिटक करके खेत में बो दें, और जब ये लगभग 35 से 45-50 दिन की हो जाएगी तो इसको खेत में अपना ट्रैक्टर चला करके दबा देंगे और पानी भर देंगे, तो उससे वो क्या होगा कि हरी खाद खेत में सड़ करके खाद हो जाएगी, और ये हमारी मिट्टी के लिए एक समझिए कि बहुत ही अच्छा काम करेगी, वरदान हो जाएगा, एक जैविक खाद हरी खाद अपना पौधे को उपलब्ध होगी, और हमारे मिट्टी की स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और जो हम इसमें उर्वरक डालेंगे आगे चल करके वो भी पौधे अच्छी तरह से ले पाएंगे। और जब हम उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो चूंकि हम हरी खाद का प्रयोग कर लिए हैं, तो हम जो रासायनिक उर्वरक है उसकी मात्रा को हम 15-20% तक कम कर सकते हैं, तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जब हम बीज का नर्सरी में डालते हैं तो आजकल बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक है, एजोटोबैक्टर है, इससे एजोटोबैक्टर क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उनको उपलब्ध कराता है पौधों को। इसी तरह से PSB है, फास्फेट सालिफ्यूजाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो हम मिट्टी में इतना महंगा DAP खाद डालते हैं, पोटाश डालते हैं, वो पौधे केवल अपनी जड़ की एरिया के पास जो रहता है उसी का उपयोग कर पाते हैं। तो हम थोड़ी मात्रा में बीज को हम बेहन डालते हैं, तो इससे अगर हम एजोटोबैक्टर से, PSB से, या पोटास सालिफ्यूजाइंग बैक्टीरिया से, और जिंक सालिफ्यूजाइंग बैक्टीरिया से, इनके हम बायो फर्टिलाइजर से को जो बीज कम मात्रा में होता है इसको शोधित कर दें और इसको बोएं, तो इस बीज जब शोधित होगा तो ये जीवाणु उस बीज के परत पे लगे रहेंगे, और ये जब जमीन में की रोपाई करेंगे तो रोपाई करते समय भी जो नर्सरी होती है उसको इसका बायो फर्टिलाइजर का घोल बना लेंगे, उसकी जड़ को अपना 15 मिनट के लिए डुबो देंगे उस घोल में, उसके बाद रोपाई करेंगे, तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये जमीन में कार्यशील हो जाएंगे, और जमीन से जो हमारे उर्वरक पोषक तत्व उपलब्ध है लेकिन पौधे नहीं ले पा रहे हैं तो उनको घुलनशील दशा में बना करके और पौधे को उपलब्ध करा देंगे। तो हमारे किसान भाई जब रासायनिक उर्वरक कम मात्रा में भी डालेंगे तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, और ये जो हमारे जैविक कीटाणु हैं ये अच्छी तरीके से कार्य करेंगे, तो हमारे जो पौधे होंगे इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी और इसमें कीट पतंगे भी कम लगेंगे। ऐसा

0: देखा गया कि जो हमारे किसान भाई आजकल क्या करते हैं कि पौधे में थोड़ा सा भी इनको लगता है कि पौधा पूरा हरा नहीं दिखाई दे रहा है तो ले जाके यूरिया छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधे में बढ़वार तो अच्छी हो जाती है लेकिन पौधा में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, पौधा कोमल हो जाता है, सक्सलेंट हो जाता है और उससे हमारे कीट पतंगे और बीमारियां अधिक लगने लगती हैं। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो यूरिया का बहुत ही अधिक मात्रा न प्रयोग करें। यूरिया की मात्रा जितना मृदा परीक्षण में दिया गया है उतना ही करें या उससे कम करें और उसके जगह पे 20-25% की मात्रा इस जैविक खाद से, हरी खाद से और गोबर की खाद से इसको 25 से लेकर के 40% तक इसको सब्स्टिट्यूट करें।
1: जी डॉक्टर साहब, काफ़ी आपने विस्तार से बताया और बहुत से हमारे किसान भाई खरीफ में दलहनी फसलें भी बोते हैं तो दलहनी फसलों में तो उनकी जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं तो क्या उनके बीजों को भी उपचार चालित करके बोना चाहिए?
0: देखिए, उनके जड़ों में तो पाए जाते हैं, अगर हमारे किसान भाई कर देते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो PSB है, फास्फेट सल्फाइड बैक्टीरिया है, वो तो जमीन से हमारे जो वैज्ञानिक संस्तुति करते हैं वो दलहनी फसलों के लिए 10:40 के रेशियो में करते हैं कि 10 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस उपलब्ध कराएं, तो वो हमारे किसान भाई कर देंगे जब उनका बीज शोधन PSB से फास्फेट सल्फाइड बैक्टीरिया से, तो वो हमारे किसान भाई अगर उसकी मात्रा कम कर देंगे तो ये हमारे PSB बैक्टीरिया काम करेगा और उसको उपलब्ध कराएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया है निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई अपनी फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अपनी लागत भी कम कर सकते हैं और मृदा का स्वास्थ्य भी बनाए रख सकते हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी खरीफ फसलों में कम लागत और अच्छा उत्पादन, डॉक्टर VK तिवारी से बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और देखिए, कल हमारा फोन इन प्रोग्राम है, फोन इन कार्यक्रम है इंडियन पोटास लिमिटेड के सौजन्य से, तो 6:30 से 7:30 तक ये लगातार चलेगा और आप इसमें सीधे फ़ोन करके अपनी गन्ने की फसल के बारे में जो जानकारी आपको लेनी है वो पूरी तरह से ले सकते हैं। हमारा जो विषय है कल का वो है गन्ने की बंधाई और देखभाल, तो इस विषय पे अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे डॉक्टर, हमारे विशेषज्ञों से इस जानकारी को आप ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83। दिल्ली से बाहर के श्रोता जो हैं हमारे वो 0111 जरूर लगाएं और अपनी फसल के बारे में जो जानकारी उन्हें लेनी है वो वैज्ञानिकों से लें। तो अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं ये उपदेश योगेंद्र निमचाना की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र नेमचाना से ये उपदेश। और देखिए, हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए हमेशा आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से सरकार का भी यही प्रयास है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, कम से कम रसायनों का प्रयोग करें और मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं ताकि उन्हें पता चले कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसके अनुसार ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें।

0: अत्यधिक उर्वरकों से यहाँ मिट्टी की सेहत भी खराब होती है और लागत भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ध्यान अगर हमारे किसान भाई रखेंगे तो उनकी फसल भी बेहतर होगी और उन्हें अच्छा मुनाफा भी होगा।
1: जी बिल्कुल। और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम, राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने को हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ गजलें।

0: इसी गज़ल के साथ आपसे गज़ल के इस कार्यक्रम से मैं इजाज़त चाहूँगी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल, राजधानी में 32,000 चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बच्चों पर अत्याचार की रोकथाम के पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी एक स्पष्ट कार्य योजना के तहत विकसित की गई है। एक निजी समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने 32,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से लगभग 9,000 पहले से ही संचालित है।
9: हर व्यक्ति ईवी लेना चाहता है। वर्तमान में लगभग 9,000 ईवी चार्जिंग प्वाइंट दिल्ली में है। हमारा टारगेट है 32,000 पे लेके जाएं, और उसके लिए हमने जो आरडब्ल्यू है, सोसाइटीज हैं, जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि हर एक जगह पर आपके ईवी के चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। सरकार उसमें पूरी मदद करेगी, सरकार पूरा सपोर्ट करेगी, मैक्सिमम ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
8: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई नीति में केवल सब्सिडी ही नहीं बल्कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन, आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास और ई वेस्ट संयंत्र स्थापित करने की कार्य योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन के स्वच्छ साधनों को अपनाना समय की आवश्यकता है।
9: ईवी पॉलिसी मुझे लगता है कि दिल्ली की वो जरूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए था। इसे हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ लेके आया, ना केवल इसमें हमने सब्सिडी दी बल्कि इसमें हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की और साथ में ई वेस्ट के प्लांट की भी हमने पूरी योजना बना करके जनता के समक्ष रखी है। आज प्रदूषण जो है दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर वो पक्ष जिसके कारण से पॉल्यूशन हो रहा था उस पर काम किया।
8: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस महीने के दौरान मनाए जा रहे बाल संरक्षण माह के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। इस दौरान श्री संधू ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों में संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ त्वरित और पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपायों को सिर्फ बाल संरक्षण माह के दौरान ही नहीं बल्कि हमेशा प्राथमिकता के तौर पर लागू किया जाए। बैठक के दौरान श्री संधू ने पहली बार अपराध करने वाले किशोरों की काउंसलिंग और पुनर्वास पर भी विशेष

0: बल दिया। उन्होंने इस महीने के अंत तक दिल्ली के सभी 5,500 से अधिक विद्यालयों में बाल संरक्षण समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि जुलाई माह के भीतर सभी विद्यालयों में मुख्य प्रशिक्षकों और अन्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पूरा किया जाए। दिल्ली पुलिस ने आज नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह एक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान लेकर नकली पहचान और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार कर उनकी आपूर्ति करता था। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आज करोलबाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। निगम ने बताया कि 41 दिनों तक चले इस सघन सफाई अभियान के दौरान जोन की सभी मुख्य सड़कों की व्यवस्थित रूप से सफाई की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे बनी नालियों और फुटपाथ से पुरानी जमी हुई धूल को हटाया गया, साथ ही ग्रीन बेल्ट से कूड़ा कचरा और सड़क किनारे पड़े मलबे को भी हटाया गया। निगम ने कहा कि इस अभियान में 22 किलोमीटर लंबी सड़कों को कवर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 228 मीट्रिक टन पुरानी धूल और 150 मीट्रिक टन कूड़ा कचरा तथा मलबा हटाया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC कल अपने क्षेत्र के 34 स्थानों पर मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव आयोजित करेगी। NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का एक अवसर है। एक रिपोर्ट।
1: NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि दिल्ली सरकार के 70 लाख वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 600 वृक्ष और 50,000 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए NDMC द्वारा 50,000 से अधिक गड्ढे पूर्व तैयार किए जा चुके हैं। श्री चहल ने बताया कि अभियान के तहत पीपल, नीम, जामुन, इमली, चंपा, अशोक, गुलमोहर सहित अनेक देशी और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिमालया, कैनी लिली, चांदरी और अन्य सजावटी एवं देशी प्रजातियों की झाड़ियां भी रोपी जाएंगी। श्री चहल ने कहा कि NDMC के लिए वृक्षारोपण केवल एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सतत जन आंदोलन है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली अगले महीने की 6 तारीख को नई दिल्ली में पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। दिल्ली सर्कल के दूरसंचार विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पेंशन भोगियों इसमें शामिल हो सकते हैं, जहां पेंशन से जुड़े मामलों जैसे कि PPO जारी करने, सेवा पुस्तिकाओं के रखरखाव और पेंशन वितरण आदि पर विचार किया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यहां अदालती मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल पंजीकृत शिकायतें ही सुनी जाएंगी। शिकायतों के निपटान के लिए पेंशन भोगी 20 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-18811 पर कॉल करके और डाक द्वारा संचार लेखा भवन के पते पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े दो अलग अलग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, पिस्तौल और खतरनाक पेट्रोल बम बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक मॉड्यूल आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था, जबकि दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: कश्मीर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करेंगे। मंत्रालय पिछले 29 वर्ष

0: से विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 51 विश्वविद्यालयों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विचारों की उचित अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
1: सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश के एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज दूरदर्शी राजनेता, राष्ट्र निर्माता और प्रतिष्ठित विद्वान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन अधिक राष्ट्र प्रेम का प्रतीक था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज शहीदी पार्क स्थित डॉ मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया था।
3: डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस देश की अखंडता का सर्वस्व न्योछावर किया, 75 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कहा वो सपना पूर्ण हुआ और धारा 370 को जड़मूल से समाप्त किया गया और कश्मीर के आवाम को एक नई सुबह देखने का अवसर मिला। आज पूरा देश डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने के पश्चात एक आत्मसंतुष्टि का भाव हमारे मन में है।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के आदर्श राष्ट्र निर्माण, सुशासन और जनसेवा के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी आज भी उस नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने सत्ता से ज्यादा राष्ट्र को महत्व दिया और अपने प्राणों की आहुति देकर एक राष्ट्र एक विधान का संदेश दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समितियां बनाई गई हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल, राजधानी में 32,000 चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बच्चों पर अत्याचार की रोकथाम के पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका में। स्टूडियो की घड़ी ने बजा दिए हैं रात के 8 और आ चुकी हूँ मैं लेकर कुछ चुनिंदा गीत देने आपका साथ। और आज की गीत मालिका के इस रोलर कोस्टर राइड में आपके साथ हूँ मैं, आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति। तो पहले खास आपके लिए, स्पेशली फॉर यू, ये गीत और फिर करेंगे हम मिलकर थोड़ी सी बातचीत।

कहते हैं कि ये जो प्यार की शुरुआत है ना, ये एक छोटे से आओ ना से होती है। जैसे कि आओ ना तुम भी बैठो, आओ ना चाय पीने चलते हैं, आओ ना वहाँ साथ चलते हैं। और फिर कब वो मुलाकातों, मुस्कुराहटों और ढेर सारी यादों का दौर बनता चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इस गीत में आपने उस प्यारी सी

मासूम सी पुकार को महसूस किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब दो दिल सच में एक दूसरे का साथ चुन लेते हैं ना, तो फिर मंजिल नहीं सफर मायने रखता है, और उस सफर में बस चार कदम नहीं पूरी जिंदगी साथ चलने का एहसास छुपा होता है। तो आइए बढ़ाते हैं इसी खूबसूरत से एहसास को थोड़ा और आगे, बनाते हैं इसी एहसास को थोड़ा और खास।

दोस्तों कभी कभी ना प्यार की सबसे खूबसूरत बातें शब्दों में नहीं बल्कि साथ निभाने से कही जाती हैं। लेकिन अब हर प्रेम कहानी इतनी आसान भी नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त से जुड़ते हैं और कुछ रिश्ते वक्त से लड़ते हैं, कुछ हालात से और कुछ अपने ही दिल से। और जब मोहब्बत इम्तिहान लेने लगे तब तो दिल हर चीज दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि सच्चे प्यार में नफा नुकसान का तो हिसाब ही नहीं होता ना। बस एक ही चाहत होती है, अपने हम सफर का साथ।

यूं तो कहते हैं कि प्यार का सबसे खूबसूरत सौदा वही होता है जिसमें दिल हार कर भी इंसान को सबसे बड़े जीतने वाला समझा जाए। फिर हर मुलाकात किसी त्योहार जैसी हो जाती है, हर मुस्कान एक नई कहानी लिख देती है। लेकिन प्यार ना, प्यार सिर्फ हंसाता नहीं है, ये थोड़ा सा शर्माता भी है, थोड़ा सा तड़पाता भी है, थोड़ा सा झिझकता भी है, और कभी कभी तो चांद को भी अपनी तरफ मिला लेता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत करने वालों के सामने चांद भी आने में थोड़ा झिझकता, थोड़ा शर्माता है। जैसे कि मोहब्बत का गवाह तो बनना है, लेकिन क्या करे, थोड़ी थोड़ी शर्म का भी लिहाज रखना है। तो फिर खूबसूरत प्यार के नाम, बादलों के नाम, इस खूबसूरत चांद के नाम एक गीत तो बनता है।

जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको हम बता दें कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्थ चैनल को। प्रोग्राम चल रहा है गीत मालिका और आज गीत मालिका के इस रोलर कोस्टर राइड पर आप हैं मेरे संग यानी दीप्ति पाठक निधीश के संग। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे। कुछ गाने होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन उनका एहसास जो होता है वो यहीं कहीं आपके आसपास ठहर जाता है। अभी देखिए ना चांद बादल और रात की बातें हो रही थी और अब हम बात करेंगे उन सवालों की जो प्यार में हर दिल कभी ना कभी ज़रूर पूछता है। वैसे प्यार ना ये होता बहुत शरारती है, पहले चुपके से दिल में एंट्री करेगा और फिर मुस्कान पर कब्जा और फिर दिमाग को भेज देगा हॉलीडे पर, ना कुछ सोच पाओ ना कुछ समझ पाओ। अच्छा लगता है तो बस उससे जुड़ी हर छोटी छोटी बात, सब कुछ स्पेशल, हर धड़कन कोई नया राज सुनाने लगती है और तब दिल बस यही सोचता रह जाता है क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ खुदा जाने।

दोस्तों, ये मोहब्बत भी ना, ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। शुरुआत में तो दिल बस एक ही बात सोचता रहता है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर धीरे धीरे मुस्कुराहटें बढ़ने लगती हैं, मिलने के बहाने बनने लगते हैं, और बातें बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन सबसे मुश्किल पल तब आता है जब दिल में तो बहुत कुछ होता है लेकिन होठों तक आते आते सारे अल्फाज गायब हो जाए। आखिर कब तक नजरें ही सारी बातें करती रहेंगी? कभी तो दिल की बात दिल से निकलकर लफ्जों तक भी पहुंचनी चाहिए ना, क्योंकि कुछ एहसास सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं होते, उन्हें ना कह देना भी जरूरी होता है।

आप सुन रहे थे अरमान मलिक को, जो फिल्म अजहर में कह रहे थे बोल दो ना जरा। वैसे प्यार में सबसे मुश्किल काम होता है दिल की बात कह देना, लेकिन एक बार वो बात कह दी जाए तो फिर जिंदगी ना पहले सी नहीं रहती। छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं और हर मौसम गुनगुनाने सा लगता है। खैर, दिल की बात तो हमने कह ही दी, अब आगे क्या? अब शुरू होती है वो प्यारी सी कहानी जहाँ मैं

वैसे दोस्तों, इश्क का भी ना एक अपना बड़ा मज़ेदार सा सिस्टम है। पहले तो दिल महीनों तक रिहर्सल करता रहेगा कि बोलूं या ना बोलूं, फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर कह ही दिया, बोल दो ना ज़रा, और बस उसके बाद तो कहानी का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब हर मुलाकात में तारीफ का नया बहाना, हर मुस्कान पर दिल का नया फसाना। कभी लगता है ये मुस्कान इतनी प्यारी कैसे है, तो कभी लगता है हाय ये सादगी इतनी खूबसूरत कैसे है। सच कहूँ तो मोहब्बत में कॉम्प्लीमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होते, और जब दिल पूरी तरह इम्प्रेस हो जाए तो डिक्शनरी के सारे शब्द छोटे लगने लगते हैं।

और बस दोस्तों, इसी प्यारी सी मुस्कान, खूबसूरत से एहसास और ढेर सारी मोहब्बत के साथ आज के सुरीले सफर के रोलर कोस्टर राइड को यहीं देना होगा विराम। उम्मीद है इन गीतों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा, चेहरे पे मुस्कान भी आई होगी और आपकी कुछ खूबसूरत यादें फिर से ताज़ा जरूर हुई होंगी। तो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। मैं दीप्ति पाठक निधीश फिलहाल के लिए चाहूंगी आपसे इजाजत। आप जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे

0: भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई, उन सारी

0: ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: राज्य सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार

0: का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों

सोमवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय

0: In a social media post, Dr. Jaishankar said, during the meeting, expressed deep appreciation to his Bahraini counterpart for ensuring the well-being of the Indian community. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another match of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. England stormed into the quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over co-host Mexico in the round of 16 match this morning. In the Wimbledon tennis, 9-seed Flavio Cobolli of Italy has entered the men's singles quarterfinal. He defeated 5th-seed Alex de Minaur of Australia in straight sets 7-5, 7-6, 6-3 this evening. World number one and defending champion Yannick Sinner will face Jan-Lennard Struff of Germany in the quarterfinal match tomorrow. In another quarterfinal fixture, Serbia's Novak Djokovic will take on Canadian player Felix Auger-Aliassime. In the women's singles quarterfinals, American Jessica Pegula will clash with compatriot Coco Gauff, while Czech player Karolina Muchova will take on Japan's Naomi Osaka tomorrow. In a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight, we will bring discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology. President and CEO, National E-Governance Department, Nand Kumaram, and former National Cybersecurity Coordinator, Dr. Gulshan Rai, will be present in our studios to answer the queries of listeners. And you can ask questions on the subject on telephone number 011-2331-0481, 2371-7117, 2371-7106, and 2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज-ए-अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नेज़ इंडोनेशिया के सीनियर वज़रा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत

बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे करीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि यह दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी

0: अंदेश शख्सियत थे। डॉक्टर मुखर्जी की 125वें यौम पैदाइश के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के ख्यालात नए भारत के लिए रहनुमाई फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को 2 साल कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वजीर आजम ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है कि किस तरह एक तसव्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। जनाब मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के साथ रियासत इस कौमी एजाज के तई जोश व खरोश में मजीद इजाफा कर रही है और तहरीक देने वाली इस शख्सियत को याद कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आबाई घर का दौरा किया और

शख्सियात ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश किए। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का संग बुनियाद रखा। 200 से ज्यादा सरकर्दा सनतकार और सरमायाकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों लोगों ने राम मंदिर को दिए गए दान में खुर्द बुर्द के मुबैना मामले में अपने नाम आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए थे। कृष्ण मोहन को उस वक्त तक के लिए उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है जब तक कोई नया जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं हो जाता। उनकी शिकायत उस FIR की बुनियाद

0: दी गई तमाम अशिया महफूज हैं और उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स दान में दी गई अशिया की तफसीलात ट्रस्ट से हासिल कर सकता है। कृष्ण मोहन ने एतराफ किया कि इस तनाजे की वजह से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में ट्रस्ट ने कहा है कि राम के करोड़ों अकीदतमंद अब भी राम मंदिर में ऐसा यकीन रखते हैं जिसमें कोई तजलजल नहीं है, और ये भी दान की अशिया में मुबैना खुर्दबुर्द का मामला सामने आने के बाद से राम मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कतर का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मगरबी एशिया के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज बहरीन पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के अपने हमनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ियानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय बिरादरी की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहरीन के अपने हमनसब की इंतहाई सताइश की। दोनों वज़रा ने बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और खित्ते में जारी अहम वाकयात के तनाजुर में तबादला ख्याल भी किया। डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये मामूल की 800 से ज्यादा रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। आज नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाने के गरज से आने वाली रथ यात्रा के लिए रेलवे की वजारत ने आज तैयारियों का जायजा लिया।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इस साल ओनम त्योहार के दौरान 100 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। दो जबानों में नशर होने वाले हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को बाख्तियार बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल होगा। कौमी ई गवर्नेंस महकमे के सदर और सीईओ नंद कुमारम और कौमी साइबर सिक्योरिटी के साबिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलशन राय हमारे सामईन के सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आप इस मौजू पर रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर हैं 01123184123717173717106। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के अवाम की भारतीय हुकूमत से मदद की अपील खित्ते में जारी बहरान की गहराई को उजागर करती है। पीओजेके में एक महीने से ज्यादा वक्त से एहतजाज जारी है। एक सरकारी अहलकार ने बताया कि अपील की नौयत बिलखसूस इसलिए तशवीशनाक है कि पीओजेके के लोग भारत से दवाइयां और जरूरी गजाई अशिया तलब कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाकिस्तानी इदारों ने पिछले 20 दिन से खित्ते के लिए राशन और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। लोगों को गजाई साजो सामान की इंतहाई कमी का सामना है। इस नाकाबंदी का आगाज गजाई अशिया की सप्लाई की मौतली से हुआ और बाद में इसमें दवाइयां भी शामिल हो गईं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय हुकूमत से लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है। यह दरख्वास्त पाकिस्तानी फौज के उस हालिया फैसले के तनाजुर में सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर एहतजाज में कमी ना आए तो गोलियां चलानी शुरू कर दी जाएं। इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंसानी हकूक के कौमी कमिश्नर ने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पत्थर की एक कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने के सबब 7 मुहाजिर मजदूरों की मुबैना हलाकत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी दो जबानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत व जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से कितना नजर मियारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक नए कोर्स को नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
2: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, सौराष्ट्र

0: कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक के दूरदराज मकामात पर कल शदीद से शदीदतर बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुंबई और साहिली महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की रात तक इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। मावल तालुके के पटन गांव में आज एक घर पर मिट्टी के तोदे खिसकने से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से देवप्रिया भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: आला रहनुमा मरहूम आयतुल्ला खा अली खामनई के जज्बे खाकी के जुलूस के लिए आज ईरान की राजधानी तेहरान में सौगवार सियाह लिबास में मलबूस थे। ईरानी परचम में लिपटे खामनई के जनाजे के साथ उनके मुतअद्दिद अहले खाना के जनाजे भी शामिल हैं, जो इसराइल और अमरीका की जानिब से जंग के आगाज में 28 फरवरी को फजाई हमलों में मारे गए थे। उनके जज्बे खाकी को इमाम के रोजे से मुशाबहत करते हुए एक ट्रक पर रखा गया है। हुकाम ने सोग के दौरान सड़कों व मुल्की फजाई हदूद को बंद कर दिया है और रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात को मुअत्तल कर दिया है। ये सोग सनीचर से शुरू हुआ और जुमेरात तक जारी रहेगा। जनाब खामनई को मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में दफनाया जाएगा। और फीफा

0: जनाजे के साथ उनके मुतअद्दिद अहले खाना के जनाजे भी शामिल हैं जो इसराइल और अमरीका की जानिब से जंग के आगाज में 28 फरवरी को फजाई हमलों में मारे गए थे। उनके जसद खाकी को इमाम के रोजे से मुशाबहत करते हुए एक ट्रक पर रखा गया है। हुकाम ने सोख के दौरान सड़कों व मुल्की फजाई हदूद को बंद कर दिया है और रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात को मुअत्तल कर दिया है। यह सोख सनीचर से शुरू हुआ और जुमेरात तक जारी रहेगा। जनाब खामनेई को मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में दफनाया जाएगा। और फीफा आलमी कप में अमरीका के एरलिंगटन में आज राउंड ऑफ 16 के एक मैच में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा, जबकि इसी राउंड के एक और मैच में साथी मेजबान अमरीका बेल्जियम से कल सुबह सिएटल में मुकाबला करेगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मराकश और फ्रांस क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और आज सुबह राउंड ऑफ 16 के एक मैच में इंग्लैंड साथी मेजबान मैक्सिको को 2-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 1-2 से शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बनाया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमारम जी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है जी, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और WhatsApp द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
1: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है, थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
1: क्योंकि ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
0: जी,
1: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
1: हाँ
0: जी, बिल्कुल।
1: और आज ये

0: एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की
1: ट्रेस कर
0: कोशिश हो
1: लेगी।
0: जाती है,
1: जी
0: रिकॉर्ड मिल जाता है,
1: जी
0: तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको 1 मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है।
1: जी
0: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका
1: जी
0: क्या
1: जी
0: आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं,
1: जी
0: तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा
1: आ
0: है
1: रहा है जी
0: कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है। तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फ़ोन आप आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए,
1: बिल्कुल
0: अगर आप गलती से उठा लेते

0: तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी। रवि
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार रवि जी नमस्कार।
2: सर मैं जानना चाहता हूँ एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर का कैसे प्राप्त करे और ये इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पर उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पर डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोरम जी आपसे जानना चाहेंगे, UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: UPI दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2 मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का UPI के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
1: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहाँ तक जा करके उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कि वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स UPI के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश,
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
4: जी। नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं क्या, कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये मैं एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
0: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। OTP का फ्रॉड काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि OTP क्यों आता है और कैसे आता है। OTP जब भी आता है जब

0: आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं, या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजैक्शंस है, आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन होता है उनके पास उसी पर ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए, जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है, उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: सभी को नमस्कार
1: जी,
2: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
3: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें,
3: फिर सवाल करेंगे आप?
1: गुड गया, शायद उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ,
3: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुँचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुँचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट। 1930 में ये भी सुविधाएँ हैं कि

0: से रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डाइवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन्ड वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
2: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार
2: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
0: नमस्कार जी।
3: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
2: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
0: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
0: स्टूडेंट्स
2: जी, जी, जी सर।
0: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय

0: स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के पर MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के IIMs के मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहाँ तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में है, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीज़न के लिए अलग लागू किया है, जो सीनियर सिटीज़न का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीज़न के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर
1: जी, बताइए।
2: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होके देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
3: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, WhatsApp और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफ़ेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फ़ोन से की फीचर फ़ोन से किया है, उसका इफ़ेक्ट सेम है। जहाँ तक OTP और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फ़ीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पस के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस

0: कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जितनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज़ इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो 1930 जो काल है, इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
2: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको 0 FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रूप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात ज़रूर है कि चूँकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं

0: करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत आसान है।
1: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
2: बिल्कुल,
1: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल न सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
2: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को

0: श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का फैसला भी लिया गया। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा है कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। यह शोक शनिवार से शुरू हुआ था और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्वकप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

है आलोक राज। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं और आप जुड़े हुए हैं आप जुड़े हुए हैं

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग रंजन. जी हाँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ये कार्यक्रम, और कलाकार रहे पंडित मधुप मुदगल. राग भोपाली में आपने इनका गायन सुना. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स. DRM 810 किलो हर्ट्स पर रात्रि के 11 बजने को है. आइए सुनते हैं समाचार.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया. श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है. इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे. प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत

0: भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो चुके हैं और इस समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।
1: मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक।
0: जी हाँ, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार और रहेंगे रात्रि 12 तक आपके साथ और करेंगे ढेर सारी बातें। और आज का विषय भी मैं कुछ खास लेकर आई हूँ जिस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चेहरे की। हर किसी के चेहरे अलग अलग होते हैं ना, कोई झूठा कोई सच्चा, लेकिन चेहरा जो है ना वो सब कुछ बयां कर देता है। बस हाँ, ज़रूरत है तो गौर से देखने की और समझने की। खैर, इस गीत से शुरुआत कर रही हूँ कार्यक्रम की, लौट कर आते हैं और फिर करेंगे आपसे भी कुछ बातें आपके चेहरों की।

जी हाँ श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना, और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसे हम दिन में 100 बार देखते हैं। देखते हैं ना आप अपना चेहरा, दिन में हम कितनी बार अपने चेहरे को देखते हैं, और कभी कभी इतना नोटिस करते हैं कि शायद सामने वाला इंसान भी नहीं करता हो। चेहरा ही तो है जो बिना बोले सब बता देता है। भूख लगी तो लटक भी जाता है, और किसी और चेहरे को देखे तो एकदम से खुश भी हो जाता है। लेकिन चेहरे को सबसे खूबसूरत बनाने की एक अच्छी एक्सरसाइज होती है स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो आपकी चेहरा जो है ना वो और खूबसूरत दिखने लगता है। मानते हैं या नहीं मानते, आप देखिए कई हमारे

श्रोता हैं जो कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और एकदम से उन्हें इंतज़ार रहता है मेरा, तो चेहरे पे उनके स्माइल आ गई है, तो और खूबसूरती को ना वो और बढ़ा देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को भी आप इंजॉय करेंगे, आपके गीत एक एक करके शामिल ज़रूर करेंगे, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और बिना गीतों के तो ये संभव नहीं है। मैं भी जानना चाहूँगी कि चेहरा आपको सबसे खूबसूरत चेहरे में क्या लगता है। चेहरा हालांकि सबके खूबसूरत होते हैं, देखने का सिर्फ और सिर्फ नज़रिया होता है, लेकिन हम कुछ और भी नोटिस करते हैं। हम किसी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हम उसकी परिभाषा बदल देते हैं। तो आप चेहरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का।

मंगेशकर की फिल्म तुमसे अच्छा कौन है। खूबसूरत गीत, उम्मीद करती हूँ आपने भी ज़रूर पसंद किया होगा। कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। लेकिन आप जानते हैं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बिना कहे भी सुन ली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सुन ली जाती हैं और चेहरा जो है ना वो आपका बता देता है कि आप क्या बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या बात बोलना चाहते हैं। चेहरे पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आँखें भी बोलती हैं, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। कभी कभी चेहरा हमारा लाल हो जाता है या फिर गुस्से से माथे पे लकीरें पड़ जाती हैं, और कभी इतनी खुशी होती है कि गालों पे डिम्पल पड़ जाते हैं। ऐसा होता है ना, ये चेहरा ही है जो बताता है कि आप खुश हैं या फिर उदास हैं। लेकिन हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि चेहरा जो है ना वो बोलता है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि चेहरा ख़राब चीज़ें कहें। तो आप खुश रहिए और कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए। आज कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना।

0: जी हाँ भाई, तलत महमूद तो अपने गीतों के ज़रिए कहना चाह रहे हैं कि वही सूरत हो तो ऐसी हो कि जो एक नज़र में ठहर जाए। लेकिन हमने सिर्फ यही कहा कि चेहरा बहुत खूबसूरत सभी का रहता है, सिर्फ देखने का हमारा नज़रिया होता है कि आप उस चेहरे में क्या तलाशते हैं। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:23 हो चुके हैं और चलते हैं आपके संदेशों की तरफ। हमसे भी कोई ना कोई बात कहना चाहते हैं आप। बसंत कुमार सिन्हा जी ने अपना सलाम हम तक पहुंचाया है और एक गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। ये दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमें सुनते हैं रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और नन्नी पोती अनविका तनुश्री। शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। संजय साहू पोटेकला से हमें सुन रहे हैं। अनिल जैन जी ने भी हमें मैसेज भेजा है। देखते हैं कि कैसी हैं आप। आपके यहाँ हमेशा सुख शांति और समृद्धि रहे। शुक्रिया जैन साहब। संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जीवियम हैं ये, और एक गीत की रिक्वेस्ट भी भेजी है साथ में। भाई हम बात कर रहे हैं चेहरे की, तो आप अपने मैसेजेस के साथ अगर कोई बात चेहरे से जुड़ी है तो वो भी लिखकर भेजिए, हमें अच्छा लगेगा। सुदर्शन मुखी जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और साथ में इनके शंकरलाल जायसवाल भी हैं जिन्होंने अपना संदेश भेजा है हम तक। हाजी मजहर जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई गीत प्ले करिए। अस्तुपुरा जिला मऊ से सुनते हैं हमें रजिया मोहम्मद सादिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन। शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। बोधराज खोरवाल जी ने भी उत्तम नगर दिल्ली से हमें अपना संदेश भेजा है। कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश हैं इनके साथ। अनिल जैन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। बाबू नागनपुरे जी भी हमें खंडवा मध्य प्रदेश से संदेश भेज रहे हैं। प्रकाश वर्मा कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सोमदत्त जी ने हमें अपना संदेश भेजा है पटियाला पंजाब से। सुखविंदर सिंह जोड़ा जी और रस क्रिएशन और साथ में बहुत सारे ऐसे संदेश हैं। मोहाली चंडीगढ़ से भी एक संदेश आया। प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का शुक्रिया आप सभी का। आप कार्यक्रम से नियमित जुड़े रहते हैं और 11 बजे का इंतज़ार करते हैं और अपना संदेश हम तक पहुंचाते हैं। सतीश अनीजा जी चंडीगढ़ सिटी से जुड़ गए हैं। बिमला अनीजा जी इनके साथ हैं और आपका भी स्वागत है अनीजा साहब। इन्हीं के साथ साथ अकरम हुसैन प्रिंस ने भी अपना सलाम हम तक पहुँचाया है और अपना आदाब भेज रहे हैं।
1: महताब तेरा चेहरा।
0: तो हम बात कर रहे हैं चेहरे की। जी हाँ, चेहरा जो है ना वो सब कुछ बोलता है। खैर हम रूबरू तो नहीं हैं आपसे, हम आपसे मिलकर नहीं सिर्फ आवाज़ के ज़रिए आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन चेहरा आपका भी बता रहा होगा कहीं ना कहीं कि आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है। रियासत हुसैन जी उत्तराखंड से हमें मैसेज भेज रहे हैं और सतीश अनेजा जी लिख रहे हैं कि चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं होता, ये तो एक तरह का अक्सरा है जो दिल के भाव

बयां कर देता है। आपको पता लग जाएगा गम है या बहुत खुशी है आपको, कोई आपके किस भाव से मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस बता देते हैं कि आप किस खुशी से, कितने दिल से मिल रहे हैं सामने वाले से। रंग बदलती दुनिया में बहुत से ऐसे चेहरे मिलेंगे जो बाहर से कुछ हैं और अंदर से कुछ है, ये बात भी सही है, लेकिन चार शब्दों में ही उनके चेहरे की अदाएँ सब खबर दे देती हैं। बहुत बढ़िया। फिलहाल चेतना जी, आवाज़ सुनते ही चेहरे पर मेरे रौनक आ गई, शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। मुझे भी इंतज़ार रहता है कि आप कब जुड़ेंगे और अपने दिल की बात हम तक पहुंचाएंगे। और ये अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हो पूरी तरीके से, तो शुक्रिया।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साथ में लता मंगेशकर, और फिल्म रही है ही राजा। गीत लिखा कैफी आज़मी ने और संगीत दिया मदन मोहन ने। उम्मीद करते हैं इस गीत को आपने पसंद ज़रूर किया होगा। और हम बात कर रहे हैं चेहरे की। आप लाख छुपाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी आँखें, आपके होठ, आपके एक्सप्रेशंस, आपके माथे पर पड़ी हल्की सी सिकुड़न सब कुछ बयां कर देती है जनाब। चेहरा जो है ना, वह खुली किताब की तरह होता है जिसे आपका दिल हर पल लिखता रहता है। जब आप अंदर से उदास होते हैं ना, तो महंगे से महंगा मेकअप भी ना उदासी को छुपा नहीं पाता। और जब आप दिल से खुश होते हैं, जब आप रूह से खुश होते हैं, तो बिना किसी क्रीम पाउडर के भी ना आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो बात और बात सिर्फ यही रहती है कि दिल से खुश रहना। खुश रहना बेहद ज़रूरी है। कहना बहुत आसान है कि हम खुश रहते हैं, रहना चाहिए, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। खैर, सुदर्शन मुखी जी लिख रहे हैं कि लोग अक्सर सुंदर चेहरे भूल जाते हैं पर सुंदर बोल कभी नहीं भूलते। ये बात भी सही है कि आपकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं होती है, आप जो बोल रहे हैं उससे भी आपकी खूबसूरती बढ़ती है। रश्मि पांड्या जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं और लिखती हैं कि बहुत अच्छे अंदाज में अपने मैसेज को भेजती हैं। और आपकी बहन रश्मि बिल्कुल बिल्कुल राजकोट गुजरात से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। और बहुत सारे इन्होंने मैसेज में बात लिखकर भेजी है, खैर शुक्रिया, आप पसंद करती हैं। नासिर शेख जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना आदाब भेज रहे हैं, ये सुनते हैं हमें श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। हाजी मजहर जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया है और लिख रहे हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत प्ले कर दीजिए, मेहरबानी होगी। बिल्कुल, दिलावर खां जी ने भी अपनी बात हम तक पहुंचाई है। लिखते हैं कि बरसात का मौसम अक्सर बचपन की यादों और सुकून भरे पलों को ताज़ा कर देता है। चाहे इसे खिड़की से निहारना हो या इसमें भीगना, बारिश हर किसी के दिल को छू जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज बरसात की और मौसम की बात नहीं कर रहे हैं हम दिलावर खां जी, आज हम चेहरे की बात कर रहे हैं। और चेहरा, जब हम चेहरा वर्ड बोलते हैं या फिर हम शब्द को सुनते हैं, तो ऐसे शख्स की सूरत, ऐसे इंसान की शक्ल हमारे सामने आ जाती है जिसे शायद हम बहुत पसंद करते हैं, और हो सकता है जिसे हम ना पसंद करते हो वो चेहरा भी सामने आ जाता हो। तो आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं कि चेहरे के बारे में आपके क्या विचार हैं।

जी हाँ दोस्तों, ये बात भी सही है। किशोर कुमार की आवाज़ में भी आपने गीत सुना, भाई दिल सच्चा और चेहरा झूठा। कभी कभी हमारे दिल में कुछ होता है लेकिन चेहरे पर कुछ होता है, ऐसा होता है लेकिन करने की कोई भी आवश्यकता तो नहीं पड़ती है। भाई जो दिल में है वो एक्सप्रेस कर देना चाहिए, और नहीं भी करेंगे तो आपका चेहरा जो है ना वो सब कुछ बयां कर देगा। और एक खूबसूरत बात है कि चेहरे की रौनक पर, तुम्हारे चेहरे की रौनक से रोशन है महफिल, तुम जो मुस्कुरा दो तो हर गम आसान हो जाता है। तो ये बात भी बेहद खूबसूरत है कि आपका गम भी छूमंतर हो जाता है अगर आप एक खूबसूरत चेहरे को देख लेते हैं।

जी हाँ श्रोताओ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से और मैं हूँ आज के कार्यक्रम में आपके साथ चेतना। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:44 हो चुके हैं। देखिए ना, वक्त कितनी तेज़ी से दौड़ता है। दिलावर खां जी ने हमें अपना संदेश भेजा है रघुवीर नगर से। इनके साथ हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू हैं। लिखते हैं कि चेहरा इंसान के व्यक्तित्व का आईना होता है, इस पर छिपे भाव, मुस्कान, उदासी बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती है। बिल्कुल सही बात, यही हम कह रहे थे भाई, सब पता चलता है, बस हाँ शायद हम नहीं कह पाते। अक्सर असली पहचान चेहरे की बनावट से नहीं बल्कि उस पर झलकने वाली नीयत और सच्चाई से होती है। ये बात भी बिल्कुल आपने सही की और मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि आपके दिल में जो है वो आपका चेहरा बयां कर देगा। आप आर्टिफिशियल बहुत टाइम तक नहीं रह सकते हैं, तो चेहरे की खूबसूरत बनाए रखने के लिए आपको अपने दिल को भी साफ रखना बेहद ज़रूरी है। रश्मि पांडे जी लिखते हैं कि चेहरा अनेक रूप स्वरूप समय संजोग के साथ बदल कर बहु रूप कर लेता है। बिल्कुल सही बात, चेहरा मीठा और तीखा भी होता है, ये तो बड़ी समस्या है। चेहरा मीठा और तीखा, ये शायद मैंने पहली बार सुना है। और आगे भी लिखते हैं कि दिलों में आग और होठों पर गुलाब रखते हैं हम, चेहरे यहाँ पर जो है वो दो नकाब रखते हैं। अब तो सब शायराना अंदाज में आ गया। अरुण कुमार पांडे जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए, मध्य प्रदेश से हमें सुनते हैं और लिख रहे हैं कि आपकी फरमाइश का भरपूर आनंद उठा रहे हैं जनाब। कुछ गीत आपकी पसंद के होते हैं, कुछ मेरी पसंद के होते हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप कार्यक्रम में प्रसारित सभी गीतों को पसंद करते होंगे। हाजी मजहर जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया है गाजीपुर बहादुरगंज से। और सुनील कुमार जी भी चेहरे से जुड़ गए हैं। जी हाँ, लिख रहे हैं कि चेहरे के हाव भाव से बातें समझने वाले मशहूर फिल्मी कलाकार चार्ली चैपलिन अक्सर ये कहा करते थे कि उन्हें बारिश में चलना बेहद अच्छा लगता है क्योंकि तब लोग उनके आंसू नहीं देख पाते थे। बेहद बेहद खूबसूरत सुनील कुमार जी हैं ये, नील माधव पंजाब से। और देखा जाए तो इनकी कॉमेडी को तो ऐसा लगता है कि कभी शायद ही उदास ही ना रहे हों, लेकिन सही बात है, बारिश भी उन्हीं को पसंद आती है जो बेहद दुखी होते हैं क्योंकि उसमें आंसू जो है ना वो छिप जाते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, जानबाज फिल्म से अभी आपने की सुना और आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। मोहम्मद कमर जी लिखते हैं मुजफ्फर अली हैं इनके साथ में गन्नौर से। आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली लिखते हैं कि तेरे चेहरे की मुस्कान पर फिदा हो गया मैं और तेरी हर हसीन अदा पर फिदा हो गया मैं। भाई बहुत खूबसूरत, शायद आपने अपने दिल की बात जो है ना वो चेहरे के विषय को लेकर बता दी।

किचन सबकाल जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना आदरणीय नमस्कार भेज रहे हैं। साथ में हैं इनके सोनिया, आशा, विशाल, किचन सबकाल जी शुक्रिया। रमेश कुमार जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, ये पटेल नगर मलोट से हमें सुन रहे। गगनदीप, गीता रानी, डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया जी हैं ये। साथ में बोधराज खोरवाल जी, ताज मोहम्मद जी, नंद किशोर घाटे जी, सुनील पाठक जी और साथ में शंकर लाल जायसवाल जी भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं हमें।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से, और कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। देखिए ना, वक्त जो है ना कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है। 11:55 हो चुके हैं और मोहम्मद कमर जी ने सिर्फ 3 शब्दों में अपनी बात लिख के भेजी। साउंड बेहतर लाजवाब। खैर, ये भी बहुत अच्छा अंदाज़ है अपनी बात को कहने का। और सतीश अनेजा जी लिखते हैं कि खूबसूरत टॉपिक पे आज केंद्रित रहा कार्यक्रम, अच्छा लगा। आपकी प्रस्तुति बाकमाल होती है, जिसका कोई सानी नहीं, शुक्रिया। और लिखते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है और 5 बजे से पहले दिनों की मनाली जाना है। और अच्छा, आप घूमने का प्लान कर रहे हैं। आपकी आवाज़ और पेशकश के इतने कायल हैं कि प्रोग्राम सुने बिना नहीं रह सकती। आपकी आवाज़ में अपनापन है जो हमें पूरे प्रोग्राम से बांधे रखता है। बेशुमार मोहब्बतें और दुआएं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी ने मैसेज भेजा है, और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं आपके शब्द। क्या आप इतना पसंद करते हैं कार्यक्रम को और अभी तक जाग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम के जरिए, तो इसके लिए शुक्रिया। आप बेहतर तरीके से जाइए, अपनी जर्नी को खूबसूरत बनाइए। नवी हसन जी ने भी अपना नमस्कार भेजा है, और ये हमें मारहरा दरवाज़ा एटा से सुनते हैं। शहनाज, नवेद, सुहेल, अनम, यसफ़,

और कितवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबेर और सबीहा। शुक्रिया आप सभी का कि आप कार्यक्रम को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया। खैर चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि आईने में दिखने वाला चेहरा सिर्फ एक पता होता है, असली इंसान तो आपके पीछे छुपा होता है। चेहरे की झुर्रियाँ आ सकती हैं, उम्र का रंग चढ़ सकता है और उम्र बढ़ सकती है, लेकिन जो मासूमियत और जो सच्चाई आपकी रूह में है उसे कभी भी फीका मत पड़ने देना। चेहरे तो लाखों मिलेंगे इस दुनिया में, लेकिन मुस्कुराहट देखकर आपका दिल मुस्कुरा दे, बस उसी चेहरे को आपको थामे रखना है, क्योंकि चेहरे की मुस्कान किसी और की दुनिया का उजाला हो सकती है। खैर मेरे पास बहुत सारी बातें हैं और मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इस वादे के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, इस गीत के साथ कि आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी है। फिलहाल वक्त रात्रि के 12 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर खतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया है कि सूडान में पिछले 6 महीनों से जारी युद्ध में 300 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं, जिनमें से अधिकतर ड्रोन हमलों के शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने उत्तरी कोर्दोफान की राजधानी अल ओबेद में बड़े पैमाने पर संभावित अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वैश्विक नेताओं ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध अपराधों को रोकने की अपील की है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अब से थोड़ी देर में 12:30 से पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई को 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में सईद कादरी साहब की। जी हाँ, शुरू के सफरनामा में आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं सईद कादरी। सईद कादरी हिंदी सिनेमा के एक बेहद लोकप्रिय और प्रतिष्ठित गीतकार और साथ ही साथ शायर। उनका जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। दोस्तों, सईद साहब का ये जो सफर है वो उतना आसान नहीं था। जोधपुर की गलियों से मुंबई की माया नगरी तक आने का ये जो फासला था, उन्होंने अपने जज्बातों की दम पर तय किया। उन्होंने कई सालों तक फिल्मों के लिए लिखा, लेकिन अगर उनको असली पहचान की बात की जाए तो वो असली पहचान मिली फिल्म मर्डर से। भीगे होठ तेरे, जी हाँ, कहो ना कहो, ये ऐसे गीत हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया शायर दे दिया। और फिलहाल जो अगला गीत है आपके लिए पेशे खिदमत है, फिल्म मर्डर का ये गीत।

दोस्तों, आज जब कोई नया कलाकार मुंबई में आता है तो वो 2-3 साल में ही अपनी हिम्मत हार जाता है, लेकिन सईद काजी साहब की मिसाल देनी पड़ेगी। उन्होंने तकरीबन 30 साल तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष किया और तब जाकर साल 2003 में आई फिल्म जिस्म और 2004 में आई मर्डर, ये वो फिल्में थी जिन्होंने उन्हें पहचान दिला दी। और इस वक्त आप यकीन मानिए उनकी उम्र 50 साल के पड़ाव को पार कर चुकी थी। सईद साहब की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी। वो ऐसे शब्दों को चुनते थे जो आम इंसान के दिल के बहुत करीब होते थे। फिल्म गैंगस्टर का वो गाना तू ही मेरी शब है, जी हाँ, इस गीत को कौन भुला सकता है। उन्होंने प्यार से सराबोर इस गीत को जिस खूबसूरती से पन्ने पर उतारा वो बेमिसाल है। तो आइए सुनते हैं गैंगस्टर फिल्म का ये खूबसूरत गीत। दोस्तों, कार्यक्रम सुरों के सफरनामा में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जी हाँ, अपने ईमेल्स के जरिए। ये वो माध्यम है जिसके जरिए आप अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं अपनी दोस्त सरिता के साथ। हमारा मेल आईडी है ip radio delhi@gmail.com।

श्रोताओं, मुंबई आने और गीतों से नाम कमाने से पहले कादरी साहब जोधपुर में रहते थे और उनका घर चलाने और गुजर बसर करने का जो माध्यम था वो था कि कादरी साहब LIC एजेंट के रूप में काम करते थे। दिन में वो पॉलिसी बेचा करते थे और रात में शमा जलाकर डायरी में शायरी लिखा करते थे। और जहाँ तक हम बात करें कादरी साहब की किस्मत के चमकने की, तो उनकी किस्मत तब चमकी जब निर्देशक महेश भट्ट किसी काम से जोधपुर आए हुए थे। कादरी साहब किसी तरह से उनसे मिलने के लिए होटल पहुँच ही गए। यहाँ पर भट्ट साहब रुके हुए थे तो उन्होंने महेश भट्ट से मुलाकात की। दोस्तों, उन्होंने महेश भट्ट जी को अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां सुनाई। भट्ट साहब तो उनकी सादगी और लफ्जों की गहराई में इतने डूब गए और इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने तुरंत उन्हें मुंबई आने का न्योता दे दिया, अपनी फिल्म के लिए उन्हें साइन कर दिया। श्रोताओं, आमतौर पर उर्दू शायर अपनी शायरी में बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कादिया रदीफ, काफिया रदीफ बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कादरी साहब का मानना था कि जो बात सीधे दिल से निकले वही शायरी है। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी ये सोचकर नहीं लिखा कि उन्हें कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी दिखना है। उनकी भाषा ऐसी जो एक आम आदमी को आसानी से समझ में आ जाए,

लोग वहीं बस जाते हैं, लेकिन कादरी साहब का दिल हमेशा जोधपुर के लिए धड़कता रहा। इतनी बड़ी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में देने के बाद, फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद, चकाचौंध से दूर वो दोबारा जोधपुर के सुकून में रहना पसंद करते हैं।

प्रमुख पुरस्कारों की तो फिल्म फेयर अवार्ड 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी 2 के लिए जो गाना है तुम ही हो के लिए दिया गया था, और इन्हें संगीत जो सर्वश्रेष्ठ गीतकार बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वहीं आईफा में 2005 में फिल्म मर्डर के लिए कहो ना कहो इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था। मिर्ची म्यूजिक पुरस्कार लिरिसिस्ट ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर फिल्म आशिकी 2 के लिए मिला। स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिनेमा अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स फिल्म मर्डर गैंगस्टर ऑफ और लाइफ इन मेट्रो के गीतों के लिए उन्हें कई बार बेस्ट लिरिसिस्ट की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया और कई बार उन्हें अवार्ड्स भी मिले।

आज के दौर में जहां लोग अपनी छोटी छोटी पारिवारिक बातों को सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, वहीं सईद कादरी साहब एक अलग ही मिसाल हैं। वे अपने काम से तो पूरी तरह दुनिया का दिल जीत लेते हैं, लेकिन अपने परिवार को बस इस ग्लैमर और कैमरों की दुनिया से कोसों दूर रखते हैं। उनका मानना है कि एक कलाकार के तौर पर उनके लफ्ज और उनके गीत जनता के लिए हैं, लेकिन उनका परिवार उनका एक सुकून का कोना है। कादरी साहब काम खत्म होते ही तुरंत अपने परिवार के पास जोधपुर लौट जाते हैं।

करने चला है तू। काजी साहब के लिखे ये गीत हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे, चाहे हम खुश हों, चाहे तन्हा हों, या फिर किसी की यादों में खोए हों। उनकी कलम हर जज्बात को एक नया रास्ता देती है।

सो घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं कि मुझे आपसे अलविदा कहना ही पड़ेगा। आज का सुरों का सफरनामा कार्यक्रम सईद कादरी साहब के नाम रहा और उम्मीद करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए फनकार की कहानियों और सुरों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिलहाल इस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। शुभ रात्रि।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1 बजने को है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का अवसर मिला। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या

0: में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराओं कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगदृष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मेट King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain and discussed ways to further strengthen the bilateral partnership between the two countries. Dr. S. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf region, which also includes Kuwait and Oman. In a post on X, Dr. S. Jaishankar said he was honored to have an audience with King Hamad bin Isa Al Khalifa. He also said it was a privilege to meet Crown Prince and Prime Minister Salman bin Hamad Al Khalifa during the audience. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the King. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav has virtually inaugurated a new train service between Tanakpur in Uttarakhand and Hazur Sahib at Nanded in Maharashtra, along with the extension of the Tanakpur-Pilibhit rail service up to Shahjahanpur. He said the new service fulfills a long-pending demand of people living in the Terai region of Uttarakhand. Central Bureau of Investigation has conducted searches at 26 locations across 11 states and union territories in connection with four criminal cases pertaining to misappropriation of funds in Border Roads Organization. These states and union territories are Jammu and Kashmir, Ladakh, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Assam, Arunachal Pradesh, and Nagaland. Several incriminating documents and digital evidence have been recovered during the searches and investigation is continuing. In FIFA World Cup, round of 16 match between Portugal and Spain is underway at Arlington in US. Another round of 16 match will be played between co-host US and Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. In boxing, India continued its impressive campaign at the Under-23 Asian Championships in Jakarta yesterday, with Asian champion Vishwanath Suresh, Ganga, Hitesh and Tanu registering commanding 5-0 victories in their respective bouts. And that
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10:15 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जिसमें आप सुनते हैं पुराने जमाने के गोल्डन एरा के खूबसूरत गीत। और आज इन गीतों का पिटारा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म के गीत के साथ संगीत दिया है ओपी नैयर ने, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

लीजिए दोस्तों, सुनिए अगला गीत फिल्म धूल का फूल से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत दिया है एन दत्ता ने। आवाज़ें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

दो

अगला गीत फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से, आवाजें हैं लता मंगेशकर की और संगीत है चित्रगुप्त का।

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म साधना से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की हैं। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीत दिया है एन दत्ता ने। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है फागुन, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने और गीतकार हैं कमर जलादारवादी।

लीजिए सुनिए गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है मधुमति, आवाज़ें लता मंगेशकर और मन्ना डे की हैं, संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

अगला गीत फिल्म हावड़ा ब्रिज से, आवाजें गीता दत्त की हैं, संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

लीजिए सुनिए अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है उजाला और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आखिरी गीत। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। आवाजें हैं लता मंगेशकर की, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इसी गीत के साथ अपनी दोस्त सरिता को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने को है। आज से थोड़ी देर में पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े

0: चार आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said India and Indonesia have elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. In Andhra Pradesh, the fisherman rescued after a fishing boat capsized off the Vishakhapatnam coast has been brought ashore safely, while the search operation for the 6 missing fishermen has been intensified. According to an official release, the rescued fisherman Kari Chinna was airlifted by an Indian Navy helicopter to INS Dega and shifted to a hospital for treatment. He survived by swimming to a merchant vessel which rescued him. The search and rescue operation is continuing. Chief Minister N. Chandrababu Naidu has directed officials to intensify the search for the remaining 6 fishermen. 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch, Amit Garg, has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. Mourners dressed in black flooded Iran's capital Tehran for a funeral procession yesterday honoring the late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei's flagged draped coffin along with those of several family members was carried on a truck decorated to resemble the ornate latticework surrounding the shrine of an imam. The mourning will continue through Thursday when Khamenei will be buried at the Imam Reza Shrine in Mashhad, his birthplace. In the FIFA World Cup, the round of 16 clash between Portugal and Spain remains goalless at 0-0 with the match in the second half in Dallas, Texas. The other round of 16 match will be played between co-hosts the United States and Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. India Meteorological Department issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Saurashtra, Kutch, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka for today. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का। गीत बहार कार्यक्रम नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम लेकर आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। तो आनंद लीजिए नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का, और लीजिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए पेश है। इस गीत के साथ अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीट के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात की गई है। इससे किसानों के लिए नए अवसर खुले हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और भारतीय उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर से यूएई को प्रीमियम

0: एको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप की सुविधा प्रदान की। ये केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के तहत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड दैट इंडियाज लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर व्हिच करंटली एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ अराउंड 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स हैज सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल विद 38 डेवलप्ड कंट्रीज ओपनिंग देयर मार्केट्स टू इंडियन प्रोडक्ट्स थ्रू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स. These countries include the United Kingdom, Oman, the UAE, and several others. Addressing the Council for Leather Exports National Export Excellence Awards 2024-25 in New Delhi yesterday, Mr. Goel said that several countries, including Ecuador, are also keen to conclude free trade agreements with India, creating new opportunities for Indian exporters. Reserve Bank of India has announced that the government will auction dated securities worth 32,000 crore rupees on Friday to raise funds. The auction will be settled on the 13th of this month. It includes the reissue of the 6.36% government security 2031 worth 21,000 crore rupees and the 7.71% government security 2066 worth 11,000 crore rupees. The government has also kept the option open to accept additional subscriptions of up to 2,000

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत KS गोपाल कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी।

बजाय बांसुरी पर राग अभेरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 44 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर आप आनंद ले सकते हैं देशभक्ति गीत का। पांच बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का। 6 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। छह बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस, जबकि 6:55 का वक्त होगा संस्कृत में समाचार का। 7 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार, जबकि 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका, जबकि 7:30 का वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी का।

0: 8 बजे हिंदी में समाचार, जबकि 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। और अब सुबह के 5 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। रूस के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के

0: in time. In boxing, India continued its impressive campaign at the U23 Asian Championships in Jakarta yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम। आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेब